0: तेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो
1: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां।

चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपनेपन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणे री आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: करदर्शन।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। जहां खुशी की बात कर रहे थे तो एक बात जो हमारे सामने आई थी वो ये कि जब तक अपनी सही पहचान नहीं होगी, जहां तक मैं ये शरीर थी तब तक मेरी सारी चीजें इससे जुड़ गई थी, चाहे वो परफेक्शन की बात थी, चाहे मेरी खुशी की बात थी, चाहे मेरी अचीवमेंट्स की बात थी। लेकिन यहां जहां मैंने थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट किया, अगर हम आपको पिछली कड़ी याद दिलाएं तो बात यहां तक आई थी कि क्या मैं दिन भर ये मान के चल सकता हूं कि जो ड्रेस मैंने पहनी है वो मैं हूं। अगर ये ड्रेस जो मैं हूं ये मैं बन जाऊंगा तो फिर मेरी पूरी की पूरी जो एनर्जी थी, जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो इस ड्रेस पर थी। तो बात यहां पर आई थी असली पहचान की कि मैं वो चैतन्य शक्ति, वो कॉन्शियस बीइंग हूं, ये पता चल जाए और कंटिन्यूअस रिमेम्बरेंस रहे तो आगे बात बढ़ाएंगे। पता चल गया, समझ में भी आ रही है, और जब हम बार बार ये कह रहे थे कि उससे क्या फर्क पड़ता है ये भी दिखा। अब कंटिन्यूअस रिमेम्बर कैसे करना है, लगातार याद कैसे रखना है, इस पर भी बात करेंगे। और हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जहां हम बात यहां पर आए थे कि मैं वो चैतन्य शक्ति हूं, हमने ये कहा था कि क्या फर्क पड़ता है अगर हम ये भी मान लें कि मैं यही हूं, तो जिस तरह की बात की थी उसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब इस कड़ी में यहां बैठकर बात करते हैं बिल्कुल क्लियर लगता है, लेकिन बाहर निकलते ही वो सारी बातें जो हैं, जो जिन पर मैं अभी तक जी रहा था वो फिर लौटती हैं। तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, जस्ट वॉन्ट टू रिवाइव दैट।
1: द प्रायोरिटी गेट्स सेट। मैं कौन, मेरा क्या क्या, जैसे हमने शुरू में भी देखा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज,

0: औरों के प्रति, परिवार के प्रति, काम के प्रति, लेकिन मेरे प्रति। तो जब हम कह रहे थे मेरे प्रति, तब हमने देखा कि कई बार आया, हाँ मेरे प्रति भी तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता ना, मैं अपने शरीर का ध्यान रखता, बट आई लुक आफ्टर द बॉडी, सो आई थॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंडेड विद लुकिंग आफ्टर द बॉडी, बिकॉज आई थॉट हु एम आई एम द बॉडी, बट बिकॉज आई डिडंट नो कि मैं ये चैतन्य शक्ति, आई एम दिस कॉन्शियंट बींग, आई नेवर पुट दैट इन द लिस्ट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, द माइंड, द इंटेलेक्ट, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, ये नहीं सोचा। सारा जैसे हमने देखो कितनी सारी बातें चेंज होंगी, मैं एनर्जी हूं तो मृत्यु किसकी होगी, हो गई डाय, शरीर की डाय, फियर ऑफ डेथ विल फिनिश, यू नो दिस इज जस्ट अ थॉट राइट नाउ, हमें सिर्फ लग रहा है हाँ फियर ऑफ डेथ फिनिश्ड, लेकिन जिस आत्मा से फियर ऑफ डेथ निकल जाता है उनको जीवन में कोई और बात का डर नहीं लगता है। व्हेन यू टॉकिंग ऑफ निर्भय जीवन, फियरलेस लाइफ, वो वही एक्सपीरियंस कर सकता है जिसको डेथ का डर नहीं हो, और डेथ का डर, अपनी डेथ का डर नहीं है, फैमिली की किसी
1: भी। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि आज जिस स्थिति में है ना लोग, वो डेथ को आत्मसात करने को तैयार है, यू नो मे बी पेन के कारण, बट देन राइट नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज इवन लाइक फॉरगेट अबाउट द एज, ये नहीं कह रही मैं कि बुजुर्ग ही ये मान रहे हैं, आज बहुत कम एज से भी लोग अपने जीवन की इम्पोर्टेंस को खत्म ही करते जा रहे हैं,
0: लेकिन वो क्योंकि अपने आप को ही नहीं जानते, हाँ। तो अपने इम्पोर्टेंस क्या जानेंगे, अगर अपने आप को सिर्फ क्वालिफिकेशन और पोजीशन ही समझा तब तो मार्क्स के लिए सुसाइड किया ना, क्यों किया, जस्ट बिकॉज मेरे मार्क्स उतने नहीं आए, आई हैड नो वैल्यू फॉर माई लाइफ, बिकॉज आई थॉट लाइफ वॉज ऑल अबाउट ओनली परफॉर्मेंस, अचीवमेंट, फिजिकल लुक्स, पोजेशन, तो वो सारे क्राइटेरिया जहां फुलफिल थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे थे, so what happened, we said I don't want to live, relationships mein maine samjha main kaun, aaj bahut sare log emails likhte to wo kehte you know mera ye relationship work out nahi hua, I don't want to live, so death is still not you know accepted ke ha bhale kabhi bhi, to wo lagta hai kyunki we are fed up of life ke you know nothing is working out, success nahi aa rahi hai, lekin ye sari cheezon ka perspective change ho jayega jab success bhi samajh mein aa jayega, meri success, not mere success, wo definition change ho jayegi, my whole purpose of life will change, jab maine ye samjha ki I am the body, tab maine samjha jeevan kitna hai yahan se,
1: yahan pe was of course
0: the itne span mein mujhe sab kuch achieve kar lena hai aur jaldi jaldi karna hai, that's where the belief came ki life is a competition, everyone is in the race, kyunki har ek ne socha itne se itna time hai, sabhi ne race mein bhagna hai, jo karna hai अभी कर,
1: और क्योंकि जगह भी उतनी है, उतने ही लोग हैं, तो मुझे मतलब जो ज्यादा यू नो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो था,
0: तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी जब हमने बोला तो फिटेस्ट क्या, क्योंकि हमने सोचा दिस इज हु आई एम, पोजीशन इज हु आई एम, तो फिटेस्ट कौन है, जो ज्यादा फिजिकली हेल्दी है, जिसके पास ज्यादा धन है, पोजीशन है, वो फिटेस्ट है, भले वो इमोशनली बिल्कुल कमजोर हो, वो फिटेस्ट, तो उसको फिटेस्ट बनाने के लिए, सक्सेस को उस मात्रा में अचीव करने के लिए हम गलत भी करने के लिए तैयार हो गए, हम अनएथिकल मेजर्स भी यूज करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि हमने सोचा इतने स्पैन में सब कुछ अचीव करना है, फिर हमने अपने आप को ये समझा तो हमने एक दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू किया कि बेटर वो है जिसके पास ज्यादा
1: चीजें हैं,
0: जिस जो ज्यादा शारीरिक सुंदर है, बेटर वो है, ये फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यूज किसके पास ज्यादा है, तो सारा पर्सपेक्टिव ही तो चेंज हो गया, क्योंकि मैं कौन हूं कि डेफिनेशन चेंज हो गई, सारा कुछ चेंज हो गया,
1: वैल्यूज की वैल्यू ही नहीं है।
0: आई डिड अ प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन एंड वो इतने स्वीट से छोटे छोटे बच्चे, और हमने टॉपिक लिया, दे गेव द टॉपिक, हा डज ऑनेस्टी वर्क इन टूडेज टाइम, एंड द क्वेश्चन फ्रॉम द चिल्ड्रन वॉज कैन अ ऑनेस्ट पर्सन बी सक्सेसफुल, मतलब वो भी एक क्वेश्चन मार्क था कि कैन अ ऑनेस्ट पर्सन बी सक्सेसफुल,
1: सब्जेक्ट वी आर कवरिंग,
0: और ये सब्जेक्ट उन्होंने ही दिया, तो लेकिन बहुत छोटे छोटे, एंड चिल्ड्रन कैन बी मोल्डेड वेरी इजिली, तो हमने उनसे ऐसे करते गए, आधे पौने घंटे के अंदर दे सेड येस वी प्रोमिस वी विल बी ऑनेस्ट इन ऑल दोज थिंग्स, वो चले गए अपनी क्लास में, टीचर्स आकर बाद में बोलते हैं क्या फायदा है ये सब उनको सिखाने का, बट ऑनेस्टी रियली डजेंट वर्क इन डे टू डे लाइफ, आई सेड देन लेट्स गो बैक टू देम एंड टेल देम दैट, यू नो लेट्स गो एंड टेल देम कि ऑनेस्टी डजेंट वर्क, डिसऑनेस्टी चलती है, फिर देन दे से वो थोड़ी कर सकते हैं, उनको तो यही बोलना।

0: We don't know what we are doing. We really don't know.
1: And ye aap socho ki jo hum instruments hain, chahe hum parents hain, chahe hum teachers hain, jo hum bachchon ko values sikha rahe hain, agar at the back of my mind I don't believe in it, what will I teach?
2: It's of no use.
1: I shared with those teachers. I said, agar aap class mein jaakar bol bhi rahe ho, believe it before. Why not believe it? They said, nahi ji, practical mein to nahi chalta hai. Aur fir agar aapki andar ki soch hai ki practical mein honesty work nahi karti, aap kitna bhi jaakar wo bachcho ko samjhao, ek to aapki soch ki wo vibration, see, that's where vibration plays such a big role. Aapki wo conviction hi nahi jayegi, aapki vibration nahi jayegi, aapki body language bata degi.
2: Kabhi to bachche dishonest ho ke fir aate hain, fir hum kehte hain ki aap jhoot bol rahe ho, aap dishonest ho.
1: That was the thing. So we need to understand ki, and why is all this happening? Kyunki I don't mind ki main jhoot bol lu, lekin mujhe materialistically अचीव करना है. और फिर वो यही कहते, सभी का एक कॉमन बिलीफ था कि जो ऑनेस्ट होता है उसको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जो दूसरे तरह के मेजर्स यूज करते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी सक्सेस. तो सक्सेस क्या? मटेरियलिस्टिक. क्यों? मैं कौन हूं? मैं शरीर. शरीर को जितने कम्फर्ट्स मिले उतना मैं कम्फर्टेबल. वॉट वी डेंट अंडरस्टैंड कि हम जितनी बार झूठ बोलेंगे, जितनी बार हम अनएथिकल मेजर्स यूज करेंगे, हम अपने लिए यहां पीसलेसनेस क्रिएट कर रहे हैं. इसलिए शांति ढूंढनी पड़ रही है.
2: यू नो, अनदर वेरी स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम जस्ट कम टू मी, केम टू माई माइंड इज कि झूठ बोल दो, डिसऑनेस्ट हो जाओ, पकड़े नहीं जाना चाहिए. यू नो, वो आपकी एक्सपर्टीज है. यू नो, समवेयर ये एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है.
1: तो झूठ बोलना दूसरे ने नहीं पकड़ना है, पकड़े पहले हम यहां जाते हैं. जो हम कितनी बार बोलते ना कि यहां क्यों वो क्लटर हो रहा है, क्यों वो ब्लॉकेज हो रहा है, हम यहां पकड़े जाते हैं. जैसे ही वी हैव डन समथिंग विच इज अगेंस्ट माई ओरिजिनल नेचर ऑफ ऑनेस्टी, यहां आई हैव क्रिएटेड. भले हम उसको दबा देते हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन यहां क्रिएट हो गया. और जब एनर्जी गलत गई, रिजल्ट उसका कभी पॉजिटिव हाँ वो वाला रिजल्ट आ जाएगा. आप जो सोच रहे हैं वो वाला रिजल्ट आएगा, लेकिन साथ साथ ये भी आएगा. अब जब मुझे ये पर्सपेक्टिव मिला कि ये सब कुछ मेरा है, ये मैं हूं, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? किसका ध्यान रखना? अपना ध्यान रखना. तो फिर मैं ये प्राप्त करने के लिए इसको यहां तकलीफ नहीं दूंगा. एंड दैट्स व्हेन एवरीथिंग विल चेंज. आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माय वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स टू गेट मटेरियलिस्टिक सक्सेस.
2: दैट्स मी. यू नो, वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड.
1: क्या आपको अगर आज पता चले कि आपको ये अचीव करना है, उसके लिए आपको अपने हाथ पैर काट के देने पड़ेंगे, आप दे देंगे? कि हाँ कोई बात नहीं, मुझे मर्सिडीज तो मिल जाए, मुझे एक बड़ा सा बंगलो मिल जाए, कोई बात नहीं, मैं अपना एक हाथ काट के दे दूंगा. आप देंगे अपना हाथ? नहीं, ये मैं हूं. यू नो, ये मैं हूं. तो ये नहीं कचना चाहिए, यहां कुछ काट के देना. एक मिनट भी नहीं लगेगा आज झूठ बोल, क्योंकि ये मैं हूं. Everything is based on this one illusion. और ये एक belief system जिस दिन really आपको समझ में आया और आपने इसको change किया, आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है. कई बार कई लोग कहते हैं उस time सोचना पड़ता है, सच बोले या झूठ बोले. You know, that is also a conflict. But जहां focus right है कि ये मैं हूं, आपके पास दो thought नहीं आते हैं कि ये बोलू या ये बोलू. ये ही बोलना है सच, चाहे उसका कोई भी रेपरकशन होने वाला है. बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू डर्टी माई सेल्फ,
2: आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. आई यू नो, माई इननेट वैल्यूज जो है, जो मैं हूं, वो तो. और एक्चुअली अगर हमें ये रियलाइजेशन, बेसिकली वही बात है, जिस दिन हमारे अंदर ये रियलाइजेशन हो गया, ये रिमेम्बरेंस रह गई, तब मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा.
1: बिल्कुल, क्योंकि आपको जब समझ में आ गया, देखो हमें पता है, हमें आज तक ये सोच के चल रहे थे कि मैं शरीर हूं, तो इसका ध्यान रखते हैं ना? रखते हैं ना हमेशा, हर चीज क्या हो रही. एक्चुअली सब कुछ हो किस लिए रहा है? सारा कुछ जो अर्न करना है, प्राप्त करना है, वो किसके लिए है? इसके कंफर्ट के लिए है. नेवर माइंड कि मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ.
2: आई थिंक देन हमें अपने आदर्शों पर चलने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी.
1: वही बोल रहे हो ना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्वेश्चन नहीं है उसमें कोई भी. इट्स नेचुरल. इट इज ना, आई मीन व्हाई वुड वी नीड टू स्टॉप एंड थिंक कि ये करो या नहीं करो. मेरा सारा धन चला जाए, मेरी सारी प्रॉपर्टी चली जाए, जो जाना
2: है. दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, यू नो, दैट विल नॉट रिमेन इम्पोर्टेंट. एक्चुअली
1: प्रायोरिटी राइट हो जाए.
2: आज जो बहुत बार लोग अपने आदर्शों पर खड़े हुए हैं, वो पेन में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं सक्सेसफुल हुआ तो हूं नहीं, मैं खड़ा रहा अपने आदर्शों पर.
1: लेकिन ये सोच भी तो क्वेश्चन मार्क है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वो मैं बोलती हूँ आई

0: अपने आप को, क्योंकि भले अभी समझ में आ गया है, नॉलेज भी है, लेकिन वो बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत डीप रूटेड संस्कार है। तो हर थोड़ी देर के बाद रुक के अपने आप को फिर से रिमाइंड करते, इस शरीर का मालिक मैं वो आत्मा हूँ। इससे एक और चीज भी होती, मैं मालिक हूँ तो ये जो सेंस ऑर्गन्स है, दिस ऑल कम्स बैक अंडर माई कंट्रोल। इट्स लाइक द ड्राइवर इज वेकिंग अप। यू नो, एक गाड़ी चल रही है, ड्राइवर अंदर सो गया है, तो गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी तो फिर भी चल रही है, गाड़ी चल रही है, और वही हमारे जीवन की गाड़ी का हिसाब है। यात्रा पर चल रही है, ड्राइवर अंदर सोया हुआ है। एंड दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम इज अवेकनिंग। अवेकन दिस ड्राइवर विद इन, कि उठे और अपनी गाड़ी को संभाले, नहीं तो सारी गाड़ियां ऐसे चल रही हैं विद ड्राइवर्स ऑल स्लीपिंग एंड देन वी गो लाइक दिस। तो दिस जो कॉन्शियंट एनर्जी है, ये समझने में, क्योंकि थोड़ा सा हमें यू नो लगता कि ये बहुत पता नहीं किस बारे में बात करे, तो ये बहुत सिंपल है कि जब मैं सोचने का काम करती हूँ, आई थिंक, डज एनीबडी नीड प्रूफ कि मन है या नहीं है? एवरी वन नोज, एक बच्चे को भी पता है कि मन सोचता है। तो मैं आत्मा जब सोचने का काम करती हूँ, इट्स द माइंड। व्हेन आई क्रिएट थॉट्स, आई टेक अ डिसीशन ऑन इट, इंटेलेक्ट। एंड जो डिसीशन मैंने लिया, कर्म में आया, कोई भी कर्म बार बार रिपीट हुआ, हैबिट, संस्कार। तो हम क्या कहते हैं, ये संस्कार, बहुत अच्छे संस्कारों वाली आत्मा है। कभी नहीं कहेंगे बहुत अच्छे संस्कारों वाला शरीर है। तो संस्कार किसके हैं? आत्मा के। तो मन, बुद्धि, संस्कार, ये मैं आत्मा हूँ। कुछ और अजीब सी चीज तो है।
1: आई नो, सो मेनी टाइम्स जब हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं, बड़े बड़े बहुत बार बोल रहे होते हैं कि ये बहुत संस्कारी आत्मा है, तो हमें, मैं ये सोचती हूँ, जब भी मैं बच्चे को उसको देखती थी पहले, तो मैं कहती थी अच्छा कोई और चीज है, मतलब कोई एक ऐसा पोटली है जिसमें वो संस्कार भरे हुए हैं।
0: दिस एनर्जी कि मैं क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स क्रिएट करती हूँ, कार्य करती हूँ, ये मैं आत्मा हूँ। क्यों वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो जब ये सब कुछ पीछे रह जाएगा, तो फाइनली साथ में क्या जाएगा? सिर्फ कर्म, और वो कर्म से क्रिएट किए गए संस्कार। तो जीवन में चलते हुए कम से कम ये तो याद रखना पड़ेगा कि क्या पीछे रह जाएगा और क्या साथ में जाने वाले हैं। अब ये सारी बातें हम सुनते तो हैं, कब करते हैं, लेकिन जब हम किसी के फ्यूनरल पर जाते तो हमें तब याद आता कि यू नो, और इसको हम कहते हैं शमशानी वैराग, कि उस टाइम वैराग्य आता है कि क्या सब कुछ तो रह जाएगा, यही लेकर जाना है। तो वैराग्य इन चीजों से नहीं करो, सब कुछ यूज करो, लेकिन सब कुछ यूज करते हुए ये तो याद रखना है कि क्या साथ में लेकर जाना है। उस टाइम याद नहीं है, फिर जब कोई कर्म का हिसाब किताब सामने आता तो कहेंगे मैंने तो हमें क्या याद, पास्ट में मैंने क्या किया है। इट्स अ कनेक्टेड,
1: यू नो, एंड सो मेनी टाइम्स वी से मैं ये नहीं जानना चाहता, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा ना पास्ट, तो मेरे साथ अब ये क्यों हो रहा है।
0: तो अवेयरनेस के साथ चलेंगे, प्रेजेंट पर ध्यान देंगे, तो प्रेजेंट अच्छा बनेगा ही बनेगा, और प्रेजेंट जहां अच्छा होगा वहां फ्यूचर अच्छा ही अच्छा है। और जब ये समझ में आता कि मैं ये कॉन्शियंट एनर्जी हूँ, तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये कॉन्शियंट एनर्जी की नेचर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। हमारे आज बहुत सारे संस्कार बन चुके हैं, अक्वायर्ड हैं, क्योंकि कुछ संस्कार फैमिली से, पेरेंट्स से मिलते, कुछ संस्कार एनवायरमेंट से बन जाते, हमारी नेशनैलिटी, कास्ट, किस स्कूल में हम जाते, कुछ संस्कार हम अपने विल पावर से क्रिएट कर सकते हैं। You know, हमने आज डिसाइड किया कि नहीं ऐसा नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट, वी कैन डू इट। हम अपने झूठ के संस्कार को कट करके ऑनेस्टी का संस्कार क्रिएट करते, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे अपने ओरिजिनल संस्कार, व्हाट इज द ओरिजिनल नेचर ऑफ दिस एनर्जी। तो आज हरेक को क्या चाहिए, हम इस पूरी सीरीज में भी क्या ढूंढते आए हैं, खुशी, हैप्पीनेस। सो एवरीबडी वॉन्ट्स हैप्पीनेस, लव, पीस, नॉलेज, पावर, प्योरिटी, ये चीजें चाहिए, शांति, खुशी, प्रेम। क्यों चाहिए? क्योंकि ये मेरे संस्कार हैं, दिस इज माय ओरिजिनल नेचर, लेकिन आई एम नॉट बीइंग एबल टू एक्सपीरियंस इट टुडे। तो मुझे ये नहीं पता कि कहाँ ढूंढूं, बिकॉज मुझे नहीं ये पता कि मैं ये हूँ, तो मैंने उनको कहाँ ढूंढना शुरू कर दिया,
1: चीजों में ना, बेसिकली। अच्छा, ये भी कह रहे हैं हम, यू नो, हम इतने मटेरियलिस्टिक, बेसिकली अगर ये पूरे सेंटेंस को भी देखें, हम कह रहे हैं हमें चाहिए, तो चाहिए में ऐसा लगता है कि मेरे को कोई पर्टिकुलर चीज पकड़ूंगी मैं जिससे मुझे खुशी मिल जाएगी।
0: एग्जैक्टली, क्योंकि मैं बॉडी हूँ ना, मैं बॉडी हूँ, खुशी किसको चाहिए, इसको चाहिए, इसको खुशी कब

0: मिलेगी, जब इसको एक अच्छी गाड़ी मिलेगी, जब इसको एक अच्छा, तब इसको खुशी मिलेगी। लेकिन फिर हमने रियलाइज किया गाड़ी तो आ गई, कम्फर्ट मिला इसको, लेकिन खुशी नहीं मिली, क्योंकि खुशी इसको नहीं चाहिए थी, इसको कम्फर्ट चाहिए। बॉडी नीड्स कम्फर्ट, लेकिन इसको खुशी नहीं चाहिए क्योंकि डजंट फील। खुशी किसको चाहिए थी? यहाँ वो हमें पता नहीं था, तो हमने कहाँ ढूंढा? बाहर ढूंढा। अब राजयोग हमें ये सिखाता कि ढूंढना नहीं है, इट इज माई ओरिजिनल नेचर, आई एम अ पीसफुल बींग। ओम शांति हमारा जो ग्रीटिंग है, दैट इट सेल्फ मीन्स आई एम अ पीसफुल बींग, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ लवफुल बींग, आई एम अ हैप्पी बींग, अ ब्लिसफुल बींग। हैप्पीनेस बाहर नहीं ढूंढनी है, कहीं से, किसी में, लोगों में नहीं। आई एम अ हैप्पी बींग, प्योर बींग, पावरफुल बींग। अब कल इस कॉन्शियसनेस के साथ काम पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने बारे में भी यही कॉन्शियसनेस, एंड
1: कि दूसरे के भी अपना इननेट उसका जो है संस्कार है उसका। इनफैक्ट अभी तक हम ये कहते थे कि जब हमें बड़े बूढ़े कहते थे कि बाहर नहीं मिलेगी, अंदर तलाशो, तो अमेजिंग थिंग था कि मैं ये सोचती थी कि अंदर कैसे तलाशूं कहां मैं, यू नो, क्योंकि अंदर भी तो कोई चीज ही तो मुझे देगी हैप्पीनेस।
0: एब्सोल्युटली,
1: यू नो, लाइक बिकॉज आई वाज थिंकिंग, वी ऑल वर थिंकिंग दिस वे, कि अंदर ही कोई चीज, मुझे अपने अंदर ही शांति को ढूंढना है, तो वो कहां ढूंढूं मैं अपने अंदर?
0: और तब नहीं पता चला, तब फिर कहां ढूंढना शुरू कर दिया,
1: फिर हमने फिर बाहर गए। ऑफकोर्स,
0: राइट, सो नाउ लेट्स चेंज आवर वोकैबुलरी, देयर इज नो फाइंडिंग पीस, हमने फाइंड नहीं करनी है पीस, पीस ऑलरेडी है, आई एम अ पीसफुल बींग। तो कुछ समय उसके ऊपर करके देख
1: कर सकते हैं,
0: बिकॉज दिस इज समथिंग जो हम रोज सुबह कर सकते हैं, अपने आप को फिर से याद दिलाएं। यू नो, इट्स लाइक समवन जिसकी याददाश्त चली गई है, तो जब मेमोरी चली जाती तो उनको क्या कराया जाता? धीरे धीरे धीरे धीरे याद करो, याद करो तुम कौन हो। तो राजयोग भी यही है, धीरे धीरे हमें याद दिलाता कि तुम कौन हो। यू आर अ पीसफुल बींग, आई हैव टू रिमाइंड दिस टू माई सेल्फ। सो लेट्स सिट कम्फर्टेबली, रिलैक्स करके अपने आप को देखें। आज शायद पहली बार अपने आप को देखेंगे। आज दिन तक अपने बारे में सोचा तो शरीर तक ही सीमित रह गए, ये शरीर मेरा है। आज अपने को देखते, शरीर को चलाने वाली शक्ति, क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट एंड फीलिंग, I, the conscient being, the energy which runs this body of matter, in the center of the forehead, ek sundar chamakta hua sitara, point of light, this is me, eternal, immortal, peaceful and pure. शांति, प्रेम और खुशी मैं बाहर ढूंढ रही थी, ये तो मेरी अपनी नेचर है। आई एम अ पीसफुल बींग। एज आई गो आउट टूडे विथ फैमिली एंड वर्क, आई जस्ट नीड टू रिमेम्बर आई एम अ पीसफुल बींग, इंटरैक्टिंग विथ अदर peaceful and pure beings. Om Shanti.
1: Om Shanti. Sister Shivani, thank you so much. अगर हम अपने लिए देखें जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं ये बिलीफ सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसे चेंज करें कि मैं हूं कौन। यहीं से बेस है, यहीं से शुरुआत होती है। रिफ्लेक्ट जरूर करें, इसे अपना हिस्सा बनाएं जिंदगी का, सुबह का हिस्सा, और जैसे याददाश्त की बात की है कि वो याद अपने आप को हर पल दिलाएं कि मैं हूं कौन। उम्मीद करते हैं आज जो हमने बात की है उसे हम जरूर आत्मसात करेंगे। आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहां क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न।

0: क्रिएट होना शुरू हो रहा है. दिस इज द पावरफुल बींग.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: अजी सुनते हो?
4: हाँ सुनी तो रहा हूँ.
3: क्या सुन रहे हो?
4: रेडियो पुणेरी आवाज.
3: ओ रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM.
4: खुश रहो, खुशियाँ बांटो.
5: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी. ओम शांति. इन दिनों हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, तनाव की, और उसके लिए हमने ये समझा कि अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस हमें ही होता है. कई एस्पेक्ट्स हैं खुद को जानने के. मैं कौन हूं, सबसे पहले अपनी पहचान की बात जरूरी थी. उसके बाद मेरी बेसिक नेचर, मेरी जो ब्यूटी है वो क्या है. उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी अपनी जिम्मेवारी किसके प्रति है. आगे हमने देखा कि हमारे बिलीफ सिस्टम्स किस तरह से हमारे थॉट्स को क्रिएट करते हैं और फिर हमारी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हैं. आगे शायद अपने बारे में अभी काफी कुछ और जानना बाकी है. क्या कुछ है वो जानना, उसके बारे में बात करते हैं. हर बार की तरह हमारे साथ इस बातचीत में शामिल है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
3: ओम शांति.
5: कई सारे एस्पेक्ट्स तो हम अब जान गए कि क्या किस तरह से जो चारों चीजें जो सही परिपेक्ष में जब हम नहीं देख रहे थे, खुद की पहचान को भी या फिर अपनी नेचर के बारे में, या फिर अगर हम कहें कि जिम्मेदारी किसकी है और बिलीफ सिस्टम्स को, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी. सिस्टर शिवानी इसके आगे बढ़ते हैं.
3: इसके आगे जो हमारे को अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है वो है सेल्फ कंट्रोल. कि बहुत बार मन में ये क्वेश्चन उठता कि क्या मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है. You know, because it's very important. It's like मेरी गाड़ी मेरे control में अगर नहीं होगी, then it's directionless. Then I have lost control, and now I'm at the mercy of the car. You know, तो वो गाड़ी मुझे जहाँ ले जाए मैं जाऊँगा, और फिर वो जिसमें टक्कर मारे जहाँ जो, because I have lost control. तो कभी न कभी हमें कहीं न कहीं एक बार मन में ये संकल्प जरूर आता कि चीजें मेरे control में नहीं है, मेरी जीवन मेरे control में नहीं चल रही है, और उसका कंट्रोल फिर हम बाहर दे देते. तो ये चेक करना होगा कि जब हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. बिकॉज मोस्टली जब मैं ये चेक करूं कि क्या लाइफ मेरे कंट्रोल में है, तो मेरा पैरामीटर ये होता कि क्या परिस्थितियां और लोग मेरे कंट्रोल में हैं. आई नॉर्मली चेक इट लाइक दैट कि अगर मेरे साथ जो लोग हैं अगर वो मेरे कंट्रोल में चल रहे हैं, एंड या सिचुएशंस बिल्कुल जैसे मुझे चाहिए वैसे मेरे कंट्रोल में चल रही है, तो लाइफ मेरे कंट्रोल में है.
5: यस.

0: which is again we've seen over the past so many weeks, okay, there are two things which you can't control.
1: People.
0: Wo hai people and past. Situations matlab past. Jo abhi kshan bita, uske bare mein aap kitna bhi sochein, aap kuch nahi kar sakte. Biti hui baat aur log. Past and people cannot be controlled. Aur humne apni life ka control us par dependent kar diya, which we cannot control. So obviously, agar mera is cup pe control hi nahi hai, and I start feeling ki I am in control only when I am going to be able to control this cup, and I will always keep feeling that I am not in control. Kyunki log aur paristhiti mere control mein nahi chalti, to mere hamesha aise lagta ki kuch bhi mere control mein nahi hai, sab kuch pata nahi kaise haywire ja raha. So I have to understand, when I talk about self-control, then what is the control? Kyunki mostly we're trying to control people, which we can't control. Even jab hum kisi ki ki hui kisi baat se ya kisi ke kahe hue kisi bol se upset ho jate hain, you know, ab bhale hum samajh kar us level tak pahunch jate hain ki hum unko ye nahi kehte ki aapki wajah se main upset hu, but mera upset hona hi
1: is that
0: means I'm trying to control you. Because mera upset hona means ki aapko is tarah se nahi bolna chahiye tha, ya aapki kahi hui baat mere liye theek nahi hai, matlab you shouldn't have done what you have done. So I'm upset. So even my getting upset andar, ab kisi ko pata nahi chalega, shayad bahar bolenge nahi, lekin my getting upset is my giving away the control. The minute I get upset, I have lost control, because I'm trying to control your behavior and then I feel I can't control it, so I get upset. Jab hum kisi se kaam karwane ke liye, parents bachchon ke sath ye bahut zyada karte, aur offices mein aaj bahut zyada ye use hota ki jab hum kisi se kaam karwane ke liye anger ya threat, aapko ye karna hi hoga, agar aapne aisa nahi kiya to this will happen against you, bachchon ko aapko ye padhna hi hoga, आपको इतना फिनिश करना ही होगा, नहीं तो इट्स अ थ्रेट मोड जो हम यूज करते हैं. और बहुत अच्छा हमें लगता है कि जब हम किसी को इस तरह से थ्रेटन करते हैं तो वो तुरंत से हमारी बात मान के उस तरह से करना शुरू कर देते हैं. इट गिव्स मी अ फीलिंग दे आर इन माई कंट्रोल, एक्चुअली दे आर नॉट. मैंने जो थ्रेट करना था या जो गुस्सा करना था या जो भी इंस्ट्रक्शन इम्पोज करनी थी, मैंने वो की, उसको लेकर उन्होंने अपने अंदर फियर और डर क्रिएट किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने डर क्रिएट किया. तो जब मुझे ये एक सुपीरियोरिटी फीलिंग आती है कि मैंने डर क्रिएट किया, तो मैं लोगों को इस तरह से काम करवा सकती हूँ, बट एक्चुअली मैंने डर नहीं क्रिएट किया, अपने डर के वश उसने वो काम करना शुरू कर दिया, एंड आई फील आई चेंज्ड पीपल. And that's why that belief system became so strong, कि अगर लोगों को चेंज करना है, बच्चों को डिसिप्लिन करना है, तो इस तरह से पनिशमेंट से या थ्रेटन करके होता. कभी ना कभी मेरे सामने कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आएगा जो डर से काम नहीं करेगा.
1: वही मैं कहना चाहती हूँ कि कोई तो ऐसा आ जाएगा जो नहीं करता है.
0: कोई ना कोई आएगा जिसका सेल्फ एस्टीम इतना स्ट्रांग होगा अंदर, और जिसको आप डरा नहीं सकते हैं, जो आप सोचते हैं कि आप डराते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप उसको डरा नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो खुद नहीं डरता है. लेकिन हम बहुत आउट ऑफ कंट्रोल फील करना शुरू करते हैं कि इतने सब लोग तो डर के काम कर रहे थे, ये वाला व्यक्ति तो मेरे से डरता नहीं.
1: और तब हम ये नहीं कहते कि डरता रहते, इतने सारे लोगों को मेरी बात समझ में आती थी, मेरी बात मानते थे, अब ये बात नहीं मानते.
0: एक्चुअली सी अगेन द फिंगर गोज आउटसाइड, अगेन आई एम गिविंग अवे माय कंट्रोल टू द अदर पर्सन. तो अगर सामने वाला डरता है, वो उसकी अपनी क्रिएशन है. एंड सिमिलरली जब हम डरते हैं, एक है हम औरों को सो कॉल्ड हम डराते हैं, और दूसरा है हम डरते हैं. जब हम डर के कोई कर्म करते हैं, तब भी हमें याद रखना होगा कि उन्होंने हमें नहीं डराया,
1: हम खुद डरे.
0: हम खुद डरे, मैंने ये फियर अपने आप क्रिएट किया है, और वो फियर क्रिएट करने के बाद उस डर वश मैं वो काम कर रही हूँ. एंड देन आई से आई हैव टू डू दिस बट यू नो, एंड आई डू दैट वर्क, बट इट्स नॉट विद द फीलिंग ऑफ willingness, you know, and तब हम कहते हैं मुझे इनके लिए ये काम करना पड़ता है, मुझे अपने हस्बैंड के लिए ये काम करना पड़ता है, बच्चे सारा दिन कहते हैं मुझे अपने पेरेंट्स की वजह से ये करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस. एक्चुअली कोई भी नहीं है जो मुझे कंट्रोल कर सकता है, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं. मुझे क्या करना है इज एक्चुअली इन माई हैंड्स. वॉट वी डोंट अंडरस्टैंड इज कि उनके कहने के बाद हम उस बात को स्वीकारते हैं फियर के कारण या कोई भी कारण, लेकिन हम स्वीकार के फिर उस कर्म को करना शुरू करते हैं, तब हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि उन्होंने कहा मुझे वो बात ठीक लगी तब मैंने किया, लेकिन हम वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर हटा देते हैं, कहते उनके कहने की वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है. तो करना पड़ रहा है, आई हैव टू डू दिस, दिस हैज टू गो आउट बिकॉज नोबडी कंट्रोल्स मी, नो वन कैन कंट्रोल मी. इवन सेइंग इन द मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप आई हैव टू गो टू वर्क, यू डोंट हैव टू, यू चूज टू. Nobody from office is coming to pick you up and take you from there. You choose to go to work because you earn. But by saying I have to, I start the day on a very negative note. Because then I make myself a victim. I have to do this. I have to do this. I have to do this.
1: Wonderful. In this way, you know, actually, once you have this feeling, oh, so then again, half of the problem finishes off when you know that nobody is doing that to me. You know, actually प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा
0: है. वो हमें अच्छा नहीं लगता.
1: हाँ, ये सिचुएशन
0: अच्छा नहीं लगता.
1: आई वुड लाइक टू शेयर दिस एक्सपीरियंस दैट यू नो दिस इज अ फीलिंग आई इवन वी हैव सो मेनी टाइम्स दैट आई एम फीलिंग सफोकेटेड बट इट्स बिकॉज ऑफ देम बट नोबडी एल्स इज सफोकेटिंग मी. यस यस, सडनली
0: मैं डर वश उस तरह से उनके सामने नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन वो मेरा डर है. इफ आई कैन ओवरकम दैट फियर, वो डर किसी भी कारण से हो सकता है, इफ आई कैन ओवरकम दैट फियर मैं अपनी बात को सामने रख सकती हूँ.
1: वाओ, सिचुएशन एक्चुअली इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू नो दोज पीपल आर नॉट इम्पोर्टेंट.
0: तो ये पीपल हैव टू अंडरस्टैंड नोबडी कंट्रोल्स मी, नो वन कैन कंट्रोल मी, एंड आई कैन नॉट कंट्रोल anyone else. Bottom line. So remove the word I have to, because have to बोलने से आधी energy सारी finish हो जाती है. Have to की जगह I choose to do this or I want to do this. मैं करना चाहती हूँ. Even जो क्योंकि हम बहुत बार संबंधों में बोल देते हैं आपकी वजह से मैंने ये किया, आपके लिए मैंने ये किया, नहीं.
1: I want to do it for you.
0: For you. Yeah. It's trying to create a favor. I'm doing it for you. But actually it's not. Yes, I can say के I really like you, and that's why I want to do this for you. You know, but I'm doing this for you. Don't do it if you don't want to. नहीं करना, नहीं करो. But don't you know make yourself a victim. क्योंकि वो मैं बेचारा.
1: अच्छा हाँ.
0: वो जो है ना
1: वो जो आगे चल के relationship में भी हम देखेंगे तो मैं change हो जाता हूँ. I change because of you.
0: Yeah. So I don't change because of you. Again, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि मैं बहुत त्याग कर रही हूँ सारा दिन. मैं औरों के लिए अपने आप को चेंज कर रही हूँ. मैं दबती जा रही हूँ. मैं सहन कर रही हूँ. तो उससे जो हमारी विशेषता भी है, टॉलरेंस पावर विशेषता है, लेकिन वो बन जाती है एक नेगेटिविटी
1: अपने अंदर ही.
0: तो आई हैव टू रिमेम्बर कि आई चूज टू डू वट एवर आई डू. इट्स माई चॉइस एंड दैट्स वाई वी कीप सेइंग एवरी स्टेप योर चॉइस, योर चॉइस. जस्ट रिमेम्बर यू आर मेकिंग द चॉइस. नोबडी इज गेटिंग इट डन फ्रॉम यू. बट कंट्रोल मेरा किस पर एक्चुअली है, वो है सिर्फ थॉट्स और फीलिंग्स पर. और उसके लिए हम कहते हैं कि वो तो मेरे कंट्रोल में
1: है ही नहीं.
0: बिल्कुल नहीं. तो आप सोचो एक ऐसी जीवन जिसमें जो चीजें कंट्रोल में नहीं है उनको समझें कि कंट्रोल में है या होनी चाहिए.
1: करते रहे, हाँ, हाँ,
0: उसके और उसको करने की कोशिश करते रहे क्योंकि वो एक एफर्ट हो जाता है सारा दिन. और जो कंट्रोल में होना चाहिए वो आउट ऑफ कंट्रोल ऐसा लगता है जा रहा है और उसको जाने देते हैं. यही कह के मन तो घोड़ा है तो चंचल है, यू नो ऑल द फ्रेजेस दैट वी हैव गिवन इट. ये तो मेरे वश में नहीं आ सकता, जबकि सिर्फ वही एक चीज है. माय थॉट्स, माय फीलिंग्स, माय इमोशंस, बिकॉज दे आर माय क्रिएशन. बाकी एवरीथिंग एल्स इज सेपरेट. तो जो कंट्रोल में होना चाहिए या जिसको हम ला सकते हैं, जो संभव है, उसी पर एफर्ट दें. यू गेट रिजल्ट लाइक दिस.
1: लेकिन वो जो इमोशंस, जो मन, जो फीलिंग्स हैं, वो इतने फ्लो में होती हैं सर शिवानी, कई बार इवन इफ इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स इन सच अ बिग फ्लो कि वी डोंट इवन फील कि वी कैन कंट्रोल इट.
0: नो, इट्स नॉट दैट. इट्स देयर नॉट इन अ बिग फ्लो. एट अ टाइम मेरा ध्यान एक ही चीज पर जा सकता है, या मैं अपनी तरफ ध्यान दू या आपकी तरफ ध्यान दू. राइट. लेकिन मेरा ध्यान आज सारे टाइम इतने सब लोगों की तरफ है. हे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे. तो अपने लिए तो फिर तुरंत कहेंगे टाइम नहीं है, यू नो. क्योंकि जब किसी से भी हम कहते हैं कि 15 मिनट 20 मिनट इस सेल्फ मास्टरी को आप लर्न कर सकते हैं, हम क्यों एक स्लेव की जीवन, एक विक्टिम की जीवन जीना चाहते हैं. नो, आई डोंट हैव टाइम. इट्स सो सैड व्हेन वी से दैट आई डोंट हैव टाइम. इट्स लाइक सेइंग कि मैं अपनी पूरी जीवन अज्ञान की नींद में सो दूंगा, लेकिन मैं अपने बारे में जानना जरूरी नहीं समझता. क्यों? क्योंकि मैं सारा दिन औरों की जीवन के लिए जिम्मेवार हूं. वॉट विल बी द रिजल्ट? एंड दैट्स वाई पीस, हैप्पीनेस, जो हम इतनी ईजी हम कहते हैं हमारी नेचर है, آئی کانٹ ایکسپیرئنس, کیونکہ مجھے اس کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سمے دینا پڑے گا, اپنے مائنڈ کو دیکھنے

0: energy exchange. तो energy जो मैंने create की आपके contact में आने से was fear.
1: Hmm.
0: And जब मैंने fear आपके लिए create किया, which I feel is for you, that's not respect. Fear और respect इकट्ठे नहीं हो सकता. Love and fear इकट्ठे नहीं हो सकता. We have to understand. हम हर time ये feel करते हैं कि you know कि ये सारी चीजें इकट्ठे इकट्ठे चलती हैं, जबकि ये poles apart है. एकदम पोल्स अपार्ट है. तो रिस्पेक्ट मीन्स कि मैं जो हूं, पहली बात सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं जो हूं मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूं और आप जो हैं मैं आपको एक्सेप्ट करती हूं एंड मैं जो हूं वो मैं अपने आपके सामने अपने आप को रखने के लिए तैयार हूं. देन इट्स रिस्पेक्ट
1: द रियल मी जो मुझे अच्छा लगता है.
0: तो रिस्पेक्ट में डर नहीं आएगा. ऑलवेज चेक अगर इफ आई एम एवर यूजिंग दिस वर्ड.
1: आई डोंट थिंक हम कभी भी अपना
0: डर लगता है
1: अपना रियल सेंस अपना रियल सेल्फ हम कभी भी प्रोजेक्ट करते होंगे
0: तो क्योंकि हमने उसको छुपा के रखा हुआ. तो कभी भी हम अगर कहें कि रिस्पेक्ट तो उसके साथ डर वर्ड नहीं आ सकता. रिस्पेक्ट मतलब मैं जो हूं जैसी हूं आई एम रेडी टू कम इन फ्रंट ऑफ यू. मुझे कोई प्रिटेंशन अच्छा बनने की प्रिटेंशन नहीं रखनी है आपके सामने. बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू. रिस्पेक्ट यू मतलब जो हम परमात्मा के साथ करते हैं अनकंडीशनल रिस्पेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो परमात्मा और आत्मा के साथ इसलिए बहुत अच्छा होता क्योंकि परमात्मा आत्मा को वो जो है जैसी है वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं. एक्सेप्ट करने के बाद भले हमें परिवर्तन करने की यात्रा बताते हैं लेकिन ही जस्ट एक्सेप्ट अस विद ऑल आर dirt and then in front of him I'm ready to say anything. जो मैं किसी के सामने बात नहीं कहूंगी अपने बारे में वो मैं उसके सामने कहने के लिए रेडी हूँ क्योंकि वो मुझे unconditionally accept करता है. I do not have to be pretend to be good in front of God. I can just be myself. This I cannot be in front of anybody. That because I'm carrying a low self-esteem. I'm always being nice, very nice outside. I'm not feeling that nice inside. लेकिन what I'm feeling, I can tell God. परमात्मा के साथ बैठू मेडिटेशन में I can just tell him everything. क्योंकि मुझे पता है he still loves me. जिस आत्मा से मुझे वो feeling आ जाएगी क्योंकि parent और child भी अगर आप देखो जैसे ही child ने कुछ ऐसा किया जो parent को अच्छा नहीं लगता तो वो कुछ ऐसा कह देते हैं even if it is in good interest. तो बच्चे को लगता है ये अगर मैं करूंगा तो मेरा जो parents है मुझे प्यार मिलना चाहिए था वो खत्म हो जाएगा. तो उस डर के कारण कि कहीं वो प्यार खो न जाए मैं अपनी बात को अंदर ही रख देती हूँ.
1: बहुत सुंदर आपने बात की लेकिन क्या आज हम गॉड के सामने भी अपने सही जो हम हैं
0: व्हेन यू रियली कनेक्ट टू हिम नॉट विद द कॉन्सेप्ट. जब आपको वो अनकंडीशनल लव अनुभव होना शुरू हो जाएगा आप अपनी हर बात रख सकते हो. और जैसे क्योंकि हर बात रखना तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है. हम छुपा देते हैं अंदर मेरे क्लोजेट में बहुत सारी बातें चेंज ही नहीं होती है चेक ही नहीं होती है क्योंकि वो दबाते जाते हो किसी के सामने भी नहीं रख सकते. जैसे ही उसके सामने खोलती हूँ अपना तो वो खुलते ही आधा तो वैसे ही खत्म हो जाता. आई कैन ओपन अप इन फ्रंट ऑफ हिम. इफ आई फाइंड एनी सोल ऐसी आत्मा कोई भी चाहे वो कोई भी रोल में हो टीचर है बॉस है कोई भी है जिसके सामने मैं जो हूं वैसा बन रह सकती हूं. आई डोंट हैव टू बी प्रिटेंड टू बी गुड देन आई रिस्पेक्ट दैट सोल. दैट्स रिस्पेक्ट फॉर मी. आई फील आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ. यू नो हम कई लोग बोलते हैं आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू इफ रियली वी मीन इट देन दैट्स रिस्पेक्ट. So we need to know these simple things about ourselves and our relationships. Because our relationships, apne saath, Paramatma ke saath, oron ke saath, prakriti ke saath, sara din khel jo hai, wo sara relationships ka. And relationships arthat energy, giving and receiving. It's a constant energy exchange. Ab ye energy exchange agar positive hoga, प्योर होगा तब मुझे कैसा फील होगा. बहुत हार्मोनियस. लेकिन अगर मैंने हमेशा समझा कि मुझे लेना ही है और जो मुझे देना है उस पर ध्यान नहीं दिया तो उसमें जो बिटरनेस आ गई तो उस कारण से जो एनर्जी एक्सचेंज हुआ वो बहुत टाइट होता जा रहा है. बहुत नेगेटिविटी आती जा रही है. हमारे पास जो सबसे बड़ा रिसोर्स है कई बार पेरेंट्स कहते हैं हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं बच्चों के लिए कमा रहे हैं बच्चों को ये सब देना चाहते हैं. सबसे बड़ी पावर मेरे पास क्या है स्पिरिचुअल पावर.
1: वो मैं कभी नहीं देती. मैं खुद अपना ही नहीं पता वो
0: जो मेरा सबसे बड़ी एसेट है. अपनी एसेट्स की लिस्ट बनाते हैं तो प्रॉपर्टी और ये सब बात. सबसे बड़ी एनर्जी जो मेरे पास है वो है स्पिरिचुअल एनर्जी विच

0: power of love, power of peace, power of truth, power of happiness. And ye mere purpose of life yahi hoga ki jo ye meri power hai main kitna isko auron ke sath share kar sakti hu, kyunki jitna isko auron ke sath share karte jayenge utna hamare relationships beautiful bante jayenge. Lekin isko bhul kar hum baki sab baatein mein len den mein jab lag jate to hum apne original se bahut dur hat jate aur hum ye bhul hi jate hain ki relationships is all about energy exchange. And that's why as we saw, hum sochte kuch aur hain aur bolte kuch aur hain aur karte kuch aur hain, kyunki mujhe lagta hai ki aapko meri thoughts samajh dikhai deti. To ye kuch ek baaton par hame agar dhyan rakh ke chale apne bare mein. One, my identity, ki main ek chaitanya shakti atma hu. Two, my nature, beautiful, peaceful, loveful and very pure. Third, my responsibility, meri zimmewari hai, mera bhagya mere hath mein hai, my responsibility to create my destiny based on my perception. And then my beliefs, ki kitne sare fatal beliefs jo humne create kar diye uski wajah se hamare kitni blockages aa jati hain jeevan mein. Control, hum auron ko control nahi kar sakte, koi aur hame control nahi kar sakta, hame sirf apne thoughts aur feelings par control hota. Paradoxical cheeze jo hum kar rahe hain ki dena hai lena nahi. And most important, relationships, it is energy exchange, and focus on that energy exchange and take care ki aapke paas jo itni beautiful power hai iska exchange, iski sharing sabke sath karte jaye to relationships ko acha banana nahi padega, wo automatic हार्मनी में चलेंगे.
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही सर शिवानी की. जब स्ट्रेस को मैनेज करने की बात हमने पहले कही थी तो उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी था कि जिस गाड़ी को हम लेकर जा रहे हैं उसके बारे में पता हो, और कहीं ना कहीं वही नहीं जान रहे थे कि कितने वो एस्पेक्ट्स हैं, सात एस्पेक्ट्स अपने हैं. अगर अपने बारे में हम सही परिप्रेक्ष्य में, सही एवरी टाइम इट कम्स डाउन टू द राइट पर्सपेक्टिव,
0: ये सात बातें जो हमने देखी इसमें से अगर एक को भी समझ लिया तो स्ट्रेस इज ओवर.
1: और अगेन यू नो, ये क्योंकि जब हम इसी पर काम कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं जो बाकी सारा जो स्ट्रेस क्रिएट करता है वो आई थिंक मुद्दा ही खत्म हो जाएगा. वो अपने
0: स्ट्रेस पर लेकिन कोई और क्रिएट नहीं करता ना,
1: वो भी हम खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं. ऑफकोर्स वंडरफुल. तो शिवानी, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू.
1: ये सारे एस्पेक्ट अगर हम अपनी जिंदगी के देख लेंगे तो फिर शायद मुश्किल ना रहे. शायद नहीं, अब शायद का शब्द नहीं रह जाता, डेफिनेटली देयर बी अ चेंज. अगर अभी भी आपके पास कोई बात है, कोई ऐसा सवाल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9999 3 4 4 6 9 8 7 3 6 6 5. और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. ये बातें तो वो रही जब हमने स्ट्रेस को दूर करने का एक पहला कदम उठाया था कि क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो मुझे अपने बारे में जानने चाहिए. अब आगे बात ये आती है कि खुद को पहचान लिया, ये सारी बातें पता चल गई, अब हमें वो प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने हैं जिससे स्ट्रेस हमारी जिंदगी में नहीं रहेगा. अब एक नहीं, ब्रह्मा कुमारी का ये सफर यूं ही चलता रहेगा. आने वाली कड़ी में स्ट्रेस से दूर होने का सही एस्पेक्ट समझेंगे. दीजिए इजाजत. ओम शांति.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी। और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: दोस्तों, अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि अगर किसी व्यक्ति को अपना भविष्य बनाना है तो उसका सबसे बड़ा जो अटेंशन है वो उसके आज पे होना चाहिए, उसके वर्तमान पे होना चाहिए। लेकिन फिर यही कहा जाता है कि अगर वर्तमान को सही रीति से जीना है या सही रीति से गढ़ना है तो पास्ट का अर्थात भूतकाल से हमें कुछ शिक्षाएं लेनी चाहिए, इतिहास में जाकर के देखना चाहिए, उन शिक्षाओं को वर्तमान में ला करके नए कल का आगाज करना चाहिए, तभी वो जो नया कल है वो बहुत उम्दा बनेगा। आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम रेडियो मधुबन के जरिए। हम हर हफ्ते आपके बीच में एक ऐसे अनोखे भारतीय को लेकर के आते हैं जो अपने यश के द्वारा भारत को यशस्वी बनाता है। आज के हमारे यशस्वी भारत कार्यक्रम में हम आपके बीच में लेकर के आए हैं एक ऐसे ही अनोखे व्यक्ति को। अनोखा इसलिए क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो इतिहास से है, वो इतिहास के पन्नों को पलट करके कुछ ऐसी चीजें हमें वर्तमान में बताते हैं जिसके जरिए हमारा भविष्य जो है वो सुनहरा बन सके। और इतिहास मतलब सत्य, सत्य के साथ जुड़ना ही हमें सुंदर भविष्य बनाने के लिए शक्ति देता है। आइए आज के हमारे मेहमान का हम स्वागत करते हैं। आज के हमारे यशस्वी भारत कार्यक्रम के मेहमान हैं प्रोफेसर रघुवेंद्र तनवर जी। प्रोफेसर रघुवेंद्र तनवर जी भारत के एक बहुत जाने माने

0: कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन है। ये एक ऐसे इतिहासकार हैं जो समकालिक परिवेश का अध्ययन करते हैं, और इनके इन अध्ययनों की वजह से जो हमारा देश है, जो दूसरे विधाओं के जो विद्वान हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपने काम में इस अध्ययन के जरिए बहुत अच्छा बदलाव ला पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं। प्रोफेसर रघुवेंद्र तनवर जी ने कई किताब लिखी है। वो प्रोफेसर हैं और वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके इतिहास की जो पारंगत है उसकी वजह से भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। तो दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं प्रोफेसर रघुवेंद्र तनवर जी का हमारे स्टूडियो में। प्रोफेसर रघुवेंद्र तनवर जी, आपका रेडियो मधुबन को समय देने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद इस विषय से भी करना चाहेंगे कि आपने आपके विधा के द्वारा आपकी जो स्टडी है इतिहास में, जो आपकी अध्ययन करने की क्षमता है, मैं क्षमता का इस्तेमाल इसलिए करूंगा क्योंकि हर एक जो है इतिहास में रुचि नहीं रखता है, जबकि हमारा इतिहास हमारे आज को और हमारे कल को एक नया रूप दे सकता है। तो आपकी इस गहन रुचि और क्षमता की वजह से जो आपने देश को लाभ पहुंचाया है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है, उसके लिए भी आपके इस डेडिकेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने समय निकाला हमारे लिए उसके लिए भी धन्यवाद और स्वागत।
1: जी, मैं शांतनु जी, मैं पहले तो अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे समय दिया गया इस प्रोग्राम पर, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी जो संस्था है ये विश्व भर में जानी जाती है, और एक ऐसे विश्व में ये आज है जो मैं तो कई बार सोचता हूँ कि एक तरह से जैसे द्वीप होता है, एक आइलैंड है, एक विश्व जो स्ट्राइक से, जो वॉर से, स्ट्रेस से, टेंशन से, एक ऐसा समाज, ऐसी दुनिया जो इन चीजों से हुई। आपकी जो ब्रह्म कुमारी जो आश्रम है, जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, एक तरह से द्वीप है, एक आइलैंड है, तो हार्मनी, पीस, तो मेरा जब भी इंटरेक्शन होता है तो मुझे ये चीज बहुत प्रेरित करती है, तो इसलिए मैं आभार आपके प्रति, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, आपके इस रेडियो मीडियम के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया है ये, और टाइम पर बात करेंगे आगे जैसे आप।
0: जी, हमारे श्रोताओं का ये भाग्य है और उनका प्यार है जिसकी वजह से आपके जैसे रतन जो है हमारे शो से जुड़ते जाते हैं और अपने चमक से हम सबके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। हमारे
1: लिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊं यहाँ कि जैसे मुझे पहले कृष्णा जी का फोन आया तो विश्वास कीजिए कि मुझे शायद 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे कि हम करने में। तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत व्यस्त था, ट्रैवल बहुत कर रहा था, तो मुझे बहन जी का फोन आया, तो मैं वहां से बोल रही हूँ, तो मैंने कहा क्या बताइए कब सुविधा है, तो मैंने 5-7 दिन का समय ले लिया, पर चैनल पे आने के, आपके इस मीडियम पर आने के लिए मुझे शायद 5-10 सेकंड का समय नहीं लगा, क्योंकि ये जैसे आपने कहा देश भर में, विश्व भर में आपके प्रति बहुत आदर है, बहुत रिस्पेक्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन, इस समाज को आप रिप्रेजेंट करते, और मेरे लिए बहुत मान की बात है कि आपने आदर सुना।
0: जी, और हमारे श्रोता साथियों के लिए भी ये बहुत एक नया विषय है जिसमें आज हम चर्चा करेंगे। जनरली जो हमारे श्रोता हैं यशस्वी भारत के, वो जो फार्मिंग कम्युनिटी है, कृषक समुदाय है, उससे जुड़ते हैं, कभी खेल के रत्नों से जुड़ते हैं, कभी वो साइंटिस्ट से जुड़ते हैं, वैज्ञानिकों से जुड़ते हैं, युवाओं से जुड़ते हैं, महिलाओं से जुड़ते हैं, लेकिन एक इतिहासकार से जुड़ना और एक ऐसे विद्वान से जुड़ना जो इतिहास के उन पलों को देखने का प्रयास करता है एक नए दृष्टिकोण से, जिसको लोग कहते हैं कि ये तो हो गया ना, इसे भूल जाओ, आप आगे बढ़ो। जनरली आजकल लोग इस सोच में चलते हैं। हम इन विषयों पर आएंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी कहानी आपकी जुबान में। जहां तक मुझे लगता है हर एक को बचपन में कहानी सुनना पसंद होता है और बुढ़ापे तक भी उसे कहानी सुनने में दिलचस्पी होती है। आपकी कहानी हम सुनना चाहेंगे कि कहां से रघुवेंद्र जी का सफर शुरू हुआ, प्रोफेसर रघुवेंद्र बनने तक, और उस सफर के कुछ ऐसे आयाम हम जानना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं आपकी कहानी से।
1: शांतनु जी, मैं, मेरा जन्म 1955 में हुआ, फरवरी 1955 में, कुरुक्षेत्र के पास एक गांव है, एक कृषि परिवार से बिलोंग करता हूं, आज भी जमीन से जुड़ा हुआ। तो जिन चीजों ने मुझे बहुत प्रभावित किया, वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक सामान्य, एक अच्छे परिवार में, कुछ परिवार में जन्म हुआ, पर ग्रामीण जीवन से बहुत लगाव और ग्रामीण जीवन को बहुत नजदीकी से देखा।

और दूसरी विशेष बात शायद मैं अपने जीवन की ये कहूंगा, बचपन में जन्म होने का मतलब है देश को आजाद हुए सिर्फ 5-7 साल जब हुई, तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मैंने देश को बदलते देखा है। मैंने देश को बहुत साधारण रूप से देखा, अपने गांव से कुरुक्षेत्र 15 किलोमीटर दूर है, रेलगाड़ी से बैठकर आते थे हम, बहुत बड़े निकले मेरे परिवार ने भेजा, वो सारा परिवर्तन मैंने देखा है। शिक्षा जब पाई, इतने इतिहासकारों में हूं जो एक आउट ऑफ चॉइस जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, आई एम एन एकेडमिक बाय चॉइस, इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अ जॉब। यहां तक कि आप इंडियन पुलिस सर्विस में मेरा नियुक्ति हुई 1970-78 में, तो मैं शायद उन लोगों में हूं जिन्होंने आईपीएस को छोड़कर एकेडमिक जीवन को अपनाया। तो मेरा जीवन दरअसल एज ए टीचर शुरू से एक एकेडमिक ओरिएंटेशन मेरी रही, शायद नेचर ऐसी थी। तो जब मैं पुलिस में भर्ती हो गया आईपीएस में 78 में, मेरे पिताजी कहने लगे तुम पुलिस के काबिल नहीं हो, तुम टीचर बनने गए। तो आई लेफ्ट द पुलिस जॉब तो एंड आई टुक अप टीचिंग एट द एज ऑफ 21 में शायद यंगेस्ट टीचर था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। एकेडमिक्स में बहुत अच्छा रहा अपनी, तभी गोल्ड मेडलिस्ट, तो 21 साल की उम्र में ही एक यूनिवर्सिटी में ओपनिंग मिल गई। तो ये जो मूल बात है कि इतिहासकार की जो आपने उठाई है बात, जो आपके बताऊं से जो मैं कहना चाहता हूं, मैं देश की यशस्वी भारत, जैसे आपका बड़ा सुंदर आप लफ्ज प्रयोग कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो हम लोग ये भारत यशस्वी कैसे है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये बाकी देशों से, इस दुनिया भर के देशों से, 200 से अधिक देशों से अलग है, फिर उस पर बात करेंगे। तो इसी पहले जैसे मैं इतिहासकार बन गया, ऐसा ऐसा रिसर्च करने लगा, जैसे जमीन से जुड़ा हूं तो मैं एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति हूं, बहुत सेंसिटिवली चीजों को ऑब्जर्व करता हूं। तो जहां भी मेरी राइटिंग्स हैं, जहां भी मेरी पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उनमें एक सेंसिटिविटी, मैं एक ग्रास रूट से जुड़ा हूं। मेरी विशेषता मेरे इतिहास की यही है कि मुझे माइक्रो हिस्टोरियन कहते हैं, कि मैं वो बात उठाता हूं जो लिखता हूं जो असामान्य व्यक्ति शायद गौर नहीं करेगा, और चाहे वो विभाजन पर है, चाहे वो कश्मीर पर है, और जो भी मैं लिखता रहा हूं। तो मूल रूप से मुझे शुरू से, देखिए एक बार इतिहासकार में मैंने टीचिंग कर ली, तो ये बात 1970 है, मेरे जीवन का दूसरा पहलू जो पड़ाव आता है वो 1977 अगस्त एट द एज ऑफ अबाउट 22। See, you can imagine 22 साल की आयु में आई वॉज टूट रेजेंट वहां से मैं लगभग 38-39 साल के लगभग मैं 2015 में मैं मेरी सुपरनिवेशन हुई, मेरी रिटायरमेंट हुई 60 साल की आयु में। और ये 38-39 साल मेरे जीवन के वो हैं जो मैंने बहुत कोशिश करी उस इतिहास को, जैसे आपने उस शब्द में कहा कि मैं उस पहलू को उठाता रहा, कि मेन स्ट्रीम नैरेटिव है। शायद इतिहास एक ऐसा डिसिप्लिन है शांतनु जी की, इसमें आप दूर बैठे हैं लंदन, जो चीज जो आपका बैकग्राउंड है ना जी, मान लीजिए माउंट आबू में बैठे हैं, तो हम तीन दूर दूर बैठे हैं, तो हम लोगों का बैकग्राउंड क्या है, हमने क्या पढ़ा है। इतिहास में कई बार एक चीज को श्रोताओं के लिए मैं बहुत सरल भाषा में, सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो हम लोग आगे बात करेंगे उससे संबंध है इस चीज का। इतिहास में एक ही सोर्स है, इतिहास को हम इस सोर्स के बेस पर हम लिखते हैं। अब हम तीन व्यक्ति बैठे हैं, हम लोगों के सोच जो है, हमने क्या खाया क्या पिया, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम क्या पढ़ते हैं, ये उसको इन्फ्लुएंस करता है कि हम एक पर्टिकुलर इतिहास की घटना को कैसे देखें। ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि इतिहास के कई बार एक ही सोर्स का अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो जाता है, अगर उसका अनुवाद हो जाता है। तो ये एक डिसिप्लिन की विशेषता है, इस सब्जेक्ट की कहेंगे महत्व कहिए, इसका विशेषता कहिए कि ये अलाउ करता है डिसिप्लिन। अब देखना ये है कि अब मैं जैसे अपने लेक्चर में, जब मैं लेक्चर दिया करता था यंग स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, तो मैं कहता था आप 20 लोग बैठे हैं, 40 लोग बैठे हैं क्लासरूम में, आप सब लोग जाइए बाहर 5 मिनट के लिए जाइए, एंड वी विल सिट बैक एंड, और वापस आइए और आप ये 2 पैराग्राफ लिखकर बताइए कि आपने क्या देखा, क्या महसूस हुआ, क्या एहसास हुआ। ठीक है, तो ये मेरी बहुत जानी जाती, बहुत स्टूडेंट्स मेरे याद करते हैं। तो ये वो कम बैक, और विश्वास लीजिए कि ज्यादातर लोग अलग अलग, आप किस बैकग्राउंड से, मान लीजिए दिल्ली में और मैं गांव में रहता हूं, निश्चित है हमारी सोच, यू नो, हमें जो चीज अट्रैक्ट करे किसी को कुछ करेगा। तो ये लाइकवाइज हिस्ट्री में होता है। तो इसी इंडियन हिस्ट्री राइटिंग में एक विशेष बात रही है, इस चीज के मैं आज, जैसे मैं शमहन से बता रहा था कि थोड़ी देर पहले, कि मैं इंडियन काउंसिल

हिस्टोरिकल रिसर्च, भारतीय अनुसंधान इतिहास की जो है, तो देश भर में इतिहास के अनुसंधान का अध्यक्ष मैं हूँ, पर अलग अलग सेंटर चारों लोग जुड़े रहे। तो मेरा इसमें प्रयास यही है, सबसे पहले आपको जानना ये होगा कि ये देश जो है उसी एक भारत एक सामान्य देश है, मैं आपको ये बात थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। और हमारा जो इतिहास लिखा गया इसी हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ग्रामीण भाई बहन तो नहीं जानते होंगे कि जो उपनिवेशवाद रहा जिसको हम अंग्रेजी में कॉलोनियल कहें, ग्रामीण आपके जो श्रोता है अधिकतर मुझे कृष्णा जी बता रही थी कि ग्रामीण होते हैं, तो उनको मैं समझाने के लिए कि देश पर ये हजारों साल से यहाँ विदेशी आते रहे। विदेशी क्यों आते थे भारत ये भी जानना जरूरी है। कौन लोग आक्रमण करते थे, ये लोग आते थे कबीलों से आते थे, सेंट्रल एशिया से, कुछ खाने को नहीं था, कुछ पीने को नहीं था, कुछ रहने को नहीं था, एक जंगली लोग थे एक तरह से। और भारत जो है वो एक संपन्न देश था ये हजारों साल से, क्योंकि यहाँ की भूमि बड़ी उपजाऊ थी, पानी बहुत था, तो जहां सरप्लस जनरेट होता है, जहां कृषि अच्छी होती है तो संपन्न हो जाता है। उस संपन्नता को लूटने के लिए विदेश से आते तो, पर यह होता रहा। 200 साल पहले जब अंग्रेज यहां आया, अंग्रेज ने एक बहुत भयंकर, एक तरह से कहूंगा मैं, एक बहुत बड़ा नुकसान इस देश का। 500-700 साल पहले लोग और भी रहे यहां, पर अंग्रेजों की जो 200 साल का जो कॉलोनियल हिस्ट्री है उसने यहां देश को अपनी जड़ों से काटा। तो वो जड़ों की बात करेंगे थोड़ी देर बाद कि वो जड़ें क्या है, सामान्य व्यक्ति को जानना बड़ा जरूरी है कि देश की विशेषता क्या है। तो इस एंगल से अगर आप देखें तो 200 अंग्रेज आया, 200 साल में उसने देश को इतना बदल दिया जो हजारों साल में नहीं बदला गया। कॉलोनियल हिस्ट्री का 200 ईयर जो कॉलोनियल हिस्ट्री बड़ा यूनिक, इसका एक डैमेज हुआ इस देश को, तो इसके नतीजा इसका परिणाम ये हुआ कि बाइसेस डेवलप हो गए हिस्ट्री राइटिंग। बाइसेस मतलब एक सामान्य व्यक्ति को मैं बताऊं कि आप एक एंगल से पढ़े एक चीज, आपके पास सच लिखा है, परंतु सच में आप एक ऐसी चीज खोजेंगे जो लिखी जाती है एक दूसरे एंगल से, एक प्रतिपक्ष हो गया एक तरह से। नहीं, दूसरा एक जो एक और बहुत बड़ा नुकसान हुआ अंग्रेजों द्वारा प्रेरणा जो मिली इतिहास लेखन में, वो एक भारत की, इसी भारत में अभी आपके आने से पूर्व कृष्णा बहन से बात कर रहा था कि हम लोग एक जैसे इसी इंडिया की जो यूनिकनेस है वो स्पिरिचुअल है। हमारा जीवन का हर पहलू यहाँ, कोई जीवन सामान्य भारतीय जिसपे मैं बताऊंगा आगे, कि वो एक स्पिरिचुअल है। तो जब आप एक देश को उसकी ट्रू लेगेसी, हमारी जड़ें जो है वो छींची जाती थी स्पिरिचुअलिज्म से, कल्चरल डाइवर्सिटी। तो इसी वे यू अंडरस्टैंड इंडिया, जब भारत को आप जानते हैं, जानने समझने की कोशिश करें कि जो व्यक्ति भारत को स्पिरिचुअल नेशन मानता है वो भारत को समझ सकता है। वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने इसको एक स्पिरिचुअल नेशन से डिस्कनेक्ट, तो पॉलिटिकल एंगल से देखा, इकोनॉमिक एंगल से देखा, ईश्वर की नेचर की एक कृपा रही है इस देश पर। अगर आप इसका भूगोल देखें, अगर आप कभी गंभीरता से सोचें, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिस प्रकार से भौगोलिक रूप से हम लोग, तो हर सीजन है, हर प्रकार का फ्रूट है, हर प्रकार की फसल है, हर प्रकार का मौसम है, समझे ना। हिमालय से लेकर और नीचे त्रिवेणकोर तक जाइए, आप ईस्ट से वेस्ट जाइए, इस देश की विशेषता। तो ये दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं है जो हमारे जैसा भूगोल का, नेचर का बहुत बड़ी कृपा है इस देश में। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। यहाँ श्री अरविंदो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर एक बात प्रसिद्ध अब है, बहुत जो ग्रामीण श्रोताओं के लिए एक बहुत बड़े हमारे फिलोसफर हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, स्वतंत्रता संग्रामी हैं, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसने भारत में फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, कल्चर की जो संस्कृति की जो बुनियाद है भारत, उसमें वो एक जगह लिखते हैं, मैं आपको अंग्रेजी में पढ़कर फिर अनुवाद का, तो लिखते हैं, भारत इंडिया इज शट इन टू अ सेपरेट एग्जिस्टेंस बाय द हिमालयज एंड द ओशन, has always been home of a peculiar people, distinct from all others, germs of life, spirit and culture. यानी अर्थात तो यहाँ कहते हैं, बहुत लंबी कोटेशन है, मैं दो तीन लाइन ही पढ़ता हूँ, ये देश एक बहुत विचित्र देश है, और ये आज से नहीं हजारों साल, क्योंकि भूगोल ने, ज्योग्राफी ने इसको एक बॉर्डर दिया, नेचुरल बॉर्डर, हिमालय से लेकर और नीचे सागर तक, वो लोग इसमें रहते हैं, वो लोग भारतीय, अखंड भारत का जो कल्पना है, अखंड भारत की आज से नहीं है। और बिंदु करते हैं, उससे पहले कलन करते हैं, उससे पहले इसी थ्रू आउट हिस्ट्री आपको मेगास्थलीज करते हैं, आप चले जाइए 2000 साल पूर्व, यूनानी इतिहासकार लिखते हैं कि फ्रॉम द हिमालयस टू द ओशन, फ्रॉम वन एंड टू द अदर, इट इज रिपीट एक्सप्लेन्स दिस कंट्री। सो ये समझना हमारे श्रोताओं के लिए बहुत जरूरी है कि ये पॉलिटिकल फॉर्मेशन जो बाद में बनी है, हजारों साल बाद बनी, ये भारत पर

0: नहीं, ये जानना ये देश जी।
1: जब आप ये कह रहे थे और जब आप श्री अरविंद जी के छोटे से परिभाषा में भारत की असीमता को दर्शा रहे थे, मुझे बिल्कुल ख्याल आया कि दो दिन पहले ही यहाँ लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक इवेंट रखा गया था। उस इवेंट का पर्याय ये था कि 19 तारीख को वर्ल्ड हेरिटेज डे है, 19 तारीख से एक हफ्ता वर्ल्ड हेरिटेज सप्ताह के तौर पर मनाया जाएगा, मतलब धरोहर, वैश्विक धरोहर सप्ताह। और उसमें मैं भी इन्वाइटेड था और दो अलग देशों के एम्बेसडर्स भी थे। उनमें से जो प्रोग्राम कर रहे थे, जिन्होंने होस्ट किया था, वो भारतीय मूल के हैं, तो उन्होंने भारत की सभ्यता को आगे लाने का, उसके धरोहर को आगे लाने की बात रखी। और जो दूसरे दो देशों के एम्बेसडर थे, उन्होंने अपने सभ्यता के बारे में बताया। लेकिन यहाँ यूनिक चीज ये है, जो आपको भी सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा और हमारे श्रोताओं को भी, कि दोनों देश के एम्बेसडर ने अपने देश की विविध धरोहर के बारे में बात किया। और जो भारत को रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे, उन्होंने अपने देश के बारे में तो बात किया, लेकिन उन जो दो देश के एम्बेसडर आए थे, उनके देश में क्या बहुमूल्य है जिससे हम सीख सकते, उसके बारे में भी बात किया। और मैंने उनके शक्लों को देखा जब वो अपने देश के बारे में बोल रहे थे, तो वो बड़ा नाज हो रहा था उनको। लेकिन जब उन्होंने किसी भारतीय को अपने देश के किसी धरोहर के बारे में प्रशंसा करते हुए, उसके अंदर छिपे हुए किसी गुण को निखारते हुए या उसको धारण करने की बात कही, तो उनके शक्ल पे केवल प्रशंसा और केवल मतलब गर्व ही नहीं, एक अलग प्रकार की चमक थी कि ओह, मेरे देश में ये चीज है जो इस व्यक्ति को पसंद आई। तो ये जो उदारता है भारत की, राइट चीज को देखना, अच्छी चीज को समझना, उसको धारण करना, ये बहुत बढ़िया एक उदाहरण था। और उसी उदाहरण से मुझे ये चीज आपको पूछने का मन कर रहा था कि भारत के इतने लंबे इतिहास में आपकी रुचि पूरे, जैसे इतिहास में भी अगर हम देखें तो पौराणिक इतिहास भी है, वैदिक काल का इतिहास भी है, फिर मध्यम काल का, मुगल काल का, और भी बहुत सारे ऐसे काल होंगे जिसके इतिहास होंगे, आपका सबसे रुचिकर समय इतिहास के टाइमलाइन में कौन सा है?
0: शांति जी, उस बात पर आने से पूर्व मैं आपके आगे से एक छोटी सी चीज और आपका ध्यान आपके श्रोताओं को जो बताना जरूरी, जो सामान्य व्यक्ति को पता नहीं रहता
1: जी,
0: लोगों को। देखिए, हम लोग एकेडमिक वर्ल्ड में है, बहुत हाई लेवल पर है, तो हमारा सामान्य व्यक्ति से पहुंच हमारा, ये बड़े दुर्भाग्य है इस देश का। कि मैं एक चीज जो बताना चाहता हूँ आपके श्रोताओं के, साधारण श्रोताओं, कि इस देश की विशेषता, पिक्यूलैरिटी क्या है, विशेषता क्या है, अलग हमें अन्य सभ्यताओं से, अन्य देशों से हम अलग कैसे। सबसे पहले शांतनु जी क्या है जानना, कि मैं आई बीन राइटिंग ऑन दिस रीजन, कि हम लोग एक इवॉल्व सिविलाइजेशन, आप यूरोप में बैठे हैं, आप यूरोप के मान देखिएगा, कोई देश किसी युद्ध से बना है, कोई देश किसी मैप रीड्राइंग से बना है, कोई किसी आर्थिक मजबूरी से बन गया है, कोई देश तो नाम भी नहीं पता, जो एकाएक पैदा हो जाते हैं, प्रेस बटन जिसको कहेंगे, अब दुकान में जाएं सामान खरीदें तो वो देश बन गया है। इस देश को ये इवॉल्व हुआ है, ये इवॉल्व ओवर सेंचुरी, हजारों साल से ये इवॉल्व, ये जानना बहुत जरूरी है। और एकमात्र देश है जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस से पैदा हुआ है, इसी मैप्स पॉलिटिकल, अच्छी यूरोप के साथ तुलना कीजिए आप। एवोल्यूशन का क्या मतलब, एवोल्यूशन का सबसे बड़ी विशेषता इस देश की क्या है, कि हम लोग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग वस्त्र पहनते हैं, अलग खाना खाते हैं, हमारी शक्ल से, हम शरीर के रूप से अलग हैं, ठीक है, बट अंदर अंदर से एक इनेट बॉन्डिंग, और इस इनेट बॉन्डिंग को आप हजारों साल से पाते हैं, आज नहीं। अभी हम लोगों ने एक किताब करी है इताशी चार में, इंडिया दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मैं एक किताब कर रहा हूं अभी जो हमारी रिलीज होने वाली है नवंबर में, बहुत इम्पोर्टेंट है, टू कश्मीर थ्रू दी एजेस, 3,500 साल का हमने कश्मीर, उसके अंदर आप देखते हैं कि आप देश में, आप लंदन बैठे हैं, मैं कुरुक्षेत्र में बैठा, आप देश के किसी हिस्से में चले जाए, वहां का भाषा अलग होगी, खाना अलग होगा, लोग अलग, पर आपको आउट ऑफ प्लेस कभी नहीं फील करेंगे। तो एक यूनिकनेस है। आप ऐतिहासिक रूप से देखिए, आप शंकराचार्य केरल से चलते हैं, पैदल जाते हैं, युवा एक विषय और जाके श्रीनगर पहुंच जाते हैं, क्रॉस नाइट थ्रू हिस्ट्री यू हैव दिस, बिकॉज एज अरविंदो राइट्स, यू नो, ये इवॉल्व हुआ, और हम स्पिरिचुअली कल्चरली इनेट बॉन्डिंग है, हमारे अनेक भगवान होंगे, अलग अलग जगह में उसके अलग अलग रूप होंगे, अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग पूजा की प्रक्रियाएं होंगी, पर इनेट बॉन्डिंग, तो ये सामान्य श्रोता को समझना जानना इस देश की सबसे बड़ी विशेषता। अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं कहूंगा कि हम लोग भी वी आर नॉट इवॉल्व, हम पॉलिटिकल एवोल्यूशन नहीं, हम किसी उत्पन्न किसी मजबूरी से नहीं हुए जैसे यूरोप के अनेक देश। हम तो प्रकृति ने हजारों साल से उठते रहे, कि आपके भी हमारे परिवार में भी आपके परिवार में भी ऐसे होंगे, हजार साल पहले जो कल्चरल सिस्टम था, जो चीज हम करते थे हमारे पूर्वज करते थे, आज हम उसको करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ प्रोसेस है। तो दिस इनेट बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो नाउ कमिंग टू अनदर थिंग दैट आई वांट टू यू नो बिफोर अगेन आई कम टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ माय सब्जेक्ट, देयर आर टू थ्री अदर थिंग्स यू नो। जैसे अभी कृष्णा जी से मेरी बात हो रही थी आप कहने से पहले कर्म का, यू नो भारत को समझने के लिए कर्म का सिद्धांत, यू नो यू हैव दिस रेफरेंस थ्रू आउट।
1: कर्म जो है वो भी हमारे ही भाषा से है और जो आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, लोग उसके बहुत प्रकार के परिभाषा देते हैं, लेकिन योग कर्म, कर्मा जिसको ए जोड़ करके कर्मा बना दिया गया है, योग जिसमें ए जोड़ करके योगा बना दिया गया है, बट ये योग कर्म ये सारी चीजें भारत से ली गई हैं। और आप कर्मा के विषय में बात कर रहे थे,
0: कर्मा के विषय हमारे यहाँ एक सोच है, हम जैसे बच्चा पैदा होता है सबसे पहले वी नो वी ट्राई टू, जैसे वो बड़ा होता है हम उसको राइट एंड रॉन्ग सच नो एंड द फिलोसफी दैट यू डू नॉट एस्केप, आप अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते आप नो। तो दिस इज यूनिक टू दिस कंट्री, यूनिक टू आवर सिविलाइजेशन। हमारा जो सभ्यता है ये हमारे बचपन हमारे खून में भर दी जाती है, आप अपने कर्मों से मुक्त नहीं है, यू कैन नॉट एस्केप द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म और लाइक देयर आर इट इज द वर्ड इज कमिंग डाउन टू अस फॉर एजेस। नाउ व्हाट इज धर्म, आई मीन इफ इट इज नॉट रिलीजन इट इज अ वे ऑफ लाइफ। जैसे ब्रह्म कुमारी आप लोग से आपकी संस्थाओं में हर अगर कोई पूछे तो ब्रह्म कुमारी की मेरे से पूछे, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ आपकी संस्था के अनुसार उसकी व्यवस्था को देखते हुए मुझे तो बहुत कम ज्ञान है, परंतु मूल सिद्धांत क्या है, जीवन कैसे जीना
1: है, जीवन का शब्द जो है धर्म शब्द जो है वो धारणा शब्द से आता है कि धारणाएं कौन सी हैं।
0: जी ये हमारे यहाँ ये एंकर ऑफ सोसाइटी है, जैसे एक बड़े जहाज का एंकर होता है ना, ये यू सी द कॉन्सेप्ट इज यूनिक टू दिस कंट्री। इसमें क्या सिखाया जाता है, यू नो कंपैशन, यू नो कंपैशन कहेंगे दूसरे का दर्द देखकर आपके अंदर आप मदद नहीं कर सकते, नहीं भी कर पाएंगे, आपके मन में कुछ असर होना चाहिए उसका, नॉन वायलेंस, यू नो सोसाइटी एक को एग्जिस्टेंस हार्मनी, गेटिंग योर सेल्फ आउट ऑफ द रैट रेस जो है ना अंग्रेजी में कहेंगे, मार दौड़ के दैनिक जीवन की मार दौड़ से बाहर निकलना, ये सब उसमें आता है। अब ये आप देखें तो ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा है, वी हैव नॉट सॉर्ट ऑफ यू नो सॉर्ट ऑफ फॉलोड दिस। अब वैदिक लिटरेचर में फॉर एग्जाम्पल 3500 साल वगैरह माने के लिए वैदिक वेदास की डेट सभी वो होता है, यू नो देर इज अ सेइंग अपार्ट फ्रॉम द ड्यूटीज owed to the gods, there are duties to man and kindness. वैदिक लिटरेचर में रेफरेंस आता है इसमें कि आप ईश्वर के प्रति तो आप करेंगे ही अपना यू नो यू आर डिवोटेड, बट यू हैव टू बी डिवोटेड गोइंग टू मैन काइंड नो एंड वॉट पैशन काइंडनेस लाइकवाइज यू नो टॉलरेंस किनशिप इज अ ट्रस्ट। ये सब चीजें हमारी विशेषता है, इस देश की विशेषता है। एक चीज और जो यहाँ मैं आपका ध्यान यू नो आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, स्पिरिचुअलिज्म की बात, दिस हैज बीन इनेट है, हमारे सभ्यता का इनेट पार्ट रहा है। आप कोई युग देख लीजिए, कोई ग्रंथ देख लीजिए, कोई कुछ भी देख लीजिए, आपको स्पिरिचुअलिज्म के आसपास वो कहीं ना कहीं रिवॉल्व।
1: सिर्फ धर्म और ग्रंथ ही नहीं रघुवीर जी, मुझे लगता है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी इस अध्यात्म का दर्शन होता है। अगर सुबह उठ करके बच्चे माता पिता के पैर छूते हैं तो उस पैर छूने के पीछे भी एक आध्यात्मिक रहस्य है।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली,
1: क्योंकि ये आध्यात्म जो है केवल एक एक्टिविटी नहीं है भारत के लिए, ये हमारे जीवन का एक जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। हर चीज जो हम करते हैं, जो खाते हैं, पहले क्या खाना है बाद में क्या खाना है, उसके पीछे भी एक आध्यात्मिक रहस्य है। तो आध्यात्म जैसे कि आपने बहुत सही कहा कि भारत का जो मूल है वो आध्यात्म रहा है, और अंग्रेजों ने उस आध्यात्म से भारत को जो है विमुख किया, जिसकी वजह से जो ये 200 वर्षों में भारत के ऊपर जो बड़ा परिवर्तन आया, इतना बड़ा परिवर्तन भारत के मानचित्र पे पहले कभी नहीं था,
0: कभी नहीं आया।
1: आपके जब जीवन कहानी को मैं सुन रहा था तो मुझे तीन चीजें बहुत यूनिक लगी जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक की

0: आपने बचपन के बारे में बताया कि आप शुरू से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार रहे हैं, तो मुझे जानना पहला सवाल यह है कि बचपन में क्या आपको इतिहास में इतनी रुचि होती थी जितनी कि आपकी आज है, या बचपन में कुछ और रुचियां होती थी?
1: नहीं, देखिए इसमें शांतनु जी कि बचपन में एक्चुअली मेरे पिताजी से प्रभावित बात से वो बहुत पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे, और ये कहना कि तो मुश्किल है कि इतिहास का स्कूल में एक्चुअली एक मुझे पढ़ने लिखने की आज मैं अभी आज की मैं 70 साल का होने जा रहा हूँ और हफ्ते 10 दिन में एक किताब को मैं पढ़ लेता हूँ कि नई किताब। तो ये पढ़ने लिखने का जो सिस्टम है ये प्रारंभ से ही कहूंगा स्कूल के बाद ही, ज्यादातर स्कूल जैसे मैं स्कूल से निकला कॉलेज में गया, कॉलेज में एक्चुअली स्पोर्ट्स में मैं अच्छा था तो पुलिस में सिलेक्शन हो गया। पुलिस में सिलेक्शन के बाद मैंने लगा नहीं मेरे लिए नहीं है ये।
0: और आपके पिताजी ने आपको बताया कि आप शिक्षक बनेंगे, तो आपके पिताजी ने कौन सी ऐसी चीज देखी आपके अंदर?
1: उन्होंने एक्चुअली मैं संवेदनशील बहुत हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ, तो पुलिस में सेंसिटिविटी का जैसे आप जानते हैं वो कम स्थान है भारत में विशेषकर, तो एक इसी मैं उन व्यक्तियों में हूँ जो अगर आज तक मुझे लगता नहीं कि किसी दिन मैं सोया हूंगा रात को और मेरी आत्मा पर भी भार, मैं अपनी आत्मा को बिल्कुल मुक्त रखता हूँ, मैं उस आत्मा को अगर कोई भार आता है तो उसको जल्दी से जल्दी उठाने की मैं अपनी आत्मा पर भार नहीं रखता। और कभी कॉन्शियसली अंग्रेजी में कहेंगे ना कॉन्शियसली, देखिए गलतियां हम सबसे होती है, बड़े लोगों से होती है, झूठ भी कई बार अनजाने में बोला जाता है, पर जानबूझकर मुझे नहीं याद है कि मैंने जिंदगी में कभी किसी का जानबूझकर नुकसान किया हो, जानबूझकर झूठ बोला हो, जानबूझकर विमान गति करी हो, क्योंकि मैं एक कॉन्शियस को जिंदा रखने। और पुलिस के लिए मुझे लगा मेरे पिताजी ने जब मुझे समझाया ट्रेनिंग पे मैं चला गया तो कहने लगे नहीं तुम कामयाब नहीं हो गए, बेटर राज मुझे तो बहुत समय हो गया, आज मैं सोचता हूँ कि वो कितने दूरदर्शी व्यक्ति थे मुझे इस लाइन पर डाला। तो ये एक एक जीवन की एक रूप है अलग अलग,
0: न केवल मैं समझता हूँ वो दूरदर्शी थे क्योंकि भविष्य तो कभी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन व्यक्ति के आचरण उनके चरित्र उनके स्वभाव को देख करके परख लेना कि ये किस चीज में ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। ये एक बहुत अच्छे अभिभावक का परिचायक है, एक बहुत अच्छे पेरेंट का परिचायक है। इसी सवाल में मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अपने पेरेंट्स में ऐसी कौन सी चीजें देखी जो कि आप हमारे श्रोताओं को शेयर करना चाहेंगे जिससे वो अपने बच्चों को इसी प्रकार का एक गाइडेंस दे सके, जहां जो वो गाइडेंस है वो मार्गदर्शन है वो ऐसा नहीं लगे कि दबाव दिया जा रहा है बच्चे पे कि आप ये बनो या यही करो
1: जी, जी,
0: या ये भी ना लगे कि पेरेंट्स खुद भी अनजाने कि पता नहीं क्या करना है, जो होगा देखा जाएगा, कर लो जो करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो क्षमता थी आपके परिजनों में आपके पिता में या आपके अभिभावक में स्वभाव को पहचानने की, स्वभाव के अनुरूप एक परामर्श देने का जो गुण था वो कहीं ना कहीं आज लोगों में कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। एज अ बेनिफिशियरी जिसने इस गुण का लाभ लिया है, क्या देखा आपने अपने अभिभावक में जो कि आप आज के अभिभावकों को सजेस्ट करना चाहेंगे?
1: शांतनु जी देखिए दो पहलू, सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि आप अपने बच्चों से ट्रांसपेरेंट रहें। हम जैसे मान लीजिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात, आज देश में लगभग 10-15 लाख लोग सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठते हैं
0: जी,
1: जो आईपीएस और आईएएस सिविल सर्विस यूनियन प्रोफेसर्स, सच्चाई ये है कि उसमें से 15 लाख या 12 लाख में से उसमें से क्षमता रखने वाले लोग शायद 10,000 भी नहीं। तो हमारे पेरेंट्स का जो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनकी उम्मीदों को आप उनकी आकांक्षाओं को उनकी विश को कम करिए आप, बट यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मस्ट अंडरस्टैंड दी रियलिटी ऑफ लाइफ, नो अंडरस्टैंड कि मेरे बच्चे की क्या पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को समझना तो माँ बाप ही समझ पाएंगे। और जैसे बच्चों को समझाया जाए और जिस प्रकार से उनको इसी इट इज बेटर टू एस्पायर फॉर समथिंग विच इज इसी आपकी परम, हमारी जीवन तो एक अलग दुनिया है, आपको सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो ये रैट रेस है जो हम भाग दौड़ करते हैं जीवन में सफलता पाने के लिए, ये सामान्य व्यक्ति की 99.9% लोग इसी रेस में है, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं एक चीज और बताऊं आपको, दोनों इज टू वे दोनों तरफ की बात, मैं अपने लेक्चर्स में हमेशा एक चीज शुरू से 22 साल की उम्र से लेकर 70 साल तक एक चीज हमेशा लेक्चर में बताता हूं कि जब आप स्टूडेंट हैं आपके मन में आप कितने भी सफल क्यों ना होते आपके मन में छोटा सा एक मेंटल होराइजन, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर, मैं आपसे बात कर रहा हूं।

0: संभव है मेरा दिमाग कहीं और होगा, मैंने इसके बाद वहां जाना है, मैंने कल ये करना है, अब आप तो नहीं बता पाएंगे मुझे देख कर ये। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ माइंड जो है, उस माइंड में छोटी सी जगह अपने माँ बाप के लिए रखना जरूरी है। कई बार बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप कहीं भी चले, कुछ रोज पहले एक बहुत गरीब एक माली मिला तो हमारे गांव के पास, मिलेगा मेरी बेटी विदेश जा रही है, और मैंने कहा तुमने कैसे पैसा किया उसको, भी लंदन जा रही है वो 13 तारीख को, आपने इतना पैसा कहां से, मैंने कर्ज ले लिया, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। तो मैंने उस लड़की, वो मुझे मिलाने लेके आया अपनी बेटी, तो शांतनु जी मैंने उसको क्या सुझाव दिया, वो माँ और बेटी मेरे पास आई 2-3-4 रोज के पहले की बात। मैंने कहा बेटा देखिए, अब आपके माँ बाप हैं सुबह से लेकर शाम तक फोन करते हैं, ठीक है 15-20-25 हजार इनको तनख्वाह मिली, और इन्होंने कैसा वो जिंदगी में ये कभी मत भूलना, इस व्यक्ति ने और आपकी माँ ने आपके पिता ने आपके लिए क्या किया है। और ये कोई ज्यादा बाहर नहीं है, दिमाग के कितने से हिस्से में, अगर आप एक पार्ट ऑफ द ब्रेन में अगर आप ये बैठा लें आपको, जब भी आप संकट में होंगे, जब भी आपके सामने दो रास्ते आएंगे, आप उस इमेज को सामने ले आएंगे। आपके माँ बाप अगर आपको एडवाइस करते तो क्या कि आज समाज के आगे बहुत बड़ा, मुझे कृष्णा जी बता रही थी कि जिससे जहां आपका रेडियो का कवरेज एरिया होता है, ड्रग्स का इश्यू आ रहा है, क्राइम का इश्यू आ रहा है, ग्रामीण समाज में दिक्कत आ रही है, तो ये कई चीजें कई पैरामीटर्स पर हमें सोचना पड़ता है। पेरेंट्स अगर बच्चों के लिए सोचते हैं तो बच्चों को भी पेरेंट्स के लिए सोचना आवश्यक सेंसिटिविटी, जैसे मैंने कहा ना आपसे जी।
1: तो आपने दो जवाब दिए इस प्रश्न के कि अभिभावकों में पारदर्शिता होनी चाहिए, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बच्चों के प्रति, कि भाई जो चीज मैं देख रहा हूँ ये मेरा बच्चा नहीं कर सकता उसके लिए मैं उसे नहीं
0: उस लाइन पे मत डालें,
1: और जो चीज मैं देख सकता हूँ कि बच्चा इसमें अच्छा कर सकता है उस चीज के लिए मैं उसे सपोर्ट करूँ उसके पीछे। साथ ही साथ बच्चों के लिए भी बहुत सेंसिटिव और संवेदनशील होना जरूरी है कि मेरे माता पिता मेरे लिए क्या कर रहे हैं ये मैं कभी ना भूलूं।
0: कभी ना।
1: ये आपने बहुत सुंदर दो बैलेंसिंग उत्तर दिए। और तीसरा सवाल जो मैं आपके इसी आपके कहानी से लेकर के आना चाह रहा था वो ये था कि आपने बताया कि इतिहास में कई पहलू होते हैं, लेकिन मैंने जब आपको ये सवाल पूछना हो कि सभी टाइमलाइंस में से आपका सबसे फेवरेट या आपका सबसे पसंदीदा टाइमलाइन इतिहास कौन सा है।
0: शांतनु जी देखिए, मैंने आपसे बताया था कि मेरा जन्म जैसे 55 में हुआ, 1956 में, तो मेरा जो गांव था, मैं किस में मॉडर्न हिस्टोरियन कैसे बना, आज मैं अगर जाना चाहता हूँ कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन, हिस्ट्री में अलग अलग फील्ड हैं, कोई इंडोलॉजिस्ट है, कोई लैंग्वेज हिस्टोरियन है, एंशियंट हिस्टोरियन, कोई आर्कियोलॉजिस्ट है, यू नो बहुत 50 डिसिप्लिन। माइक्रो मेरे लेवल पर आकर हम लोग माइक्रो हिस्टोरियन, हम माइक्रो फील्ड में बन जाते हैं, हमारा सारा जीवन एक पर्टिकुलर क्षेत्र को लेकर हम लोग काम करते हैं। तो मेरा प्रारंभ में मेरा जो रुचि भारत के विभाजन में हुई या मॉडर्न हिस्टोरियन के रूप में हुई, तो उससे मेरा जो प्रारंभिक जीवन था, ग्रामीण जीवन था, उससे मुझे प्रेरणा मिली। कैसे मिली प्रेरणा, ये कि जो मेरा गांव था, तो वो गांव हमारा बहुत प्राचीन गांव है, 1000 साल से पुराना गांव है ये, और जब विभाजन हुआ तो उसके गांव के आसपास जो है शरणार्थी लोग जो वेस्ट पाकिस्तान से विभाजन होने के बाद उठकर आए, वो हमारे गांव के आसपास थे, वो सब कुछ लुटा कर आए, सब कुछ लूट गया था, उन्होंने अपनी जीवन बहुत संघर्ष से दोबारा से पुनर्जन्म हुआ उनके तरह से। और वो अच्छा, मैं छोटा सा बच्चा 5-7 साल का बच्चा, ग्रेजुअली जैसे उम्र बढ़ती गई, 1960 में मैं स्कूल चला गया, तो मैं देखता था कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं और इनके पास कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, और ये ना रहने की जगह है, तो उस चीज से मैं ग्रेजुअली मेरे माइंड में इम्प्रेशन हो गया कि ऐसा क्या हुआ होगा कि ये लोग अपना घर बार जहां 1000 साल से रह रहे थे, 700 साल से रह रहे, उस जगह को छोड़कर हमारे एरिया में कैसे आ गई। इसलिए मैंने बचपन की जो एक बच्चे की सोच है, ग्रेजुअली वो चीज, जैसे जैसे मैं कुशेत्र में रहता हूँ, कुशेत्र में एक शरणार्थियों का एक तरह से देश का सबसे बड़ा जो पार्टीशन का रेफ्यूजी कैंप बना था 1997 में, वो कुशेत्र की 1947 में आबादी लगभग 5000 लोगों की, परंतु यहाँ 3 लाख लोगों का यहाँ शरणार्थी कैंप बना। तो यू कैन इमेजिन जो आसपास के जितने गांव हैं वहां क्या हुआ होगा, क्या सोच हुई हो। तो आई यूज़ टू हियर स्टोरीज फ्रॉम एल्डर्स, ग्रेजुअली मेरे पिताजी के मित्र जो थे साथ में आए जाने वाले, उनसे सुनने लगा। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जो चीज में प्रेरणा जहां से मिली मुझे पार्टीशन का हिस्टोरियन बनने, जिस परिवार में मेरा विवाह हुआ वो परिवार भी पार्टीशन का वो भोगी था, और नुकसान उसने देखा, मेरी सासू माँ जो थी वो पाती थी 14 साल की 40 में, तो वो बताती थी क्या मारकाट हुई। तो ये छोटी कई चीजें मिलकर पार्टीशन का जो हिस्टोरियन के रूप में मैं थोड़ा सा आप

0: आने के बाद थोड़ा सा इसे बताता हूं कि पार्टीशन पर मेरा ध्यान क्यों हुआ, क्यों मैंने काम किया। पार्टीशन एक मिसप्लेस्ड नैरेटिव, इस चीज को थोड़ा सा मैं आता हूं बाद में आपके। सी श्रोताओं के लिए भारत के विभाजन की जो कहानी, जिसमें मैंने मेरा अपना इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ पार्टीशन, मैंने आपको बताया बैकग्राउंड क्या है कि ग्राउंड एक तरह से मैंने जैसे बताया संवेदनशील हूं, छोटे छोटे सेंसिटिविटी भरी हुई थी, देखता था हर रोज। तो पार्टीशन पर जैसे रिसर्च करना शुरू किया कि पार्टीशन सामान्य व्यक्ति सामान्य श्रोता नहीं जानता कि पार्टीशन विभाजन आज की पीढ़ी को बिल्कुल नहीं जानता, गुजर गई है लगभग सारी पीढ़ी, तो लगभग डेढ़ दो पौने दो करोड़।
1: और जानती भी है तो मैं समझता हूँ फिल्मों के जरिए जानती,
0: फिल्मों के जरिए,
1: किताबों के जरिए तो शायद ही।
0: मैं आपको थोड़ा सा एक बहुत सरल भाषा में, एक स्पेशलाइज हिस्टोरियन हूँ, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए डेढ़ दो करोड़ लोग जो है अपलूट होते हैं दो देशों से, वेस्ट से बंगाल से, और लगभग 7.5 लाख लोगों की हत्या होती है एंड ऑल विद इन 4-5 महीने के अंदर, मई से लेकर मई जून 47 से लेकर और लगभग सितंबर अक्टूबर तक की जो समय है, लगभग 7.5 लाख लोगों की हत्या होती है मूल रूप से आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया और बंगाल में कुछ मित्रगण से। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का विभाजन एक अननेचुरल था, हिस्टोरिकल प्रोसेस था। तो मैंने आपसे एवोल्यूशनरी प्रोसेस का जिक्र क्यों किया आपने इस इंटरेक्शन का, मैं आप बताना चाहता था कि हम लोग एक डिवाइडेबल देश नहीं था, ये विभाजन के लिए देश नहीं बना। और जब इसके विभाजन की बात की गई वो एक हिस्टोरी हिस्ट्री के अननेचुरल प्रोसेस, तो प्रोसेस प्रकृति के विरुद्ध, आप किसी चीज को प्रकृति के विरुद्ध ले जाएंगे तो उसका प्रोसेस, उसका रिजल्ट कभी अच्छा हो ही नहीं। तो इंडिया पार्टीशन वॉज अननेचुरल प्रोसेस। तो मेरे दूसरा एक पोलिटिकल एंगल है ये, इसका कोई कंसेंसस नहीं था, किसी आदमी ने इसको अप्रूवल नहीं दी थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये गया नहीं था, मुट्ठी भर लोगों का ये निर्णय है कि देश की आजादी से, देश के विभाजन से विभाजन हो जाए और सांप्रदायिक समस्या समाप्त, उल्टा हो गया, विभाजन भी हो गया और सांप्रदायिक समस्या भी बढ़ गई। सामान्य श्रोता को शायद इसमें रुचि नहीं होगी, पर ये जानना जरूरी है कि देश की विभाजन करने के लिए ये आधार था कि सांप्रदायिकता खत्म हो गई, नहीं सांप्रदायिकता तो प्रश्न ही नहीं था। मारकाट को देखिए, दंगे देश में कई 100 साल से हो रहे, पर कभी शांतनु जी ऐसा मजबूरी नहीं हुई थी कि मैं ये कहूं कि आप मेरे गांव में नहीं रह सकते। होता था फिर दोस्त हो जाते, साथ महीने फिर झगड़ा फिर हो जाते, कि समाज उतार चढ़ाव होते थे, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी कि हम आपको यहां नहीं। ये 1947 की अलग बात, जहां है अलग समुदाय के लोग रहे तो वहां खटपट भी होगी, पर वो खटपट सामान्य रूप से, आप आश्चर्य होगा आपको जानकर कि पंजाब अनडिवाइडेड पंजाब जो मूल केंद्र रहा विभाजन का, जहां 7.5 लाख लोगों को जिनका मैंने वर्णन किया, इसमें से लगभग 6 लाख लोग तो पंजाब में ही मरते हैं, 29 जिलों में से एक गांव भी ऐसा नहीं था जिसके अंदर हिंदू मुसलमान और सिख इकट्ठा नहीं रहते, एक गांव भी ऐसा नहीं था जो ये कहे ये मुसलमानों का गांव है, ये हिंदुओं का गांव है, ये सिखों का गांव, ये समाज का इंटरेक्शन रिलेटेड गांव। ओके, सो जब हमने एक अननेचुरल, आप कहेंगे तो क्या सी ये कॉलोनियल, मैं अगेन एक बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थियोरेटिकल प्रोसेस होता है ये, पर मैं बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ आपको। देश के विभाजन के पीछे अनेक कारण, 1945 में आप जाइए, 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 1945 में दूसरे, जैसे आपने देखा ना कि युद्ध समाप्त होता था, इंग्लैंड जहां का आधार है, ये कॉलोनियल पावर्स थे, लीबिया, सीरिया, पैलेस्टाइन, अब टेक द नेम सयाम, सारी दुनिया तो कॉलोनाइज थी, 4 लोग एक टेबल पर बैठते थे, अच्छा ये देश को विभाजन कर दो, ये देश को वहां जोड़ दो, इस देश को तुम ले लो, इस देश का ये हिस्सा हम ले लेंगे, इस देश का वो हिस्सा ले, दिस इज हाउ पार्टीशन वाज डन। सारी दुनिया को 1945 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इंग्लैंड का क्या हाल, 300 मिलियन पाउंड का तो कर्ज है, दुकानें खाली पड़ी है, लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और हम उनको कह रहे हैं कि आइए आप हमारा निर्णय करिए, और वो वहां बैठकर ये डिसाइड कर देते हैं कि भारत जैसा विशाल देश जो हम उनसे कई गुना बड़े हैं, समझे ना, कई गुना बड़े हैं, आप बैठ के हमारी लाइन बनाइए, और हम उनको कहिए हाथ जोड़कर, उस जज को हम कह रहे हैं, जज को तो पता ही नहीं है, खाली वो पंडा हुआ बैठे, उस जज को बुलाकर हम अपने देश का विभाजन करा रहे, एक रूप है इसका, इसकी मजबूरी।
1: मुझे ये समझना है कि भारत ऐसी परिस्थिति में कैसे पहुंच गया कि अपने से कम सक्षम व्यक्ति को अपने लिए डिसीजन मेकिंग पावर दे दिया, क्या ऐसा हो गया।
0: देखिए आपने बहुत सुंदर शब्दों में ये कहा है, मेरी सारी बात का निचोड़ आप बस, कैसे हमने, इसी ये शांतनु जी बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरीज, ये

0: किसी का चल जाता है, किसी का नहीं चला। तो फॉल्स नैरेटिव की क्रिएशन हो रही है, पार्टीशन वॉज मेड इन टू द मेन।
1: इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यक्तिगत खामियां इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर व्यक्तिगत लोभ है या व्यक्तिगत अहंकार है या व्यक्तिगत भय है, ये सारी चीजें जो है किए हुए अच्छे काम को भी छुपा सकती हैं और थोड़े से आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, लेकिन ऐसा कहें कि इतना उम्दा जो काम नहीं हो उसको भी आगे रख सकती है, जस्ट बिकॉज इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ काम
0: करते हैं। इसी शांति की, क्योंकि ये ब्रह्म कुमारियों का प्लेटफॉर्म है, ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन का, आई वुड नॉट लाइक टू टेक साइड और प्रोटिसाइज। आपका तो आप तो निष्पक्ष लोग हैं, सारा समाज आपकी इज्जत करता है, फिर भी कुछ बातें बताना जरूरी है। पार्टीशन हो या कश्मीर का इश्यू, जिस पर मैं, वो मेरा सेकेंड फील्ड है जिसका हम लोग थोड़ी देर बात चर्चा करेंगे। इसी कोल्ड वॉर 1945 में शीत युद्ध आता है, सामान्य श्रोताओं को समझने के लिए श्रोताओं, ये 1945 में जो युद्ध समाप्त हुआ उस विश्व दो भागों में विभाजित हो, एक कम्युनिस्ट वर्ल्ड और एक नॉन कम्युनिस्ट। तो इन दोनों रेसों का आज के युग में शायद आपको समझ नहीं आ पाएगी कि ऐसा भी होता था क्या, चार लोग बैठकर भविष्य देशों का डिसाइड करते थे, पर ये हुआ। यूरोप, जितना यूरोप का आज मानचित्र देखे आप, ये कहाँ का मानचित्र है, ये तो 100 साल पुराना मानचित्र भी नहीं। देशों को काट देते थे, चार लोग बैठते थे। 1918 में क्या हुआ, 1918 के बाद ये कोल्ड वॉर की इम्पेरेटिव्स। कोल्ड वॉर में क्योंकि कॉलोनाइज वर्ल्ड का, सारा अफ्रीका का महाद्वीप देखिए आप, भारतीय साउथ एशिया का महाद्वीप देखिए आप, तो मुट्ठी भर चार पांच लोगों ने विश्व का, सारे विश्व का भविष्य तय किया। तो जो समस्या आज तक है, पैलेस्टाइन क्या समस्या है, इसराइल की क्या समस्या है, लीबिया क्या समस्या है, भारत कश्मीर क्या समस्या है, कहाँ पैदा हुई है, सब 1945 के आसपास ही तो पैदा हुई है। तो ये कोल्ड वॉर के इम्पेरेटिव्स, कोल्ड वॉर का रिजल्ट, शीत युद्ध जो था उसमें दुनिया आपस में भिड़ने को तैयार। वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता था कि हम को घेरे, रूस चाहता था हम वेस्टर्न वर्ल्ड को घेरे। उस एंगल से भारत एक बहुत, भारत को मानचित्र, अखंड भारत के मानचित्र को देखना, श्रोताओं को ये जानना बड़ा जरूरी है। अगर आप कभी आप निष्पक्ष रूप से देखिए, आज जैसे हम लोग एक इकोनॉमिक पावर बन रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मिलिट्री पावर भी बन जाएंगे आप, हमारे जीवन में शायद मेरे में नहीं होगा, बट आप तो जवान है, आप देखेंगे, आप वो युग भी देखेंगे जो भारत जो है विश्व के सुपर पावर्स में होगी। हम उस रास्ते पर हैं आज, फाइनेंशियल पावर तो हम बन ही गए हैं, अगले 3-4 साल में 5-7 साल में हम थर्ड इकोनॉमिक पावर हो जाएंगे, फिफ्थ तो आज हो ही गए हैं। आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि कॉलोनाइज, अंग्रेजों के आने से पूर्व पहले कंपनी हमारी जो वर्ल्ड की जीडीपी जो थी 24% भारत बेस्ड, आज वो जीडीपी अंग्रेजों के जाने के बाद वो 1.5% रह गई। यही आप कल्पना करिए, वो देश भारत जो 17th century में 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी इज बेस्ड इन इंडिया। एक इतना शक्तिशाली देश, हम जो सोने की चिड़िया की बात बड़ी सरल सी भाषा में कहते ना, चलिए सोने की चिड़िया नहीं थी, पर चिड़िया अच्छी चिड़िया तो थी। 24% वर्ल्ड की जीडीपी का आप अंदाजा लगाइए, आप कल्पना कीजिए हमारे यहाँ 17th century में क्या हो, और अमेरिका में क्या हो रहा है। देखिए ना, 16th century में 200 years वॉर, युद्ध हो रहे हैं। आपको भारत के इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती, हम लोगों ने कभी धर्म के लिए कभी युद्ध नहीं किया, इसके लिए विदेशियों ने किया। आपको किसी हिंदू राजा ने जाकर ये नहीं कहा तुम हिंदू बनो वरना हम युद्ध करेंगे। ये अलग अलग इसी कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन का, पार्टीशन का तो मेरा रूप मूल रूप से ही है। हम लोग नैरेटिव ला रहे हैं, मेरी बहुत सुंदर एक किताब आई है, हम एग्जीबिशन कर रहे हैं, हम आउटरीच कर रहे हैं और बहुत वेल रिसीव्ड है ये चीज।
1: आपकी जो किताब है इंडिया थ्रू द पार्टीशन की जो स्टोरी है,
0: वो रिपोर्टिंग द पार्टीशन, वो एक बड़ी किताब, बहुत बड़ी किताब है। अभी मैंने रिसेंटली एक और किताब करी है, स्टोरी ऑफ इंडिया पार्टीशन थ्रू फोटो,
1: या थ्रू फोटोग्राफ,
0: वो एक सिंपल सी किताब है, 250 पेज की किताब है, वो पब्लिकेशन डिवीजन ने प्रकाशन किया उसका। उसका कारण यही है कि इतिहास की जो कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए मेरा अनुभव ये बताता है कि फोटोग्राफ लिखो दिखाओ, फोटोग्राफ के नीचे 4 लाइन लेजेंड बना दीजिए, वो ज्यादा समझ आ जाए। आजकल बहुत बिकी है किताब, तो हम नैरेटिव को, सही नैरेटिव को लाने की कोशिश करते हैं।
1: यहाँ एक चीज मुझे ये जानना था, जैसे शुरुआत में आपने कहा कि इतिहास एकमात्र ऐसा अध्ययन का या ज्ञान का एक ऐसा एक विधा है जहाँ पर वो मौका देता है हर एक व्यक्ति को उसी एक घटना को अपने अपने दृष्टिकोण से देखकर उसके बारे में बात रखने की। क्या ये लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा?
0: ये शांतनु जी, इसमें एक्चुअली कोई हिस्टोरियन जो ये कहे कि मैं प्योरली ऑब्जेक्टिव हूँ और मैं पूर्ण रूप से सच बोलता हूँ, वो सच रूप से झूठ बोल रहा
1: पूर्ण रूप से सच बोलने वाला
0: सच रूप से झूठ बोल रहा है।

0: सिचुएट हो रहा है, वेरी नाइस।
1: बिकॉज यू सी, मैंने आपसे बताया कि एक ह्यूमन ब्रेन, यू नो ऑब्जेक्टिविटी का हिस्ट्री में हम कहते हैं आई एम अ वेरी ऑब्जेक्टिव हिस्टोरियन, आई वुड चैलेंज एनीवन टू शो मी ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री, आई डू नॉट नो एडमिट। सी ये बायसेस है, अब बायसेस, अब आपने फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, अनेक हम भारत का सभ्यता को अगर आप देखें, यहां अनेक लोग आए, विदेशी आक्रमण हुए, ऐसी ऐसी कहानियां बता दी गई कि भारत में इस्लाम का स्प्रेड जो है वो पीसफुली हुआ, उसमें बल का प्रयोग नहीं किया गया। अब अगेन पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैं यहां नहीं देना चाहता, बट जो बच्चे उस किताब को पढ़ के जिनको वास्तविकता से दूर हो रहे, तो सच्चाई को सामने रखना, देखिए बायसेस हो बट इतना बायसेस ना हो कि कंटेंट ही डिस्टॉर्ट हो जाए। अब मैंने आपको उदाहरण दिया कि विभाजन जिसमें 7.5 लाख लोग मारे जाते हैं, 1.2 करोड़ लोग शिफ्ट होते हैं, माइग्रेट होते हैं, हर समाज का व्यक्ति से प्रभाव, उस घटना को आपने 6 लाइन में लिख दिया है, तो ये डिस्टॉर्शन हुई। तो पीढ़ी से पीढ़ी, पूरी पीढ़ी, अब स्पिरिचुअलिज्म का ले लीजिए आप, स्वतंत्रता संग्राम मूवमेंट जिसका नेचुरली आप जानते हैं उसके बारे में, भारत में स्वतंत्रता संग्राम की कहानी जो है वो मूल रूप से पोलिटिकल स्टोरी बना दी गई, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर माइंड सेट को सूट करती थी, जी गांधी को, नेहरू को सूट करती थी 20 के बाद। अब परंतु आप देखिए बंकिम चंद्र चैटर्जी 1870s में क्या कह रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक क्या कह रहे हैं, विनायक सावरकर क्या कह रहे हैं, श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं, लाला लाजपत राय क्या कह रहे हैं, यानी ये लोग भारत को स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ रहे हैं। नेशन इज मदर, ये कॉन्सेप्ट जो अंग्रेजों को, देखिए मैं आपको बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं और मैं आजकल इस बात पर चर्चा कर रहा हूं, लिख रहा हूं, ये विश्वास है कि अंग्रेज जो यहां से छोड़कर गए, तो देखिए पीसफुल एजुकेशन, हम तो कहते हैं ना कि नॉन वायलेंट मूवमेंट्स हुआ, ये हुआ सब, गांधी मूवमेंट्स हुई, सच्चाई ये है कि अंग्रेजों का जो आत्मविश्वास था वो टूट, क्योंकि जो आप किसी रेवोल्यूशनरी को उठा लेते थे, रेवोल्यूशनरी कहां स्वेयर कर रहे हैं, रेवोल्यूशनरी देश को स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट कर रहे हैं, यू नो द नेशन इज द मदर, ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हो गया, तो अंग्रेजों को लगा भी ये अब हमारे रहने की जगह नहीं है, तो इन्होंने धर्म से जोड़ दिया, धर्म नहीं स्पिरिचुअलिज्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, आपकी प्राचीन जो लेगेसी है उससे जोड़
0: दिया, आध्यात्मिक बना दिया,
1: आध्यात्मिक बना दिया, आध्यात्मिक बनाने से आम आदमी जुड़ गया उसके साथ, नाना करते करते गांधी जी भी अगर देखा कि वो भी स्पिरिचुअलिज्म से अपनी पावर लाते थे। 47 के बाद जो इतिहासकारों ने आए, एक सोच हुई क्योंकि जवाहरलाल जी को ही सूट नहीं करता था ये नैरेटिव, जो स्पिरिचुअल नैरेटिव, वो तो टोटली नॉन स्पिरिचुअल व्यक्ति पॉलिटिकल नैरेटिव बना दी, तो ये फोर्स नैरेटिव को हम लोग करेक्ट करने के प्रयास में है, अनेक एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, सी वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, हम हिस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम केवल
0: जो सत्य है उस पर प्रकाश डालने का प्रयास,
1: उसको प्रकाश डालने का।
0: जी जी, मुझे तो लगता है आपके साथ एक नहीं अनेक एपिसोड्स करने पड़ेंगे और करने चाहिए।
1: मैं देख रहा था शांतनु, यू नो आई वाज जस्ट सीइंग, एक घंटा हो गया हमें बात करते लगते
0: जी, समय का पता नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता, लेकिन वही कि क्योंकि एक एक अनुभव व्यक्ति के साथ जब व्यक्ति बैठ करके बातचीत करता है तो उसका न केवल अनुभव बढ़ता है बट उससे बहुत सारी प्रेरणाएं भी मिलती है कि उसके जीवन को वो कैसे चलाए या कैसे आगे बढ़ाए। मेरे श्रोताओं को तो मैं समझता हूँ, हमारे सभी श्रोताओं को ये चीज का अच्छे से अंदाजा लग गया होगा कि एक एपिसोड प्रोफेसर रघुवेंद्र जी के साथ काफी नहीं है, कभी और भी एपिसोड करना होगा। जी बिल्कुल, और इसलिए मैं समझता हूँ किसी दूसरे एपिसोड के लिए हम बाकी के मेरे प्रश्नों को रखेंगे, स्पेशली प्रश्न उनसे जुड़े हुए जिसमें कि आपने श्री छोटू राम जी के साथ काम किया है, इन बातों पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे, और मैं श्रोताओं साथियों को बिल्कुल उम्मीद देना चाहूंगा कि हम दोबारा रघुवेंद्र जी के साथ आएंगे जरूर। लेकिन आज के इस एपिसोड का हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन रैपिड राउंड खेलते बगैर हम नहीं जा सकते, तो मैं एक रैपिड राउंड खेलूंगा जिसमें कुछ सवाल मैं आज पूछूंगा और कुछ सवाल अगले एपिसोड में पूछेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि देश क्या है?
1: देश एक सिविलाइजेशन है, एक सभ्यता है,
0: एक सभ्यता है। तो इसका मतलब अगर व्यक्ति कहीं पर नहीं है लेकिन उस सभ्यता को अपने साथ कैरी कर रहा है तो वो देश है,
1: भारतीय कहीं भी होगा वो सभ्यता से जुड़ा हुआ है तो वो भारतीय है।
0: बहुत सुंदर। भारतीय कौन है?
1: भारतीय देखिए, जो आदमी एक स्पिरिचुअल कल्चरल रूट से जुड़ा हुआ है, जो इस देश की विशेषता से जुड़ा हुआ है, वो कोई भी भाषा बोले मैं उसको भारतीय बोलूं।
0: बहुत सुंदर डेफिनेशन दिया रघुवेंद्र जी ने श्रोता साथियों की, कोई भी व्यक्ति जो अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ा हुआ है वो भारतीय है। और बाकी के रैपिड राउंड के सवाल अगले एपिसोड के लिए रखता हूँ। एक आखिरी सवाल,

0: भारत क्या है?
1: भारत एक प्राचीन सभ्यता है जो दुनिया को नए रास्ते ले जा सकता है और एक इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन, एक सभ्यता ऐसी है जो जड़ों से जुड़ी हुई है और समय की मजबूरियों में पैदा नहीं हुई है, ये इवॉल्व हुई है, सीखते सीखते यहाँ तक पहुंची।
0: तो मैं कहूंगा भारत वरदान है क्योंकि वो मजबूरी नहीं है।
1: मजबूरी नहीं, एब्सोल्यूट,
0: बिल्कुल। तो प्रोफेसर रघुवेंद्र जी के साथ बात करते हुए अपने बारे में जानने का बहुत कुछ हमें मौका मिलेगा आगे भी, और आज भी मिला है। इतिहास की कई चीजों को हमने समझा थोड़ा सा, और इसे और गंभीरता से, गुहिता से समझने की आवश्यकता है दोस्तों, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा। रघुवेंद्र जी के साथ एक और एपिसोड में बने रहने के लिए आप हमारे कार्यक्रम यशस्वी भारत को सुनते रहिएगा, और रेडियो मधुबन के स्टूडियो में इसी प्रकार के हमारे भारत के असंख्य रत्नों को हम लाते रहेंगे आपके सामने में। तब तक के लिए आप हम सबको इजाजत दीजिएगा। रघुवेंद्र जी, आज के एपिसोड के लिए आप हमारे साथ बने और आपने हमें इतना सुंदर समय दिया। आपने हमें केवल अपना पास्ट ही नहीं, आपके पास्ट का जो इंटेंसिटी है, कितने इंटेंसिटी से आप काम करते हैं, कितने लगाव और कितने शिद्दत से आप उस चीज के साथ जुड़े हुए हैं, उसका आपने हमें एक झलक दिखाया। इसके लिए आपका हम तहे से शुक्रगुजार हैं।
1: शंकर जी, मैं आभारी हूँ आपने मुझे अवसर दिया, और जब कहेंगे मैं जरूर आपसे दोबारा
0: जी।
1: धन्यवाद,
0: थैंक यू।
2: दोस्तों, अब तक आप सुन रहे थे रघुवेंद्र जी के साथ हमारी बातचीत, जो कि भारत के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित एक जाने माने विख्यात इतिहासकार हैं, जो समकालिक इतिहास के ऊपर अपनी नजर रखते हैं और उससे पाए हुए ज्ञान के जरिए भारत को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इनसे हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन आप बने रहिएगा यशस्वी भारत के साथ। 107.8 रेडियो मधुबन के स्टूडियो से मैं आज शांतनु लेता हूँ आज के लिए आपसे अलविदा। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर हैं। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: बोल दुनिया स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो, खुश रहो खुशियां बांटो।
1: रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो। नमस्कार रेडियो श्रोतागण, आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो पुनेरी आवाज पर प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा। ज्ञान चिंतन,
2: नमस्ते। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं नीतू जैन। आज मैं आपको रंगों का जीवन में क्या महत्व है, इस विषय को लेकर अपना चिंतन आपके साथ शेयर कर रही। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानव जीवन में रंगों का बहुत महत्व है, क्योंकि रंगों का यह इंद्रधनुष ही तो जिंदगी को रंगीन बनाता है। यह भी सच है कि प्रत्येक रंग मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव डालता है। रंग हमारी इंद्रियों को आकर्षित करने के साथ साथ हमारे विचारों और भावनाओं को भी तरह तरह से प्रभावित करते हैं। जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए हमें अपने जीवन में कई तरह के रंगों की जरूरत होती है, और प्रकृति में हमें ये रंग अपने चारों ओर किसी न किसी रूप में दिखाई दे जाते हैं। रंग हमारी इंद्रियों को आकर्षित करने के साथ साथ हमारे विचारों और भावनाओं को भी तरह तरह से प्रभावित करते हैं। विज्ञान बताता है कि नीला रंग शांति का प्रतीक होता है, जबकि पीला रंग खुशी और ऊर्जा को प्रकट करता है। हरा रंग उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक होता है, वहीं लाल रंग प्रोत्साहन और गंभीरता का प्रतीक है। हर रंग का अपना एक विशेष मतलब होता है। यहाँ कुछ आम रंगों के मतलब मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। लाल रंग, लाल रंग प्रेम, उत्साह, गंभीरता और प्रोत्साहन का प्रतीक होता है। इसे अक्सर प्यार और प्रेम को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाल रंग को ऊर्जा, गर्मी, उग्रता, जोश, जुनून, उत्साह, महत्वाकांक्षा और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। लोगों में उत्साह व साहस पैदा करने वाला लाल रंग

0: दास और शुद्धता का प्रतीक है, जिसे प्यार और काम का प्रतीक भी माना जाता है। पीला रंग सुरमुई, ऊर्जावान और खुशी का प्रतीक होता है। यह रंग आपकी मनोदशा को सकारात्मक रखने में मदद करता है और खुशहाली के भाव को बढ़ाता है। पीले रंग से पवित्रता का एहसास होता है और इसे देवी देवताओं का प्रिय रंग माना जाता है। खुशी, तत्परता, आशा और ऊर्जा को प्रदर्शित करते पीले रंग से शरीर में स्फूर्ति आती है और इसे रोग दूर करने वाला तथा बेचैनी को खत्म करके मन को शांत करने वाला भी माना गया है। हरा रंग उम्मीद, प्रकृति, ताजगी और नई शुरुआत का प्रतीक होता है। यह रंग ताजगी और प्राकृतिकता की भावना को दर्शाता है और उम्मीद और नई शुरुआत की भावना को प्रोत्साहित करता है। यह रंग आशावाद, नई शुरुआत, स्वास्थ्य तथा ताजगी का एहसास कराता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में नए जीवन के संचार की प्रेरणा देता है। नीला रंग शांति, विश्राम और आत्मविश्वास का प्रतीक होता है। इसे अक्सर आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीला रंग जीवन में गति और जीवन देने वाला शक्ति का प्रतीक है। कोमलता और स्नेह के साथ इसे वीरता और पौरुष का प्रतीक भी माना गया है। जीवन में उत्साह, उल्लास और पानी के समान शुद्धता के प्रतीक नीले रंग के प्रयोग से मानसिक शांति मिलती है। रक्तचाप नियंत्रित होता है और यह आपसी संबंधों में प्रेम, विश्वास और कोमलता को भी दर्शाता है। सफेद रंग शुद्धता, सादगी और शांति का प्रतीक होता है। इसे शुद्धता और पवित्रता के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आध्यात्मिक शांति और जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए भी इस रंग का प्रयोग किया जाता है। सफेद रंग में सभी रंगों के गुण मौजूद हैं और इसे सभी रंगों का जनक माना जाता है। भावनाओं और मूड पर भी रंगों का प्रभाव पड़ता है। जैसे रंगों का चुनाव हमारी भावनाओं और मूड पर सीधे असर डाल सकता है। वाइब्रेंट और ब्राइट कलर्स जैसे लाल, पीला, नारंगी हमें खुश और एनर्जेटिक फील करवा सकता है, जबकि पेस्टल और सॉफ्ट कलर्स जैसे हल्का गुलाबी, बेबी पिंक और आसमानी नीला हमें शांत और रिलैक्स फील करवा सकता है। धार्मिक महत्व भी इन रंगों के द्वारा पता किया जा सकता है। कुछ रंग हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को भी दर्शाते हैं। मिसाल के तौर पर शादियों में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये रंग खुशी, सुहाग और शुभ अवसर का प्रतीक होता है। वैसे ही हर धर्म में अलग अलग रंगों का महत्व होता है। श्रोताओं, आज के रंगों के विषय में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए चिंतन के साथ। धन्यवाद।
1: आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज पर। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड। उस दिन के बाद बंद हो

0: तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM, आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. सिस्टर शिवानी हमारे साथ है. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन.
2: थैंक यू.
1: हम बात कर रहे थे वो पाथ, रास्ते की, जीवन की. जीवन में परिस्थितियां आती हैं लेकिन हम स्टेबल रहें, ये पॉसिबल नहीं हो रहा है मुझसे. आई डोंट थिंक, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है इसका, प्रोपोर्शन है, इम्पैक्ट डायरेक्ट होता है मुझ पर. कोई कुछ बोल दे या बात नहीं सुने या काम नहीं हो तो फिर परिस्थिति कैसे भी रहने दो, मैं तो चुप रहूंगा, वाह वाह वाह वाह स्माइल करूंगा, ऐसा हो नहीं रहा है.
2: डायरेक्ट इम्पैक्ट परिस्थिति का हम पर, या परिस्थिति के सामने हमने कौन सा रिस्पॉन्स चूज किया, हमारा इम्पैक्ट परिस्थिति पर. हु इन्फ्लुएंसेज हु,
1: इट डिपेंड्स ऑन हु द पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ मी. अगर कोई मंत्री है तो उसका, उसने कुछ बोल दिया तो मैं अंदर घुट पी के मैं बोलूंगा ठीक है, एक दिन इसको दिखाऊंगा. ठीक है, बीवी है तो तभी मैं डांट दूंगा, बच्चा है तो और जोर से कर दूंगा, नौकर है तो उसको और.
2: उधर ही प्रूफ, इधर ही प्रूफ हो गया ना सब कुछ.
1: क्या?
2: कि इट डजंट डिपेंड ऑन द आउटसाइड फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन अलग अलग लोगों के सामने आपने अलग अलग चूज किया रिस्पॉन्स.
1: हर जगह एक एक मजबूरी है,
2: हर जगह एक एक चॉइस है. अगर स्टिम्यूलस डिपेंडेंट होता, आपने कहा परिस्थिति हम पर इम्पैक्ट करती है, व्यक्ति हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है और हम रिएक्ट करते हैं. अगर व्यक्ति हमारे ऊपर इम्पैक्ट करे और हम रिएक्ट करें तो आपके पास ये सब चॉइसेस ही ना होती. अभी आपने ही चार चॉइसेस सुनाई है.
1: मैंने चारों मजबूरियां सुनाई
2: है. चार चॉइसेस है,
1: चार एक्सपेक्टेशंस भी हैं,
2: चार डिफरेंट चॉइसेस है, चार डिफरेंट स्टिम्यूलस के सामने.
1: हाउ डू यू कॉल इट अ चॉइस?
2: हाउ यू आर चूजिंग. आपने कहा मंत्री ने कहा तो मैंने ऐसा वाला रिएक्शन.

0: कोलेस्ट्रॉल, तो राइट मेरे लिए क्या होगा जनरल जीवन के जीने के तरीके में?
1: राइट जो होता है अंदर पता चलता है, फील कर सकते हैं कि आई फेल्ट बैड बाय सेइंग रॉन्ग थिंग्स टू समबडी।
0: तो मेरा राइट का डेफिनेशन अगर मुझे बनाना है, राइट का पैरामीटर अगर सेट करना है, तो मुझे उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखने पड़ेंगे कि ये ऐसा परफॉर्मेंस हो विच विल मेक मी फील, हाउ विल आई डिसाइड दैट, विच विल मेक मी फील हैप्पी, ठीक है,
1: एंड विल मेक मी फील नाइस अबाउट,
0: मेक मी फील नाइस, तो मतलब आई शुड बी एट ईज विद इट।
1: यस,
0: तो अंदर मन की स्थिति वो करने के बाद कैसी होनी चाहिए?
1: खुश होता है कि अच्छा किया,
0: कम्फर्टेबल। शरीर की सेहत कैसी होनी चाहिए?
1: हैप्पी,
0: हेल्दी होनी चाहिए। अगर यहाँ हैप्पी है तो ये हेल्दी होना चाहिए, रिश्ते अच्छे होने चाहिए, तो मतलब मेरी हर
1: सब लोगों को भी अच्छा लगता है,
0: अच्छा फील होना चाहिए। तो मेरी हर परफॉर्मेंस का राइट और रॉन्ग क्राइटेरिया अगर मुझे डिसाइड करना है, तो राइट परफॉर्मेंस वो जहां मन अंदर लाइट, हल्का, एट ईज फील करे। कॉन्सिक्वेंस शरीर हेल्दी है, तीसरा कॉन्सिक्वेंस रिश्ते अच्छे हैं, चौथा मेरे आसपास के लोगों को मेरे से अच्छा लगता है।
1: मैंने एक जगह खूबसूरत लाइन पढ़ी थी कि ऐसा किरदार निभाइए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजते रहे, यानी कि आपके मर जाने के बाद भी लोग ताली बजाते रहे।
0: तो ताली किस बात की बजाएंगे?
1: दैट यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब।
0: इन व्हाट सेंस? अगेन वी हैव टू डिसाइड, वंडरफुल जॉब इन व्हाट सेंस? आपने कहा कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें, मतलब हम शरीर छोड़ दें,
1: हाँ,
0: और आगे चले जाएं, लेकिन पीछे लोग
1: तारीफ करते रहे।
0: तारीफ करें अबाउट व्हाट? तारीफ बेस्ड ऑन
1: अबाउट द वे यू लिव्ड योर लाइफ
0: विल बी बेस्ड ऑन
1: योर द वे यू टॉक, द वे यू बिहेव एंड द वे यू मेक अदर पीपल फील,
0: यस,
1: व्हेन दे मीट यू,
0: यस, नॉट बेस्ड ऑन ओनली व्हाट यू अचीव्ड, व्हाट यू डिड and how much you earned। दोनों महिमा में बहुत फर्क है। आज जब हम इस जीवन की यात्रा में हैं, जब हम यहाँ हैं इस शरीर में, हमें लगता है कि हमें जो रिस्पेक्ट मिलती है या लोग जो हमारी तारीफ कर रहे हैं, तो वो किस बेसिस पे?
1: रिचेस्ट मैन की तो हो नहीं सकती तारीफ।
0: इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितने रिच हैं, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि रिचेस्ट मैन कैन नॉट मेक अदर पीपल फील गुड। बेसिकली यू हैव टू हैव द संस्कार ऑफ ह्यूमिलिटी, रेडिएटिंग लव एंड एक्सेप्टेंस टू पीपल, गिविंग टू पीपल, एंड जो फिर आपने ऑटोमेटिकली कहा कि हाउ डू यू मेक पीपल फील, कि आपके बोल अच्छे हैं, आपके व्यवहार अच्छा है, आपने जीवन में औरों के लिए क्या किया वो अच्छा है,
1: क्या महसूस करता,
0: क्या महसूस किया, अब आपसे मिलकर क्या महसूस करता है दूसरा, इज बेस्ड ऑन आप खुद क्या महसूस कर रहे हैं।
1: डेफिनेटली जब मैं किसी को प्यार करता हूँ, हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ, तो अंदर से मुझे खुद खुशी मिलती है।
0: तो अगर खुद खुशी मिलेगी तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, राइट? तो दैट मीन्स अब मुझे हर सीन में अपनी परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया सेट करना है। दिस इज द क्राइटेरिया नाउ। हम चाहते हैं कि लोग ताली बजाएं कि कितना अच्छा किरदार निभाया अभी भी और पर्दा गिरने के बाद भी। तो अब जीवन के हर सीन में ताली बजाने का क्राइटेरिया क्या हमने निकाला कि इफ पीपल फील नाइस विद अस, उसका बेसिस किस पर है? इफ आई एम फीलिंग नाइस इनसाइड, सिंपल। तो अब हर सीन परफॉर्म करने के टाइम मुझे क्राइटेरिया क्या रखना पड़ेगा कि आई द एक्टर एम प्लेइंग माय रोल वेल, उसका क्राइटेरिया क्या होगा? एम आई फीलिंग नाइस इनसाइड?
1: यू मीन टू से रॉन्ग कर्म करके इंसान को नाइस फील नहीं होता अगर इफ ही थिंक्स इज डन द राइट थिंग?
0: अंदर एनर्जी कैसी क्रिएट होगी?
1: जैसे मैं बहुत
0: अंदर एनर्जी जो क्रिएट होगी, इमोशंस जो क्रिएट होंगे, चीट किया किसी को, किसी को दुख दिया, अंदर एनर्जी कौन सी क्रिएट होगी अगर उस क्षण नहीं भी पता चले, एंड सामने वाले को फील कैसा कराया? बिकॉज हमारा क्राइटेरिया वो भी तो है ना परफॉर्मेंस का।
1: यूजुअली लोग बोलते नहीं पता नहीं मैंने क्या पाप किया, किसको दुख दिया, क्या तकलीफ दिया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो, तो लगता है लोगों को पता चलता है।
0: तो क्राइटेरिया हमारी परफॉर्मेंस का क्या है? आई फील नाइस एंड आई मेक अदर पीपल फील नाइस। अब अगर सिर्फ ये लाइन पकड़ ली

0: और चले सुबह से रात तक।
1: बहुत अच्छी सुंदर लाइन है,
0: सीन आफ्टर सीन
1: मंत्रा बन गया।
0: नहीं नहीं,
1: आई फील नाइस
0: एंड मेक अदर पीपल फील नाइस, सिंपल। एंड नाउ मेक अदर पीपल फील नाइस इज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन व्हाट आई स्पीक एंड आई बिहेव, आई मेक अदर पीपल फील नाइस, नॉट आई स्पीक नाइस, आई मेक अदर पीपल फील नाइस।
1: In your presence, people should be comfortable.
0: Yeah. मतलब मैंने vibration कौन सी radiate की, मैंने बोल कौन से बोले, व्यवहार कौन सा किया, वो नहीं। The line you chose is, I make other people feel nice. एक हो सकता है I speak well, I behave nice.
1: जब stage पे भी sister, जब एक आदमी बहुत ही अच्छी बड़ी बड़ी बात करता है तो अच्छा नहीं लगता है। कोई आदमी सिंपल वर्ड में सिंपल बात करके हंस खेल के दो लाइन शब्द भी देता है ज्ञान के, तो इतना अच्छा लगता है। और कोई आदमी को बड़े बड़े श्लोक बोल के, बड़े बड़े संस्कृत के शब्द, बड़ी बड़ी इंग्लिश की बातें, बड़े बड़ी वर्ड्स यूज़
0: किस बेसिस पर होगा ये?
1: यहाँ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन,
0: मतलब
1: ह्यूमन टच है।
0: मतलब क्या, जो अंदर है वो बाहर है। दूसरे केस में जो है, अंदर कुछ और है, बाहर बहुत अच्छे बोल है, है ना। ये हम अपने सारा दिन के व्यवहार में भी देख सकते हैं। एक से मिले, दूसरे से मिले, तीसरे से मिले, बहुत अच्छा बोला, बहुत मीठा बोला, बहुत प्यार से बोला, डिड आई मेक देम फील नाइस।
1: बट आई हैव ऑल्सो नोटिस दैट द डे आई कम होम, बड़ा खुश आता हूँ तो फिर मैं सबसे खुशी बात करता हूँ, बच्चों से, नौकर से, सबसे मैं उनसे ऑटोमेटिकली
0: मतलब,
1: करता हूँ।
0: अगर एक्टर अच्छा है तो उसको परफॉर्मेंस देने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी?
1: नहीं।
0: एंड अगर एक्टर अच्छा है वो परफॉर्म एकदम नेचुरल करता जाएगा, इररिस्पेक्टिव के बाकी एक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं।
1: इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटसाइड डिस्टर्बेंस, लाइट गिर जाती है, कोई कुछ हो जाता है, कोई लाइट दूसरा आदमी डायलॉग भूल जाता है।
0: तो मतलब इम्पोर्टेंट क्या कि वो एक्टर कैसा है। अब अगर एक्टर थोड़ा सा नया है, अभी उतना स्किल्ड नहीं है, उसने अपने वर्क पर उतना वर्क नहीं किया है, तो वो छोटी छोटी सीन में भी क्या करेगा,
1: वो बोलेगा यार तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, यार तुम सामने से हटो, यार तुम उधर से।
0: मैं कर सकता था लेकिन वो सामने आ गए, सर मैं कर सकता था ये सीन लेकिन उसने अपनी ठीक से नहीं। तो उसका वे ऑफ लिविंग कैसा है कि मेरी परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन सब। जिस दिन अच्छा परफॉर्म करेंगे उस दिन सर मैं भी बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, वो उस एक्टर की वोकैबुलरी है। लेकिन जो एक अच्छा एक्टर किसको कहेंगे, जिसकी परफॉर्मेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सिचुएशंस एंड पीपल।
1: सही बात है। कई बार कुछ ऐसे ऐसे एक्टर्स भी होते हैं वो डोंट लाइक यू, तो जब आप इमोशनल सीन करते हैं ना, और कैमरा उनके पीठ के पीछे होता है या फेस नहीं दिखता है, तो दे डोंट गिव यू अ रिस्पॉन्स प्रॉपरली, ब्लैंक रखते हैं फेस को ताकि यार टूट रहेगा। वहां पर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है
0: क्योंकि अटेंशन सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर है। दिस इज कॉल्ड अ गुड एक्टर, दिस इज कॉल्ड अ नेचुरल एक्टर, जिसका अंदर अटेंशन इतना अच्छा है कि उसकी परफॉर्मेंस नेचुरली फ्लो करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन एंड पीपल अराउंड। सेम ही तो जीवन में करना है।
1: जीवन को हम परफॉर्मेंस फिल्म का नहीं समझते ना,
0: जीवन तो उससे बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है ना। एक फिल्म का सीन आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है? फिल्म का सीन छोड़ो, एक फोटोग्राफ पे क्लिक करते हैं ना तो लोग कितना अटेंशन से फोटो खींचते हैं, भाई नहीं ठीक से, मेरे बाल ठीक है, मेरी ड्रेस ठीक है, मेरी स्माइल ठीक है, मेरा बैठने का तरीका ठीक है।
1: लोग बोलते हैं 100 साल तक लोग कोई ना कोई फोटो देखता रहेगा,
0: यहाँ
1: नहीं सोचते कि मरने के बाद भी तुम्हारे बारे में।
0: मरने के बाद इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ फोटो एक बार खिंच गई
1: तो
0: हमेशा वही दिखेगी। सीन मूवी में एक बार शूट हो गया, उस मूवी का हिस्सा बन गया, आप उसको चेंज
1: तो
0: नहीं कर सकते।
1: जिस आदमी से आप मिलते वो आपकी फोटो तो खींच ही रहा है ना।
0: वो आपकी फोटो खींच रहा है वो तो अलग बात है, आपके यहाँ क्या खींच रहा है?
1: अच्छा, याद हो गया,
0: वो तो आपके खींच ही रहा है लेकिन यहाँ पे क्या सीन रिकॉर्ड हो रहा है इस मूवी पर, और ये मूवी तो लंबी चलने वाली है।
1: यहाँ बहुत बार गिल्ट रिकॉर्ड होता है,
0: यहाँ पे गिल्ट रिकॉर्ड हो गया तो रिकॉर्ड हो गया लंबा। ये अब जो जो रिकॉर्ड हो रहा है एक एक सीन, इसीलिए हर सीन रिकॉर्ड करते समय हमें कितना अटेंशन रखना चाहिए कि एक बार जो सीन रिकॉर्ड हो गया वो मेरा प्रेजेंट भी डिसाइड करेगा, वो मेरा फ्यूचर भी डिसाइड करेगा, वो मेरे

0: है, आप जब एक्टिंग कर रहे हैं आप सीरियस नहीं अटेंशन से एक्टिंग करते हैं, सीरियस होके नहीं करते।
1: यू हैव टू लव दैट परफॉर्मेंस,
0: यू हैव टू लव दैट परफॉर्मेंस एंड यू नो द इम्प्लीकेशन ऑफ योर वर्क। यू नो कि आप क्यों अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। चलो लेट्स टेक इट दैट वे, एक मूवी का सीन करते समय एक एक्टर अपना बेस्ट क्यों देना चाहता है?
1: आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट,
0: आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट। वाई डू आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट? क्योंकि उससे मुझे क्या मिलेगा? उससे मुझे नाम मिलेगा, मान मिलेगा, शान मिलेगा, धन मिलेगा,
1: धन भी मिलेगा और आगे काम और,
0: आगे काम मिलेगा
1: और पॉपुलैरिटी होगी और लोग,
0: आगे काम भी किस लिए चाहिए?
1: और लोग भी देखना चाहेंगे आपको।
0: तो इसका मतलब हम इतना जो अटेंशन रख रहे हैं वो किस लिए? फॉर आर लाइवलीहुड। ये हमारा जीवन जीने का साधन है ना, जो भी हम काम कर रहे हैं। आपके केस में वो मूवी है, एक्टिंग है, किसी और के केस में वो एक प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी के केस में वो एक कोर्ट में एक केस हो सकता है, किसी के केस में एक पेशेंट की सर्जरी हो सकती है। ईच थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक पे डिपेंडेंट है कि हमारा नेक्स्ट आगे कैसे चलेगा करियर। तो हम अपने करियर के लिए, मतलब जो हमें लोगों से रिकग्निशन मिलेगी और धन मिलेगा, वो धन से क्या होगा? हमारा घर, हमारा परिवार चलेगा। उसके लिए हम अपनी हर परफॉर्मेंस पे, इन माय करियर एंड माय वर्कप्लेस, हम कितना अटेंशन रखते हैं। अब जीवन के हर सीन में जो हमारी परफॉर्मेंस होगी उस पर हमारी खुशी डिपेंडेंट होगी, उस पर हमारी शरीर की सेहत डिपेंडेंट होगी, क्योंकि मन खुश तो तन स्वस्थ, उस पर हमारे रिश्ते डिपेंडेंट होंगे। तो इतना अटेंशन सिर्फ धन कमाने और करियर पे, तो खुशी और सेहत और रिश्तों के लिए थोड़ा सा अटेंशन नहीं रखेंगे?
1: मालूम नहीं था
0: वो, कोई बात नहीं, मालूम नहीं था, आज मालूम पड़ेगा, तो अब हम रखेंगे। लेकिन क्राइटेरिया बहुत क्लियर होना चाहिए। आई फील नाइस, मतलब मुझे अंदर अच्छा महसूस हो,
1: एंड मेक अदर फील,
0: मेक अदर्स फील नाइस, मतलब लोगों को भी मुझसे मिलकर, मेरे साथ काम करके, मेरे साथ रिश्ते में अच्छा महसूस हो। इम्पोर्टेंट इज महसूस हो, वो अंडरलाइन करना है। और जैसे आपने बहुत ब्यूटिफुली बताया कि कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, व्यवहार भी अच्छा करते हैं, लेकिन उनके साथ हमें अच्छा महसूस नहीं होता है। कुछ लोग बहुत सिंपल बोलते हैं, इट्स नॉट फ्लावरी लैंग्वेज, इट्स नॉट वेरी बिग टॉक,
1: छोटी लैंग्वेज में भी बोलते हैं, आधी हिंदी आधी इंग्लिश सब मिला के,
0: हाँ।
1: तब भी कॉन्सेंट्रेट करके उनको सुनने का मन करता है, कि और बाद में उनके साथ बैठने का भी मन करता है,
0: बिकॉज दे आर मेकिंग यू फील नाइस।
1: एंड देर आर सर्टन पीपल जो खामोश बैठते तब भी खाली उनके साथ बैठे रहने का मन करता है।
0: दे आर मेकिंग यू फील नाइस, एंड वाई आर दे मेकिंग यू फील नाइस? बिकॉज दे आर फीलिंग नाइस इनसाइड, मतलब उनकी एनर्जी फील्ड जो वो कैरी कर रहे हैं, हम उनकी एनर्जी फील्ड के संपर्क में बैठना चाहते हैं, उनकी बातों के संपर्क में नहीं, उनके व्यवहार के संपर्क में नहीं, उनकी एनर्जी फील्ड के संपर्क में हम बैठना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी फील्ड का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हमें भी अच्छा फील होता है। अगर ये आज हम पक्का कर ले तो जीवन का हर सीन परफॉर्म करना कितना इजी हो जाएगा। फिर तो कोई डाउट ही नहीं होगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब
1: इजी तो नहीं मानूंगा मैं, इजी हो जाएगा बोलना, थोड़ा बोलने में इजी है।
0: नहीं, एक अभी देखो, कोई प्रॉब्लम आई, कोई बात आई, सपोज ये अभी एक टीम है, क्रू है, काम कर रहे हैं, किसी से यहां अभी बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो आपका को एक्टर है अभी सीन में, दिस इज अ सीन, लाइफ है, आपने कहा रोल नहीं है, सीन नहीं है, लेकिन लाइफ का सीन है। आपकी एक्सपेक्टेशन उस व्यक्ति से क्या थी? कि एक पर्टिकुलर तरह से वो परफॉर्म करेंगे, अपना सारा काम सही करेंगे, टाइम पर पहुंचेंगे,
1: तो ना बीइंग प्रोफेशनल,
0: हाँ, बीइंग प्रोफेशनल की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यू। तो आपने वो एक्सपेक्टेशन रखी, अब आपके को एक्टर ने आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार, या इस केस में हम कहेंगे उसको जैसा एक्चुअली परफॉर्म करना चाहिए था नहीं किया, उल्टा बिल्कुल ही उससे
1: उल्टा किया।
0: चलो, सो माय को एक्टर इज नॉट परफॉर्मिंग राइट, सीन भी ठीक नहीं चल रहा है, आई द एक्टर हैव टू परफॉर्म, तो क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे करेंगे, कितना इजी है
1: दूसरे की उसको

0: नहीं देखेंगे तो क्या?
1: आपने कहा था ना मूवी के सीन में करते समय दूसरे को नहीं देख रहे थे।
0: हाँ बिल्कुल नहीं, दूसरे के मिस्टेक्स नहीं देखेंगे, दूसरा अच्छा कर रहा बुरा कर, मैं अपने पे ध्यान रखूंगा,
1: अपने पे ध्यान रखूंगा और कोशिश करूंगा कि सामने वाले को भी
0: हो सकता है हेल्प करूं।
1: एम क्या था कि सीन कैसा हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा परफॉर्म। एंड फोकस किस पर था कि मैं क्या कर सकता हूं बेस्ट जिससे ये सीन अच्छा परफॉर्म हो जाए। जीवन में लेकर आते हैं,
0: पर वहाँ रीटेक है, यहाँ रीटेक भी नहीं है,
1: तो और भी इम्पोर्टेंट हो गया। फिर तो और भी इम्पोर्टेंट हो गया,
0: कैमरा दोबारा कर सकते हैं
1: तो या फिर
0: तो बोल दिया किसी को, कुछ तो बोल दिया, तो आप क्या रीटेक
1: और
0: करेंगे,
1: भी इम्पोर्टेंट हो गया ना,
0: टाइम को रिवर्स कर नहीं सकते,
1: और भी इम्पोर्टेंट हो गया ना। लेकिन अब इसमें डिसाइड कर लेते हैं अभी कि सामने वाले ने, टीम मेंबर ने, चाहे वो हमारे ऑफिस में है चाहे यहाँ सेट पर है, नहीं ठीक से परफॉर्म किया, अपना काम टाइम पे नहीं किया, काम पूरी तरह से गलत कर दिया, विच मीन्स को एक्टर डिड नॉट परफॉर्म राइट। तो हमारे को क्या करना है?
0: हमको अपना काम सही करना है,
1: हमें अपना काम
0: सही रहना है,
1: काम सही करना है, मतलब सिर्फ बाहर सही नहीं करना है, फील नाइस एंड मेक अदर्स फील नाइस, ये मंत्र जीवन का। अब आज से ये मंत्र पकड़ते हैं, फील नाइस एंड मेक अदर्स फील नाइस। अब अगर ये हमारा क्राइटेरिया है टू बी अ गुड एक्टर इन लाइफ, एक्टर मीन्स आई द पर्सन, टू बी अ गुड नेचुरल पर्सन इन लाइफ, तो टू फील नाइस एंड टू मेक अदर्स फील नाइस इस सीन में जहाँ मेरे आसपास के लोगों ने ठीक से काम नहीं किया, तो मेरी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए?
0: सो दैट यू डोंट मेक द अदर पर्सन फील बैड एंड मेक हिम फील गिल्टी कि तूने ये किया, तूने वो किया, हाँ, नहीं बोले।
1: तो मेरी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए अभी?
0: प्यार वाली होनी चाहिए,
1: मतलब फिर गुस्सा
0: आपने कर दिया, कल मत करना,
1: कल नहीं करना, तो गुस्सा करना, डांटना, जोर से चिल्ला देना,
0: तो और जो काम इस वक्त होने वाला वो भी खराब हो जाए,
1: वो भी खराब हो जाना, इसका मतलब मेरी परफॉर्मेंस भी गई, सामने वाले की भी गई और सीन भी गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सीन, सीन चला गया एंड आपने कहा रीटेक नहीं हो सकता जीवन में, एक सीन बीत गया। अब ये सीन में क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस खराब हो गई, इसका इफेक्ट हमारे
0: अगले सीन में
1: आ जाएगा, फिर उसका इफेक्ट हमारे अगले सीन में आ जाएगा, और हम जीवन की यात्रा चलते गए, कहते गए सामने वाला एक्टर ठीक नहीं था, तो आई डिड नॉट परफॉर्म वेल, एंड थोड़े समय के बाद तो आई डिड नॉट इवन से आई डिड नॉट परफॉर्म वेल, आई से दिस वॉज माई राइट परफॉर्मेंस, गुस्सा तो करना ही था,
0: हाँ उस सिचुएशन में जितना हो सकता था आई हैव डन माय बेस्ट,
1: डांटना ही था, डांटते नहीं तो वो सुधरेंगे कैसे, वो कल भी गलत कर देंगे। तो हमारा क्राइटेरिया कि एक सही परफॉर्मर मीन्स आई द एक्टर को हर जीवन के सीन में कैसे जाना है, हमारा क्राइटेरिया ही बदल गया, और हमारा क्राइटेरिया ये बन गया जैसे सामने वाला होगा वैसे हम होंगे, तो फिर ये पूरा जीवन का ड्रामा क्या हो गया, सारे सीन ही बिगड़ते गए। इट वॉज सपोज टू बी अ ब्यूटिफुल सीन, लेकिन ये सारे सीन बिगड़ गए और हमारी मूवी क्या हो गई पूरी।
0: आपकी बात इतनी अच्छी लगी, ये जैसे सामने वाला होगा वैसे अगर मैं होगा, इसका मतलब है कि ही इज होल्डिंग द रिमोट कंट्रोल इन हिज हैंड, मेरा रिमोट कंट्रोल दे दिया मैंने।
1: yes.
0: इसके बारे में मैं आपसे अगले एपिसोड में बात करूंगा। इट्स अ लवली थॉट कि अगर हर आदमी, दुनिया में करोड़ों किस्म के लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, हर आदमी के साथ मैं अलग अलग व्यवहार करता रहूं, तो फिर मैं ओरिजिनल क्या रहा?
1: वेरी ट्रू,
0: थैंक यू सो मच, ओम शांति, ओम शांति।
2: Like when we perform in a drama, our focus is on our performance and our script, not dependent on the performance of our co-actors. Even if the other actor does not perform right or forgets their lines, we will keep performing well and even help them to come back on track. We should keep attention on our performance in every scene of life. The criteria that we have crossed the scene well are that we are at ease, the mind is feeling nice, body is relaxed, and co-actors in the scene are feeling nice. People respect us and feel nice with us, not because of what we have acquired in our life, but

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एनपी छत्तीसगढ़ से आपको स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है चिंता। चिंता यानी कि क्या है? चिंता और जो है एक तनाव और लोगों की जड़ है। चिंता हमारे जीवन में एक तनाव लेकर भी आता है और इससे बहुत तरह की जो होते हैं रोग भी होते हैं। तो रोग और तनाव की जड़ जो है वो चिंता है। कहावत है कि चिंता उतनी करो जो काम हो जाए, न कि इतनी जो जीवन तमाम हो जाए। वर्तमान समय मनुष्य हद से ज्यादा चिंता करता है। जब कोई हर पल चिंता करता है तब उसकी सोचने की जो रफ्तार है वो तेज हो जाती है। यदि व्यक्ति उन समस्याओं की चिंता करता है जो अभी तक है ही नहीं, तो व्यर्थ सोचने से ऐसी समस्याएं सचमुच आने लगती है। दुख, परेशानी, कठिनाइयां सबके जीवन में आती है, परंतु हम जो चाहें बस हम जो चाहते हैं बस उन्हीं कार्यों के बारे में सोचे तो सब कुछ ठीक होने लगेगा। एक है कि थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा सा इंतजार भी करना आना चाहिए। जीवन की हर मुश्किल जो है वो ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह है, थोड़ा इंतजार कर ले तो फिर से हरी हो जाती है। अर्थात जीवन जो है ये क्या है, अगर आप जीवन में चिंता छोड़ धैर्य रखें, थोड़ा इंतजार करें, आने वाला कल निश्चित ही अच्छा होगा। हम कितनी भी चिंता करें, चिंता समस्या का समाधान कर सकती है क्या? नहीं ना। चिंता एक काली दीवार की तरह मनुष्य को चारों ओर से घेर लेती है, जिसमें से निकलने के लिए कोई गली नहीं सूझती। चिंताग्रस्त व्यक्ति जो होता है मृत्यु से पहले कई बार मरता है। एक यहाँ हम देखते हैं कि तनाव और रोगों की जड़ है चिंता। जिंदगी में जितना भी आप चिंता का आना

स्वाभाविक है, जितनी भी चिंता आ जाए इसका आना स्वाभाविक है, लेकिन ये लंबे समय तक टिक जाए तो अनेक बीमारियां शुरू हो जाती है। चिंता और तनाव जो होता है वो सभी रोगों की जड़ है। ये सारे रोग मन में पैदा होते हैं। किसी भी तरह की चिंता मनुष्य के शरीर की जो होती है प्रतिरोधक क्षमता कम कर देती है, और जो होता है चिंता से होने वाली बीमारियां है जैसे हृदय रोग, गठिया, अल्सर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, दांतों का सड़ना, लकवा, किडनी की समस्याएं, आंखों की रोशनी में कमी, हार्मोन विकार, ये सब चिंता से होता है। सौंदर्य जो होता है वो खत्म हो जाता है, जल्दी बुढ़ापा आ जाती है। तो इससे हमें क्या करना है, बचना है। इससे बचने के बहुत सारे उपाय हैं अगर हम चिंता से दूर रहना सीख ले तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है चिंता और जो है तनाव और रोगों की जड़ है। मन का इलाज किए बगैर सिर्फ शरीर का इलाज करना क्या होता है? जो हम खाते पीते हैं उससे असर नहीं होता, असर उस चीज से होता है जो हमको खाई जा रही है, अर्थात चिंता से। अमेरिका के प्रसिद्ध चिकित्सक मेयो ब्रदर्स ने कहा था कि हमारे हॉस्पिटल के आधे से ज्यादा भेंट मानसिक व भावनात्मक बीमारियों के शिकार लोगों से भरे हैं। उसकी जो होती है वो बताते हैं कि उसकी ये बीमारियां तंत्रिकाओं या नर्वस के क्षय के कारण उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि चिंता, कुंठा, व्यग्रता, डर, हताशा से हुई है, भावनाओं द्वारा उत्पन्न हुई है। चिंता के बारे में प्लेटो ने कहा था कि डॉक्टर सबसे बड़ी भूल यह करता है कि वह मन का इलाज किए बगैर सिर्फ शरीर का इलाज करने की कोशिश करता है। चिंताओं से लड़ने का सबसे बेहतरीन उपाय है कि व्यक्ति निष्पक्ष और निरपेक्ष तरीके से जीवन जिए। इस ज्ञान के प्रकाश में चिंताएं भाप की तरह उड़ जाएंगी। दूसरा, मन में जब भी कोई नकारात्मक भाव आए तो फौरन दर्शक बन जाओ। ऐसा करने से भाव जो है वो बादल की तरह आएगा और चला जाएगा। चिंताओं से लड़ने आने चाहिए लोगों को, जैसे चिंताओं से हमें लड़ना सीखना है, चिंताओं से लड़ना सीखें। कैसे? डॉक्टर एलेक्सिस कैरेल का कहना है कि जो चिंता से लड़ना नहीं जानते वह जवानी नहीं मर जाते हैं। चिंता उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जो चिंता से लड़ना जानता है। चिंताओं से लड़ने के लिए सबसे पहले चिंता का असली कारण ढूंढा जाए। ज्यादातर चिंताएं सांसारिक होती है, रचनात्मकता से ऐसी चिंताओं से मुक्ति पानी है। दूसरा, आध्यात्मिक तरीका अपनाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा सदा मेरा साथी है। चिंता नहीं, चिंतन करें तो समाधान हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं ज्योत्सना फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है चिंता, तनाव और लोगों की जड़। याद रखिए, जो हुआ सो हुआ और जो हुआ अच्छा हुआ। अगर हम इस चीज को समझ गए, जब कोई व्यक्ति चिंतित होता है तो कुछ भी कर नहीं पाता, जबकि चिंता से निकलने का एकमात्र तरीका है कुछ करना। व्यक्ति जितने समय तक चिंता में रहता है, अपने जीवन को बेहतर करने का उतना समय गवा देता है। चिंता का बड़ा कारण है भ्रम। भ्रम को हटाने के लिए

समस्या को लिखी। लिखने से चिंता का जो है मानसिक चक्र टूट जाता है। याद रखें, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छे से अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह तो बहुत ही अच्छा होगा, फिर चिंता किस बात की करें। एक हम देखते हैं यहाँ पे, चिंता पूरी क्षमता से काम नहीं करने देती। दिखा गया है कि व्यक्ति अपनी सफलताओं के लिए खुद की परेशानियों को दोष देते रहते हैं और बीते कल की कमी कमजोरियों में उलझे रहते हैं। दूसरी तरफ भविष्य की चिंता भी उन्हें बड़े फैसले लेने और आगे बढ़ने से रोकती है। परंतु जो समय बीत चुका है, हम कितने भी दुखी हों उसे बदल नहीं सकते, और भविष्य की कितनी भी चिंता करें उससे कभी उससे कुछ भी प्राप्ति हो नहीं सकती। भविष्य की चिंता करना उस उधार को चुकाने के समान है जो हमने कभी लिया ही नहीं है। केवल वर्तमान ही है जिसे जिया जा सकता है। बीते हुए कर्म से सिर्फ सीखा जा सकता है और आने वाले कल की केवल तैयारी की जा सकती है। हमें देखते हैं इधर की समस्या को शुरुआत में खत्म करें। अगर कुछ समस्या आती है तो उससे हमें क्या करना है, शुरुआत में ही खत्म कर देनी चाहिए। नापसंद कार्य को तुरंत कर लें, चिंता अपने आप ही कम हो जाएगी। काम को जितने लंबे समय तक आप टालेंगे, दुख ज्यादा होता चला जाएगा। देर करने से डर बढ़ जाता है, कर्म करने से डर या चिंता खत्म हो जाती है। जिस काम की चिंता है उसे आज और अभी कर दे, किसी भी समस्या को शुरुआत में ही खत्म कर दे। टालने से हमारा आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। हाँ, तो आपने देखा कि कैसे चिंता से हमें दूर होना है, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हाँ, समस्याओं को क्या करना है, शुरुआत में ही खत्म कर देना है। हाँ, और हमें ये भी सोचना है कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा। तो इसी के साथ हम अपना आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं, और आपसे मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में। और तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

جاتے کیوں نہیں؟ جاؤ جاتے کیوں نہیں؟ پھول سا رخ مد شبنم

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल।

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, ख्वाबों के सफर में मैं हूँ आपका हम सफर। आज के सफर को और सुहाना और सुंदर बनाने के लिए आज के हमारे कार्यक्रम के इस एपिसोड में विभा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कुछ प्यारे गाने जो ओ अक्षर वाले हैं वो उनके पिटारे में है जो हम लोग एक एक करके सुनने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से विभा जी का बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सनी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ख्वाबों का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार से प्यार भरा नमस्कार।
1: आपसे बीतते हुए लम्हों को कैसे रोकूं? खुदा ना करे कि ऐसा लम्हा आए जो सारी ख्वाहिशों को संग ले जाए। इजाजत बस खुदा से इतनी चाहिए, जिंदगी भी जितनी भी जिंदगी है बस तेरी याद में बीता बीत जाए। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर ख्वाबों के सफर में आप सभी का स्वागत है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में आगे बढ़ते हैं और विभा जी कौन सा गाना है आपके पास?
2: जी सनी, जैसे आपने कहा मेरे पिटारे में आज फिर ओ वाले गाने हैं और मैं आपको ये थोड़े मस्ती वाले

0: ये थोड़े चुटबुले और नाच गाने वाले गाने सुनाने वाले हैं। और पहला मेरे पास गाना है ओ मोरा नादान गलमा न जाने दिल की बात, और ये नाचते हुए गाना नाचते हुए फिल्माया गया है। जैसे कि ये वर्डिंग बोल रही है कि अपने बलमा तक अपने दिल की बात कैसे पहुंचानी है, नाचते हुए इशारों से थिरकते हुए डांस करते हुए। और ये गाना अपने आप में एक कंप्लीट है, इसके लिए ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप गाना सुन के इसको एंजॉय करें और मुझे बताएं कि आपको गाना कैसा लगा।
1: जी, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। और ये उजाला 1959 में फिल्म आई थी जो शम्मी कपूर, माला सिन्हा, राजकुमार और कुमकुम पर पिक्चराइज किया गया था। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं। ये एक गरीब छात्र की कहानी है, गरीब स्टूडेंट की कहानी है। मुंबई में एक परिवार के साथ रहता है और वो अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए जद्दोजहद मेहनत करता है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी क्लाइमेक्स आती हैं। कहानी को इस तरह से बताया गया है। तो आइए, इस कहानी को जो है डायरेक्ट किया था नरेश सहगल ने और बहुत ही प्यारी सी इसमें डायरेक्शन दी है फिल्म में, और शंकर जयकिशन साहब का संगीत से सजा ये फिल्म है। तो आइए, इस फिल्म का गीत जैसे विभा जी ने याद कराया है, हसरत जयपुरी साहब ने लिखा है, लता मंगेशकर ने गाया है, और उजाला एस एल्बम का ये खूबसूरत गाना कार्यक्रम के शुरुआत में आप सबके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: राह चलते तो हजारों मुसाफिर मिलते हैं, राह चलते तो हजारों मुसाफिर मिलते हैं, जिंदगी में तो कई मुसाफिर अपने बनते हैं, अपनों और गैरों में भी बहुत फर्क होता है। कुछ पास हो के भी दूर है, कुछ दूर हो के भी दिल के सबसे करीब है। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: सनी, मेरे पास अगला गाना भी है, ये एक पार्टी में गाया रहा है ये गाना। ये जन्मदिन का माहौल है, छोटे बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है और इसमें गाने के बोल है, ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। जैसे कि गाने की वर्डिंग ही बता रही है कि बच्चे के साथ इसमें संजय हैं और बलराज सानी हैं और साधना जी पे फिल्माया गया ये गाना है और छोटे बच्चे को अपने दिल के भाव, दिल का प्यार प्रकट करते हुए इस गाने को गा रहे हैं और बहुत ढेर सारी दुआएं भी दे रहे हैं और कुल मिला के एटमोस्फेयर बहुत खूबसूरत है। और वो कह रहे हैं, मुझे खुद पता नहीं है मुझे तुझसे प्यार क्यों है, मेरी जिंदगी में छाई तुझसे बहार क्यों है।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लाइनें आपने सुनाई हैं। आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी ये गाना बहुत पसंद आएगा। और ये फिल्म आई थी 1969 में, एक फूल दो माली, बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही और इसमें जो हीरो है वो माउंटेनर है, यानी पर्वतरोही है, और पर्वतरोही जो है वो हमेशा उस इवेंट को करते रहते हैं और उसी बीच एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो ये निर्णय करते हैं कि हम लोग एक इवेंट पूरा करेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। पर वो इवेंट इतना लंबा हो जाता है कि उस इवेंट के अंदर तूफान आ जाता है, तो फिर वहां पर एक बहुत बड़ा क्लाइमेक्स फिल्म में बताई गई है। तो इस फिल्म के जो कलाकार हैं, संजय खान, बलराज सहानी, साधना और दुर्गा कोटे ने काम किया है। तो आइए, इस फिल्म का ये गीत आपने याद कराया, बहुत ही प्यारा ये गाना है। प्रेम धवन साहब ने लिखा है, मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, रवि साहब का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना अभी हमारे श्रोताओं के लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुंदर रेडियो पुणे आवाज 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छे अच्छे गाने आप सुनाए हैं। एक फोन दो माली का गाना आपने अभी सुना, ओ नन्हे से फरिश्ते। तो आइए आगे बढ़ते हुए विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
1: पहले सुनिए, आप बताएं आपको ये गाना कैसा लगा।
0: ओ, गाना तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा, एंड एक मैसेज देता है और कहीं ना कहीं एक मासूमियत जो है ना वो फील आता है, एक फरिश्ता है जो एक अलग फील है इसमें। जी
1: जी बिल्कुल, और केक खाने को भी मन करता है बर्थडे को। अगला गाना मेरे पास है, जैसे कि मैंने कहा ये चुपले खुशी वाले गाने हैं।
0: हाँ।
1: नीले पर्वतों की धारा, नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा बड़ी दूर से, सबको सहारा चाहिए कोई हमारा चाहिए। जैसे कि गाने के बोल कह रहे हैं, सबको सहारा चाहिए, हर किसी को सहारे की तलाश है, प्यार की तलाश है, प्यार का सहारा सबको चाहिए। तो जो इस गाने को कंप्लीट करता है, और उसके बोल बड़े सुंदर हैं, फूल में जैसे फूल की खुशबू इसमें है यूं तेरा बसेरा, धरती से अंबर तक फैला चाहत की बाहों का घेरा। खूबसूरत बोल के साथ खूबसूरत गाना आपके लिए।
0: बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है, और ये मुझे लगता है कि आदमी और इंसान 1969 में फिल्म आई थी, इस फिल्म का ये गाना है। फिल्म के कलाकार धर्मेंद्र, फिरोज खान, सायरा बानो, मुमताज है, और इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है, दो पुराने दोस्त जो है दुश्मन बन जाते हैं और फिर वापस एक दूसरे के सामने आते हैं, तो वहां पर जो है चीजें थोड़ी सी अलग अलग हो जाती है, फिर से वो दोस्त बन जाते आखिरी में, लेकिन बीच में बड़ा क्लाइमेक्स दिखाया है, तो ये कहानी है इसमें। आइए आगे बढ़ते हुए, ये गाना जो है शायद रणवीर साहब का लिखा है, आशा भोसले और महेंद्र कपूर का गाया, रवि साहब का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना है। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबों के सफर में। और बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं, ओ अक्षर वाले। जी हाँ, अभी आपने सुना वो बहुत ही खूबसूरत गाना था, मुझे अच्छा लगा, ओ नीले पर्वतों की धारा। शाहिद लुधियानवी साहब का लिखा ये गीत आपने सुना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और विभा जी, आपके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा, यूं ना निकला करो आजकल रात को, यूं ना निकला करो आजकल रात को, चांद छुप जाएगा देखकर आपको।
2: वेरी नाइस।
1: अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अगला गाना है देवानंद अपने महबूबा नूतन की आंखों की तारीफ कर रहे हैं। और गाने के बोल हैं, ओ निगाहें मुस्काना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के जरा झुक जाना। तो इसमें पूरी मस्ती के साथ देवानंद जैसे अपने अंदाज में गा रहे हैं।

0: और नूतन पर पूरी तरह से फिदा हो रहे हैं। आप गाने को ही एंजॉय करें, इसके लिए जितना मैं कहूंगी उतना कम है। आप तो इस गाने को सुन के ही आप इसको ऐड कर सकते हैं कि इसमें और क्या है।
1: जी जी जी, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने पेंगेस्ट इस एल्बम का याद किया है। देवानंद नूतन और शोभा खोटे और गजानंद जागीरदार ने इस फिल्म में काम किया था। बहुत ही खूबसूरत गाना है, चलिए गाने का आनंद उठाते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

देख समा है सुहाना, तीर दिल से चला के हाँ जरा झुक जाना, ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना।

खिली आंखें मल मल के दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करे परवाना। कोई देखे नशीली आंखें मल मल के दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करे परवाना। ओ निगाहें मस्ताना देख।

के गले से लग जाना, जले चांद सितारे जिन बातों से सुन जा वही अफसाना। दामन न बचाना मेरे हाथों से, हर माँ के गले से लग जाना, जले चांद सितारे जिन बातों से सुन जा वही अफसाना। ओ निगाहें मस्ताना देख समा है सुहाना, तीर दिल से चला के हाँ जरा।

बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने।

0: रहो खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, ओ निगाह मस्ताना। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इस गाने को लिखा था, आशा भोसले किशोर कुमार ने गाया था, सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा पेंग गेस्ट इस एल्बम का ये गाना था। और पेंग गेस्ट ये नाम सुनकर ही आपको पता चल जाता है कहीं न कहीं एक व्यक्ति जो है किरायेदार बनकर रहता है। ऐसे ही देवानंद भी यहाँ पर एक किरायेदार होता है, लेकिन फिर जो मालकिन होती है उनके साथ इनका जो है कुछ बातें बन जाती है। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पर बताई गई है और कहीं न कहीं एक पुराना रिश्ता जो है वहां पर सामने निकल के आता है। तो कहानी इस तरह की यहाँ पर डिजाइन किया गया था। सुबोध मुखर्जी साहब ने इसको डायरेक्ट किया था, एस मुखर्जी जो है इसके प्रोड्यूसर थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अगला गाना है मेरे पास ये औ पंछी प्यारे सांझ सकारे बोले तू कौन सी बोली। ये एक डिफरेंट सा एटमोस्फेयर में फिल्माया गया गाना है। तो जेल में बैठी औरतें जो कैद में हैं और ऊपर उड़ते हुए पंछी को देख के उनकी आवाज को सुन के उनसे जैसे बात कर रही है कि तू आजादी में है और वो इसमें नूतन है। तो वो कैद और आजादी का जो एक डिफरेंस है उसको इस गाने में बताया गया है कि आजादी की क्या वैल्यू है। तो उसमें वो गाते हुए कह रही है मैं खिड़की से छुप छुप देखूं रुच बसंत की आई।
1: जी जी जी जी, आप ये बंदनी फिल्म का ही बात कर रहे हैं। बंदनी फिल्म में ही ये गाना था, बिमल रॉय के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में शायद हमने जिक्र किया था। महिलाओं का एक जेल होता है, उस जेल का जेलर धर्मेंद्र साहब है और इसमें अशोक कुमार, धर्मेंद्र और नूतन पर पिक्चराइज किया गया। ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और इस फिल्म का ये जो गाना अभी आपने जिक्र किया जिसके बारे में, वो शैलेंद्र साहब ने लिखा था, आशा भोसले ने गाया था और सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा ये गाना है और बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत ही डिफरेंट फील आएगा। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां बांटो।

0: और विभा जी कैसे हैं आप?
1: जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और दूसरे गाने को देख के ये सोच रही हूँ कि आपसे पूछूं कि आपने कभी चांद सितारों से बात करी?
0: हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी।
1: ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे मेरा कसूर क्या है तो फैसला सुना दे। इसमें मीना कुमारी बड़े भोलेपन से चांद सितारों से बात कर रही है, चांद से पूछती है हमको जज बना के कि तू बता दे कि मेरा कसूर क्या है। कि मोहब्बत में दिल का कसूर होता है कि आंखों का कसूर होता है? तो इसको सुन के आपको बड़ा मजा आएगा।
0: जी, जी,
1: तो ये
0: जी,
1: गाते हुए कह रही है, भटकी हुई है नैया साहिल से दिखा दे मेरा कसूर क्या है फैसला सुना दे।
0: बस अभी भी मैंने चांद से बातें की आपके लिए, तो चांद ने कहा आपके लिए, हम तो अल्फाज ही ढूंढते रह गए और वो आंखों से गजल कह गए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। और आइए अगला गाना जो अभी हमारे विभा जी ने बताया है, ये राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा हुआ है, लता एंड रफी साहब का गाया, हेमंत कुमार का संगीत से सजा। ये बहुत ही खूबसूरत गीत है, तो चलिए सुनते हैं इस गीत को। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जो गाना आपने सुना, ये एक एल्बम आई थी 1957 में, जिसका नाम था मिस मेरी। जी हाँ, मिस मेरी। इस फिल्म के कलाकार थे किशोर कुमार, मीना कुमारी और जेमिनी, और इसके साथ में ओम प्रकाश जी ने भी काम किया था। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी उस समय की, 1967 की। और इसमें एक जो है अमीर और गरीब की कहानी बताई गई है थोड़ा सा इसमें। और मिस मेरी जो है एक लड़की है, और उसके ऊपर ये पूरी फिल्म बनाई गई है, क्योंकि वो लड़की फिर बीच में घूम जाती है और उसको ढूंढने में सारी फिल्म जो है कंप्लीट करते हैं डायरेक्टर साहब LV प्रसाद जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अगला गाना है, वर्षा आ रही है और बारिश में भीगती हुई साधना जी गा रही है। वो सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। और ये बारिश से खेलती हुई साधना अपने साजन को याद कर रही है और मौसम में मचलते हुए अरमानों को बयां कर रही है। ऐसे रिमझिम में ओ सनम, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गए, सांवरी घटा जब जब छाई।
1: बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। परख नाम का एक फिल्म आई थी 1960 में, और ये फिल्म जो है एक यूनिक कहानी को बयां करती है। उस समय ये फिल्म जो है खास गांव के लोगों को ईमानदार बनाने के लिए, या फिर ईमानदारी का जो गुण है वो किस तरह से हमारे जीवन में बहुत हमें मदद करता है। कई बार होता है कि लोग जो है थोड़ा सा गरीबी के कारण जो है जल्दबाजी में कुछ अनजाने कदम उठा लेते हैं, जिसके वजह से उन्हें बाद में बहुत मुश्किलें सहन करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टर ने कोशिश की है, बिमल रॉय ने, कि हम जैसे भी हैं, चाहे गरीब हैं, लेकिन उसमें अगर मूल्य हमारे जीवन में होता है तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बनता है। और उसके लिए उन्होंने एक टेक्निक जो है, थोड़ा सा एक लालच का जो टेक्निक है वो उसने इसमें यूज किया था। तो बिमल रॉय की बहुत ही सुंदर डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी और सलील चौधरी का संगीत है। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, और इस फिल्म के कलाकार है साधना, मोतीलाल, दुर्गा खोटे, कन्हैया लाल पर पिक्चराइज किया गया था। तो आइए इस फिल्म का ये गीत अभी आपके लिए। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज। जी हाँ, ओह सजना बरका बहार आई, ये गाना आपने अभी सुना। शैलेंद्र साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, सलील चौधरी का संगीत से सजा ये गाना था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नेचर को बिल्कुल एंजॉय कर रही हूँ। चांद से बातें हो रही थी, अब वर्षा रानी से भी बात हो गई। अब सनम से बातें होने बाकी है और जो यहाँ सायरा बानो राजेंद्र कुमार के साथ कर रही हैं और गा रही हैं। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। बहुत सुंदर गाना है इसमें। और दो प्रेमी एक दूसरे के साथ जिंदगी की नेमत समझकर गा रहे हैं, मुस्कुराते हुए गाते हुए अपने इसको एंजॉय कर रहे हैं पूरे गाने को। और इसके बोल बीच में है जैसे, दो भटकते राही आ मिले मंजिल पर, दो दिलों की कश्ती आ लगे साहिल पर, मुस्कुराते जागे एक संग दो मुकद्दर।
0: जी जी जी, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद किया। और आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं कार्यक्रम के, और आई मिलन की बेला 1960 का ये फिल्म थी, 64 में रिलीज हुई थी शायद। और ये फिल्म भी अपने आप में एक ट्रायंगल लव स्टोरी वाली बात इसमें आ जाती है। एक हीरोइन और दो हीरो जो हैं, इस तरह की कहानी इसमें बताई गई है। और इस फिल्म के कलाकार राजेंद्र कुमार, सायरा बानो, धर्मेंद्र और शशिकला थे। ये फिल्म भी बहुत ही कॉमेडी के साथ बहुत ही अच्छी फिल्म बनी थी, उस समय बहुत पॉपुलर रही और लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया। मोहन कुमार के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी। बहुत ही अच्छा गाना जो है, इसमें सारे गाने हिट है लेकिन ये जो गाना आपने अभी याद किया, ओ सनम तेरे हो गए हम, ये अपने आप में बहुत ही मस्ती भरा है। तो मुझे लगता है कि अब वक्त हो गया है श्रोताओं को गुड बाय कहने का और आपको थैंक यू कहने का।
1: जी थैंक यू आपका भी और हमारे श्रोतागण का भी, जो इतने प्यार से इतने भाव से हमें सुनते हैं और हमारे हौसला अफजाई करते हैं आगे भी इस नए नए अच्छे अच्छे गाने चुन के लाने के लिए। आपका और हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत बहुत शुक्रिया और प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आपके लिए चंद लाइनें जाते जाते। कितनी खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी, इस जिंदगी में हमें और क्या चाहिए, अगर मिल जाए मोहब्बत तुम्हारी। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खापो का सफर के इस एपिसोड में। आज का सफर यही खत्म होता है, फिर मिलेंगे अगले सफर में नए एपिसोड में नए गानों के साथ। तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ। और आई मिलन की बेला इस एल्बम का शैलेंद्र साहब का लिखा, लता और मोहम्मद रफी साहब का गाया, शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध, ये

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद का समय बौद्धिक कोलाहल का काल था। अंग्रेजी भाषा के साथ यूरोपीय बुद्धिवाद के प्रचार से भारतवासियों के परंपरागत विचारों को बड़े जोर का धक्का लगा और उनमें से कितने ही लोग गंभीर होकर यह सोचने लगे कि मूर्ति पूजा ठीक है या नहीं, व्रतों और अनुष्ठानों से वास्तविक धर्म का क्या संबंध है, तथा पुराणों में जो विचित्र कथाएं मिलती हैं उनकी सार्थकता क्या है।
1: 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पश्चिमी जड़वाद ने सर उठाया और इस बार उसका आक्रमण ऐसा प्रबल था, अस्त्र ऐसे अमोघ और सहायक ऐसे सबल थे कि भारत की आत्मा को उसके सामने सिर झुका देना पड़ा। और कुछ ही दिनों में हिमालय से कन्याकुमारी तथा पश्चिम से पूरब तक उसकी पताका फहराने लगी।
0: हमारी आंखें इस भौतिक प्रकाश के सामने चौंधिया गई और हमने अपने प्राचीन तत्व ज्ञान, प्राचीन शास्त्र, प्राचीन समाज व्यवस्था, प्राचीन धर्म और प्राचीन आदर्शों को त्यागना आरंभ कर दिया।
1: इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप समझदार लोगों के मन में चेतना जागी और अनायास ही अपने धर्म में सुधार करने का प्रश्न उनके सामने आ गया। उस समय धर्म ही व्यक्ति और समाज का मूलाधार था, इसके बिना समाज सुधार की कल्पना हो ही नहीं सकती थी। इसीलिए राजा राममोहन राय ने धर्म संस्कार की ओर ध्यान दिया। सामाजिक कुप्रथाओं पर प्रहार करके समाज सुधार का श्री गणेश भी किया, जो कालांतर में सारे भारत में व्याप्त हो गया।
0: उस काल के समाज सुधारकों में देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, रानाडे, मैडम ब्लावत्स्की, कर्नल अलकाज प्रमुख थे। उसी काल में विवेकानंद का जन्म हुआ था और समाज सुधार और परिवर्तन की हवा में ही वे पले बढ़े।
1: इन सामाजिक आंदोलनों का मुख्य लक्ष्य समाज सुधार था। विधवा विवाह, सती प्रथा का उन्मूलन, सामाजिक कुरीतियों का नाश, जात पात की अवधारणा का बहिष्कार आदि समाज में कुछ बदलाव लाई।
0: कुछ लोग सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे, मूर्ति पूजा का बहिष्कार करने का आंदोलन भी चल पड़ा। ये नव पाश्चात्य दर्शन और पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का फल था। जो कुछ भारतीय या सनातन है उसका बहिष्कार करना उस समय के नव धनाढ्य वर्ग का चलन बन गया था और साधारण जनता हतप्रभ दिग्भ्रमित थी। उसे सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं था।
1: इसीलिए हम देखते हैं कि 19वीं सदी में निराकारवादी आंदोलनों का बाहुल्य है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये सभी आंदोलन हिंदुत्व के उसी रूप को मानते हैं जो निराकारवादी है, जो मूर्ति पूजा के खिलाफ है, जो जातपात को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है।
0: झगड़ा उस समय केवल निराकार और साकार का ही नहीं था, बल्कि विदेशी धर्मोपदेशक हमारे देश में प्रचलित धर्मों से लड़ रहे थे। इस्लाम और हिंदुत्व में भी मत अवरोध था। विज्ञान और बुद्धिवाद के प्रचार से हर जगह खलबली मची हुई थी। प्रत्येक धर्म की दूसरे धर्मों से लड़ाई, धर्म को लेकर भाषण, विवाद और शास्त्रार्थ, ये 19वीं सदी के प्रधान लक्षण थे।
1: 19वीं सदी में भारतीय समाज अनेक कुरीतियों से भरा पड़ा था। स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। विधवाओं पर भयानक कठोर दिनचर्या की पाबंदी थी। सती प्रथा, बहु विवाह प्रथा एवं पर्दा प्रथा के चलते स्त्रियों का जीना दूभर हो रहा था। बाल विवाह के नाम पर हजारों कन्याओं की बलि चढ़ती थी। वे बेजुबान पशुओं की भांति उस जीवन को जीने के लिए मजबूर थीं।
0: स्वामी जी को स्त्रियों का यह अपमान, जाति भेद की कट्टरता तथा धर्मों की आपसी लड़ाई कतई मंजूर नहीं थी। वे कहा करते थे,
2: क्या भारत में कभी सुधारकों की कमी रही है? क्या तुम कभी भारत का इतिहास पढ़ते हो? रामानुज कौन थे? शंकर कौन थे? नानक कौन थे? चैतन्य कौन थे? दादू कौन थे? क्या रामानुज गरीबों की ओर से लापरवाह थे? क्या वे आजीवन इस बात का यत्न नहीं करते रहे कि उनको भी अपने संप्रदाय में सम्मिलित कर लें? क्या उन्होंने मुस्लिमों को अपनी मंडली

0: देश की आज की परिस्थिति स्वामी जी के विचारों एवं चिंतन की आवश्यकता को और भी अधिक सिद्ध करती है। आज देश चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है, देश की सीमाएं आक्रांत हैं। भारत के नंदनवन कश्मीर पर और मुकुट हिमालय पर शत्रु की निगाहें लगी हैं। विदेशी शक्तियां देश में आंतरिक संकट पैदा करने में सचेष्ट हैं। वे देश में अराजकता, हिंसा और अव्यवस्था फैलाने में सक्रिय हैं। दूसरी ओर हमारे देशवासी व्यक्तिगत स्वार्थ, पदलिप्सा, व्यक्तिगत लाभ अथवा अहंकार से ग्रस्त हैं। देशाभिमान से व्यक्तिगत अभिमान अधिक प्रभावी हो रहा है।
1: ये समस्त आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक नेताओं के लिए चुनौती है और निसंदेह स्वामी विवेकानंद जैसी विभूतियों का तपस्वी जीवन तथा उसके उपदेश इस कार्य में मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत सिद्ध होंगे।
0: स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा बहुमुखी थी। 40 वर्ष से भी कम आयु तथा लगभग 10 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान वे अपने संपूर्ण जगत और विशेषकर भारत को जो कुछ दे गए वो आगामी अनेक शताब्दियों तक मानवता की धरोहर बनी रहेंगी। धर्म, दर्शन, शिक्षा, संस्कृति, इतिहास, कला, संगीत, साहित्य, विज्ञान, समाज सुधार, अर्थनीति, समाजवाद, नारी जागरण आदि नानाविध विषयों पर स्वामी जी के मौलिक एवं कालजयी विचार उनकी साहित्य में बिखरे पड़े हैं।
1: वस्तुतः अपने जीवन तथा संदेश के माध्यम से उन्होंने विश्व में एक युगांतर उपस्थित किया जिसे पूर्ण रूप से विकसित होने में संभवतः शताब्दियां लग जाएंगी। भारत को यदि जीवित रहना है और प्रगति करते हुए अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करना है तो अपनी राष्ट्रीय समस्याओं का हल उसे विवेकानंद में ही ढूंढना होगा।
0: राम मोहन, केशव सेन, दयानंद, राणा डे, एनी बेसेंट, रामकृष्ण एवं अन्य चिंतकों तथा सुधारकों ने भारत में जो जमीन तैयार की, विवेकानंद उसमें से पीपल होकर उठे। अभिनव भारत को जो कुछ कहना था वो विवेकानंद के मुख से उत्कीर्ण हुआ। अभिनव भारत को जिस दिशा की ओर जाना था उसका स्पष्ट संकेत विवेकानंद ने दिया। विवेकानंद वो सेतु है जिस पर प्राचीन और नवीन भारत परस्पर आलिंगन करते हैं। विवेकानंद वो समुद्र है जिसमें धर्म और राजनीति, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता तथा उपनिषद और विज्ञान सब के सब समाहित होते हैं।
1: यह भारत का परम सौभाग्य था कि उसके इतिहास के संकटपूर्ण काल में उत्तम नेतृत्व एवं पथ प्रदर्शन के लिए ऐसे शक्तिशाली और महान संत उत्पन्न हुए। उनके संवेदनापूर्ण उद्गार हैं।
2: आगामी 50 वर्षों के लिए हमारा केवल एक ही विचार केंद्र होगा और वो है हमारी महान मातृभूमि भारत। दूसरे सब व्यर्थ के देवताओं को तब तक के लिए हमारे मन में लुप्त हो जाने दो। हमारा राष्ट्र पुरुष यही एक देवता है जो जाग रहा है, जिसके हर जगह हाथ हैं, हर जगह पैर हैं, हर जगह कान हैं, जो सब वस्तुओं में व्याप्त है। हम क्यों उन व्यर्थ के देवताओं के पीछे दौड़ें और उस विराट की पूजा क्यों ना करें जिसे हम अपने चारों ओर देख रहे हैं।
1: भारत बहुत काल तक दुर्बल रह चुका है। परिस्थिति की आंधी के थपेड़े खाते हुए बिना लंगर के जहाज की भांति भारतीय जनसाधारण आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास खो बैठा है। उसे जागृत करते हुए स्वामी जी कहते थे,
2: विश्वास, विश्वास अपने आप में विश्वास, विश्वास, विश्वास ईश्वर में विश्वास, यही महानता।

0: रहस्य है।
1: वे पाप को नहीं मानते थे, केवल त्रुटियों को मानते थे। उनकी दृष्टि में यदि कुछ पाप में था तो वह थी दुर्बलता। वे कहते थे कि सत्य बलप्रद है और अहम ब्रह्मास्मि का वेदांतिक सिद्धांत ही सर्वोच्च सत्य एवं परम शक्ति का मूल है, जो सिखाता है कि मैं उस आत्मा से तनिक भी कम नहीं हूँ, जिसे न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगा सकता है और न वायु ही सुखा सकती है।
2: विवेकानंद कहा करते थे कि देश के कल्याण के लिए जनसाधारण का स्तर ऊंचा उठाना परम आवश्यक है। राष्ट्र का निवास गरीबों की झोपड़ियों में है। अगर हमारे कोटि कोटि बंधुगण दरिद्रता और अज्ञान में डूबे रहें, तो हमारी उन्नति कैसे हो सकती है। अपनी विचारधारा को क्रियात्मक रूप देने के लिए उनकी विभिन्न कल्पनाएं थीं। उनमें से एक कल्पना ये थी कि देश भर में ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएं जहां पहले गरीबों को मौखिक शिक्षा दी जाए, तत्पश्चात कृषि एवं उद्योग की शिक्षा दी जाए और शिल्प कला के शिक्षण के लिए कारखाने खोले जाएं।
1: विवेकानंद पूरे विश्व से अनोखे अनुभवों और आदर्शों की सीख लेकर आए थे, जिनका सार वे भारतवासियों के उत्थान के लिए प्रयोग में लाना चाहते थे। उन्होंने जापान से एक पत्र में लिखा था,
3: सुनता हूं कि यहां जापान में ऐसा विश्वास है कि यदि बालिकाएं अपनी गुड़ियों से पूरे हृदय से स्नेह करें तो उनमें प्राणों का संचार हो जाएगा। हमारे देशवासी समृद्धि के वरदान से वंचित, सौभाग्यहीन, पूर्णतः विवेक शून्य, पद दलित, सद्बुमुक्षित, कलह प्रिय और ईर्ष्यालु हो गए हैं। वे अज्ञानता और दीनता के भंवर में फंसकर दिन प्रतिदिन अधिकाधिक पतित होते जा रहे हैं। जापानियों की तरह मेरा भी यह विश्वास है कि यदि कोई भारतीय अपने इन देशवासियों से पूरे दिल से प्रेम कर सके तो भारत पुनः जागृत हो जाएगा। भारत तभी जागेगा जब सैकड़ों की संख्या में उदार चेता स्त्री और पुरुष विलासिता के आकर्षण को पूर्ण रूप से तिलांजलि देकर अपने करोड़ों देशवासियों की भलाई के लिए आतुर होकर उनकी सेवा में जी जान से जुट जाएंगे।
2: विवेकानंद भारत के युवा शक्ति के प्रति अत्यंत आश्वस्त थे। वे कहते थे कि इस युवा शक्ति को एक सुनियोजित महान लक्ष्य की ओर परिचालित करना होगा। एक प्रचंड शक्ति को किसी सीमा के भीतर आबद्ध रखने पर उसमें विस्फोट हो जाता है। युवा वर्ग के भीतर जो प्रबल प्राण शक्ति है, उसे ठीक पथ पर न चला पाने से जो संकट उत्पन्न होगा, उससे पूरा देश तथा समाज प्रभावित होगा।
1: नवीन बंदरगाह की ओर उनकी यात्रा शुरू हो गई है। उनके पाल में हवा लग रही है। हमारा कार्य ये देखना है कि वे कहीं दिशा भूल न जाएं। विवेकानंद का विश्वास था कि हमारे युवा भारत की अतीत की धरोहर को और भी समृद्ध कर सकेंगे।

0: स्वामी विवेकानंद जैसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व को मात्र किसी विशेष जाति या देश की संपत्ति नहीं माना जा सकता। स्वामी जी सार्वभौमिक धर्म तथा विश्व संस्कृति के प्रतीक हैं और उनका उदात्त संदेश संपूर्ण मानवता के लिए है। उनका राष्ट्रवाद आधुनिक काल में भारत द्वारा आत्माभिव्यक्ति के प्रयासों का फल है, तथापि सभी देशों के लिए इसका सार्वभौमिक महत्व इसलिए है कि ये एक उदात्त आदर्श प्रस्तुत करके एक नया आध्यात्मिक दृष्टिकोण देता है जो प्राच्य तथा पाश्चात्य दोनों को ही संतुष्ट करने वाला है तथा एक दुर्लभ सांस्कृतिक विरासत प्रदान करता है।
1: आज हम सभी उस दिव्य पुरुष को नमन करते हैं, उनके जीवन चरित्र का अध्ययन करने का ध्येय इसलिए और भी अधिक प्रासंगिक बन जाता है क्योंकि आज हम एक और संकट और संक्रमण कालखंड से गुजर रहे हैं जहां अस्तित्व का संकट है, जीवन मूल्यों का संकट है, अपनी पहचान का संकट है।
0: आज ये बहुत जरूरी है कि एक बार हम स्वयं को जानने के लिए, अपने राष्ट्र को जानने के लिए स्वामी जी के विचारों का मंथन करें और उससे जो अमृत निकले उसे अपनी नई पीढ़ियों को वितरित करके उनके व्यक्तित्व को एक सार्थक और सकारात्मक दिशा देने में समर्थ हो सकें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। The person who I have to live with 24/7, I need to be comfortable with that person. I have to live with myself. दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, so we need to say.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुंडेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो

0: घंटे की 8 घंटे की नींद थी, मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।
2: जीवन में सुख पाने के बहुत तरीके होते हैं। उनमें से सबसे अनूठा, सहज और प्रेरणादायी तरीका है सेवा। सेवा न केवल करने वाले व्यक्ति के अंदर ज्योति जगाता है, लेकिन उन लोगों के तमाम लोगों के जीवन में भी अंधेरा मिटाता है जिनके प्रति वो सेवा की गई है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही विशेष सेवाधारी के साथ। यशस्वी भारत कार्यक्रम में आप सभी श्रोता साथियों का मैं आरजे शांतनु स्वागत करता हूँ। आप सुन रहे हैं 90.4 FM रेडियो मधुबन। जब बात सेवा की गई है दोस्तों, तो आपको समझ ही गया होगा कि आज हमारे साथ जो हमारे विशेष मेहमान हाजिर हैं स्टूडियो में, उनका सेवा से कुछ न कुछ ताल्लुक जरूर है। मैं कहूंगा कुछ न कुछ ताल्लुक क्या, उनका जीवन ही सेवा है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित जितेंद्र सिंह शंटी जी एक ऐसा नाम है जिसने कोरोना काल में कईयों के जीवन में अंधियारा जो छाया हुआ था उसको मिटाया है। हजारों लाशों को दाह संस्कार कराना, उनके अंतिम संस्कार की विधि अपने सर पे लेकर के करना, ऐसा काम जितेंद्र सिंह शंटी जी ने अपने दल, अपने एनजीओ के साथ मिलकर के किया। शहीद भगत सिंह दल जिसके ये फाउंडर रह चुके हैं, आप सब ने मिलकर के देश के कितने ही ऐसे परिवार वालों को सुख पहुंचाया है जो खुद अपने हाथों से अपने प्रियजनों का, परिवार वालों का दाह संस्कार नहीं कर पा रहे थे। अपने इन्हीं अनूठे सेवा के प्रयासों के लिए जितेंद्र सिंह शंटी जी को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। और आज हमारा ये सौभाग्य है दोस्तों कि हमारे स्टूडियो में शंटी जी मौजूद हैं। शंटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि शहीद भगत सिंह दल की आपने शुरुआत की, क्या प्रेरणा रही थी, किस चीज की वजह से आपने इस दल की शुरुआत की, और एक अलग ही प्रकार का ये एनजीओ है?
3: देखिए, कई बार छोटा सा एक हादसा इंसान के जीवन को बदल देता है।
2: जी बिल्कुल।
3: और मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ जो सेवा के लिए बनी है।
2: बिल्कुल,
3: सिख कम्युनिटी।
2: हाँ जी,
3: मुझे प्राउड है इस बात। और 1995 में एक शमशान घाट पे जब मैं क्रिमेशन में गया और मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति लोगों की जली हुई लकड़ियों के टुकड़े उठा रहा है, तो मैंने सोचा और मेरे दोस्तों ने शायद चोरी कर रहा है। हमने उससे पूछा, तो ये आप लकड़ी क्यों उठा रहे हो? तो जो बात उसने बताई वो सुन के हमारे पैरों तले जमीन निकल गई और सन रह गए हम सुनकर, और शर्म भी आई अपने ऊपर कि हम राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे हैं जहां पे ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि वो बाहर गांव से आए बच्चे का इलाज कराने और बच्चे की मृत्यु हो गई है।
2: जी।
3: और सुबह से बैठे हैं शमशान घाट पे, पैसे नहीं है लकड़ी के, सामग्री के, पंडित जी के, कुछ चारा ना देख। सर्दियां थी, रात होने वाली थी, तो किसी ने सलाह दी कि जो दाह संस्कार होता है उसके आसपास कुछ लकड़ियों के पीसेस बच जाते हैं। उठा के बेचारा संस्कार कर रहा था। बहुत शर्म आई हमें कि हम किस राष्ट्रीय राजधानी में बैठे हैं जहां पर लोग 1 करोड़ की कार में घूमते हैं, करोड़ रुपए फ्लैट में रहते हैं, शादी में, मैरिज एनिवर्सरी में, बच्चे के जन्मदिन में करोड़ों रुपए लगाते हैं। उस दिल्ली के अंदर यार एक व्यक्ति अपने बच्चे की लाश लेके बैठा है और दाह संस्कार के पैसे नहीं है। हमने उसका दाह संस्कार कराया। अगले दिन हम बैठे सारे दोस्त, इसके ऊपर हमने चिंतन किया। कई दोस्तों ने कहा यार ये तो प्रशासन को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। तो हमने ये बात कही कि देखिए, सब कुछ प्रशासन और सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो काम नहीं चलेगा, हमको भी आगे आना चाहिए। उसके जब बिजली चली जाती है, प्रशासन तो बिजली देता है लेकिन टेम्परेरी तो हम ही हल करते हैं ना,
2: घर में लाइट गई तो क्या करेंगे,
3: पानी गंदा आता है तो हम क्या करते हैं, आरओ लगाते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: हम सरकार पर तो डिपेंड नहीं करते, प्रशासन पे। तो क्यों ना

0: हम शुरुआत करेंगे। एक शमशानगढ़ पहले हमने अडॉप्ट किया, बोर्ड लगा दिया वहां पे कि कोई भी लावारिस डेड बॉडी होगी या गरीब परिवार से असहाय परिवार होगा उसको हम दाह संस्कार करेंगे। एक एक करके 17 शमशानगढ़ अडॉप्ट किए, पहले महीने में 2 बॉडी आती थी, 10 आने लगी, चर्चा का विषय बन गया वो। उसमें 2 बातें आई कि जहां हमें कई लोगों ने सराहा वहीं बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया।
1: इसमें किस प्रकार का क्रिटिसिज्म आया?
0: बस वो अपने कुछ हमारे रिश्तेदार भी, यहां तक कि मेरा भाई भी कहने लगा कि ये तो यार लाशों का धंधा करते हैं, कफन बेचते हैं, इस टाइप का बातें सुनने को मिली
1: जी।
0: लेकिन मेरे को एक बहुत सहने व्यक्ति ने कहा था कि जब आप सेवा में उतरे हैं तो आप आंखें खुली रखिएगा, कान बंद रखिएगा और सेवा करते जाइएगा। और यही करते करते करते करते बढ़ता चला गया काम। फिर हमें एक चीज और दिखी कि यार जब डेथ किसी की हॉस्पिटल में हो जाती है, बॉडी को घर लाना है, तो कितना भी अमीर आदमी होगा अपनी कार में तो नहीं लाएगा ना। ऐसे आते हैं लोग, फिर कोई टेम्पू कर रहा है, कोई रेडी पे लेके आ रहा है। तो हमने एक 1996 में एक डेड बॉडी ले जाने के लिए शव वाहन बनाया, उसका इनोग्रेशन मैंने कपिल देव से कराया। फिर एक एम्बुलेंस बनाई, उसका इनोग्रेशन मैंने माननीय मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा जी से कराया दिल्ली में। तो लोगों में जागृति आई, यार ये क्या कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं गाड़ियां। पहले तो 1-2 बातें थी, आज हमारे पास 15 से 20 डेड बॉडी पर डे की एवरेज है अभी भी। बस यही सब करते करते भाई साहब हमें ईश्वर ने देश के लिए,
1: आप चाहती तो आपको राह मिल ही गई। और मैं समझता हूँ चाहने वालों को ही राह दिखता भी और मिलता भी और उनको सफलता भी मिलती है। लेकिन शंटी जी, यहाँ पर मैं ना एक और बहुत अनोखी बात जो हमारे श्रोता साथियों को शायद पता नहीं होगा कहना चाहूंगा कि शंटी जी को, हमारे प्यारे भ्राता शंटी जी को बहुत लोकप्रियता के साथ डोनर सिंह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप वो सिख हैं जिन्होंने 100 बार से भी ज्यादा ब्लड डोनेट किया हुआ है, इसलिए आपका नाम डोनर सिंह है। जहां बात आती है ब्लड डोनेशन की, कई लोग करते हैं कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन एक और ऐसा विषय है जिस पे मैं आपका भी और श्रोता साथियों का ध्यान खींचना चाहूंगा, वो है ऑर्गन डोनेशन का, जहां पर कई मरीज ऐसे हैं जिनका लंग्स या हार्ट या किडनी, लीवर आदि आदि, ये ट्रांसप्लांट करने के लिए लंबी कतार है वेटिंग लिस्ट की, लेकिन आज हमारे पास इतने डोनर्स नहीं हैं। ऑर्गन डोनेशन के विषय में, अंग दान के विषय में या रक्तदान के विषय में आपका क्या कहना है, आप क्या इस बारे में हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे?
0: देखिए, जब आया गुजरात में भूचाल तो मैं बचपन से ब्लड तो डोनेट करता था मैं, और पहली बार कैसे किया था ये बड़ा अजीब हादसा है कि मैं बैठा हुआ हूँ, मेरी मम्मी के पास एक आंटी जी आते हैं और कहते हैं कि मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन है कल, खून नहीं मिल रहा। तो मैंने कभी तब तक ब्लड डोनेट किया नहीं था, मैं 18-19 साल का था। तो मेरी माता जी कहती है मेरे बेटे को ले जाओ,
1: बहुत सहज भाव से।
0: और कुदरत का करिश्मा देखिए कि जो उनका ब्लड ग्रुप था एबी पॉजिटिव, मेरा भी वही, और उनका ऑपरेशन हो गया, वो ठीक हो गए। और वो जहां भी कहीं भी खड़े होते थे कॉलोनी में, आज भी हैं वो, ही इज लाइक, मैं आपको बात जो सुना रहा हूँ 30 साल पुराने से, वो एक ही बात बोलते थे कि मैं तो शंटी के खून से जिंदा हूँ। उस चीज ने हमें बहुत बढ़ावा दिया। मैं रेगुलर करने लगा, साल में 4 बार 5 बार जहां भी मौका लगता था। मुझे तो पता भी नहीं लगा 2019 में मुझे नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल से फोन आया और दिल्ली स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल से कि आपकी सेंचुरी हो गई है और आपको हम डोनर सिंह का अवार्ड दे रहे हैं।
1: बहुत
0: फिर वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड वाले आ गए मेरे पास, उन्होंने मेरा नाम छापा उसमें। तो वो एक परमात्मा ने एक सिला बना दिया कि हमने एक शुरुआत की थी। और दूसरी बात आपने की बॉडी डोनेशन की, देखिए मैं अक्सर एक बात कहता आया हूं कि पशु पंछी वो भी अपने लिए नहीं जीते,
1: बिल्कुल
0: कहीं ना कहीं काम आते हैं। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब ने तो लिखा है कि पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे कछु काम ना होए। इंसान मरेगा जला देंगे दफना देंगे, और पशु मरेगा पंछी मरेगा, किसी के पंख काम आ रहे हैं, किसी के बाल काम आ रहे हैं, किसी की हड्डियां काम आ रही हैं, किसी की आंखें काम आ रही हैं, किसी के नाखून काम आ रहे हैं। एक हम ही ऐसे हैं जो कहीं काम नहीं आ रहे, सारी जिंदगी एक वृक्ष नहीं लगाते हम, और जाते जाते 4 क्विंटल लकड़ी और ले जाते हैं, पर्यावरण का और हम सत्यानाश करते जाते। तो कुछ लोगों ने प्रयास किया इसके लिए, दिल्ली में माननीय आलोक जी, आलोक कुमार जी, उन्होंने एक दधीची के नाम से संस्था बनाई, मेरे को याद है 25 साल हो चुके हैं इस बात, और उन्होंने बॉडी डोनेशन के लिए काफी प्रयास भी किया, यहां तक कि बड़े बड़े

0: कि उन्होंने बॉडी डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट हुई भी, माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उनकी माता जी का हुआ था, ऐसे हम भी फॉर्म भरवाते हैं उसके, लेकिन प्रशासनिक अवेयरनेस नहीं है इसमें, ये बात बोलूं मैं आपको। और जैसे ब्लड डोनेशन की बात में आ जाए, इसके लिए भी अवेयरनेस नहीं है। इस पर सरकारों को और प्रशासन को प्रचार करना चाहिए, सेलिब्रिटीज से प्रचार कराना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल, बहुत पोलियो था हमारे देश में, लेकिन लोग दवाई लेने नहीं जाते थे, बच्चों को वो दो बूंद पिलाना नहीं
1: था, दो बूंद
0: बिल्कुल,
1: हाँ जी
0: दो बूंद ऐसे बोला बस, सब चल दिए लेके बच्चे को। तो अगर ऐसी कोई सेलिब्रिटी बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो 18 से 60-62 साल के बीच में आए और 50 किलो से ज्यादा वजन है और हीमोग्लोबिन उसका 13 से ऊपर है, साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है, तो लोग ब्लड देने भी आ जाएंगे। और मैंने ये बात दूसरे तरीके से भी उठाई, क्योंकि मैं दिल्ली स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल का मेंबर भी रहा हूं 12-13 साल। हर मीटिंग में मैंने बात उठाई कि जो इंसान रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहा है उसको प्रशासन भी तो कुछ सेवा दे।
1: बिल्कुल,
0: अगर किसी ने 25 बार दिया है उसे आप सिल्वर मेडल दीजिए और उसको बोलिए जी आप,
2: जी हाँ, जिसको रिकॉग्निशन मिलता है उसको ये प्रेरणा भी मिलती है कि मैं थोड़ा और कुछ करूं, है ना, मतलब प्रोत्साहन से प्रेरणा भी मिलती है। जी
0: बिल्कुल, उसको बस की टिकट फ्री कर दीजिए ना
2: जी,
0: 50 बार दे उसको बोलो तेरी ट्रेन की टिकट फ्री है, कितनी बार चला जाएगा, साल में एक बार चला जाएगा, दो बार, और जो सेंचुरी करे उसको आप प्लेन की दे दीजिए, मच जाए भले, वो ऑनर देने वाली बात है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो उसमें प्रशासनिक अवेयरनेस नहीं है हमारे देश में। देश में बोलूं तो कई जगह है, केरल में है, आसाम में है, तमिलनाडु में है, इन स्टेट्स द्वारा जहाँ पे 100% डोनेट।
2: भाई साहब, जैसे आपने जिन स्टेट्स के नाम लिए, जिन राज्यों के नाम लिए, वो उन राज्यों में अगर देखा जाए तो शिक्षा का दर बहुत ज्यादा है, एजुकेशन इज क्वाइट हाई देयर। तो कहीं ना कहीं क्या ये एजुकेशन में नहीं आ जाता कि अगर मान लीजिए बच्चों को बचपन से ही ये शिक्षा दी जाए कि रक्तदान करना या अंग दान करना ये कोई स्टिग्मा नहीं है, इसमें तो बहुत गर्व महसूस करना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करना, अपने बड़ों का सम्मान करना, इसमें कोई स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये शिक्षा में ही आ जाए तो हो सकता है यही बच्चे आगे चल करके एक बहुत बड़ा फोर्स बन सकते हैं इस मुहिम के लिए। आपका क्या कहना है?
0: बात नहीं आ रही, शिक्षा को, शिक्षा में कौन डालेगा?
2: अगेन प्रशासन, वेरी गुड,
0: बात नहीं आ रही है
2: जी।
0: इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ देश की हर सरकार को, हर स्टेट को, कि मैं बता रहा हूँ कि केरल में और आसाम में 100% डोनेशन है, 100% इन द सेंस अगर वहाँ पे 10,000 पेशेंट को ब्लड चाहिए तो 10,000 लोग देने वाले
2: देने वाले जी।
0: दिल्ली के अंदर मात्र 44% डोनेशन है, 44% राजधानी है, वो ब्लड डोनेट कर रहे लोग। तो ये अवेयरनेस हमें लानी पड़ेगी, ये गैप खत्म करना पड़ेगा, ये सोच के चले। तो मैं अक्सर हर जगह हर भाषण में बोलता हूँ, बच्चों को बहुत अवेयर करता हूँ ब्लड डोनेशन के लिए। कोई मुल्क ऐसा नहीं है, जापान जैसा भी, जिसने प्रोडक्शन ऑफ ब्लड किया हो, ब्लड दो जगह से मिलता है, या इंसान देता है या ईश्वर देता है, बीच में कोई माध्यम नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई जंतु नहीं है, कोई ऐसी चीज है। अगर पशुओं का और पंछियों का ब्लड चढ़ जाए तो बात क्या है, तो कमी ना पड़े। वो तो सड़कों पे और गलियों में बहा रहे हैं, नालियों में बहा रहे हैं। और इसके लिए मैंने एक स्लोगन तैयार किया था कई साल पहले, रक्त दाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता।
2: वाह, ये कितना सुंदर कहा आपने, रक्त दाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता। वही नहीं,
0: आप खून दे सकते हैं या ईश्वर, बीच में कोई माध्यम नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है। मैं डोनेशन के लिए, ब्लड के लिए, बॉडी डोनेशन के लिए सबको अवेयर करता हूं। और एक शुरुआत जो आलोक जी ने की थी दधीची नाम की संस्था से, ऐसे सबको आगे आना चाहिए, देश के कोने कोने में प्रचार करना चाहिए।
1: भाई साहब, जब आप ये बता रहे हो तो मुझे ये ख्याल आया बार बार कि आप जो सेवा कर रहे हैं, और वर्तमान समय एक बहुत बड़ा एग्जाम आया पूरे कंट्री के सामने, पूरे देश के सामने, लेकिन उस एग्जाम का सबसे टफ सवाल मैं समझता हूँ शायद आपने हल किया, क्योंकि डॉक्टर एक हद तक मदद कर रहे थे, बट उसके बाद उन लोगों का क्या जिन्होंने शरीर छोड़ा, उनके शरीर का दाह संस्कार करना, जहां पर लोग इन्फेक्शन के डर से एक दूसरे के नजदीक नहीं आ रहे थे, आइसोलेशन था, मतलब मैं समझता हूँ एक्चुअल डर ने सबसे ज्यादा तहलका मचाया था, कोविड से भी ज्यादा। तो ऐसे समय में जब आप और आपकी टीम वहां फील्ड पे खड़े होकर के लावारिस लाशों का या कोविड इन्फेक्टेड लाशों का जब दाह संस्कार करते थे, तो क्या आपकी टीम में या आपको डर नहीं लगता था?
0: देखिए, पहली बात तो जो डर बना, लोग खाली डर से नहीं मरे, लोग प्रशासनिक नाकामी से मरे। कई स्टेट्स में वहां की गवर्नमेंट प्रिपेयर नहीं थी। अब जैसे पहला आया 23 मार्च 2020 में, उसके बाद आया अप्रैल 2021 में
1: जी,
0: पहले वाले में कोरोना

0: वो डेथ रेट कम था ठीक। उसके बाद गैप मिल गया 10 महीने का, क्यों नहीं आपने इंतजाम किया। मैं आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में जा रहता हूँ, हॉस्पिटल ने बैनर लगा दिया वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल ने सबने की नो ऑक्सीजन नो एडमिशन। तो अब लोग घबराएंगे नहीं क्या?
1: बिल्कुल,
0: ऑक्सीजन लेवल लोगों का जा रहा नीचे 70, 60। अब ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने जा रहे हैं तो जो सिलेंडर 500 का था वो 10,000 का मिल रहा है, 20,000 का मिल रहा है, मुंह मांगे पैसे ले रहे हैं। कि मैं आपको राष्ट्रीय राजधानी की बात बता रहा हूँ, इसमें प्रशासनिक फेलियर हुआ है बिल्कुल। जो सेंटर ने मदद भी करी तो इन्होंने उस मदद को पहुंचाया नहीं जनता तक। सच बात है, पॉलिटिकल मैटर दिस इज ए सोशल मैटर, दिस इज जिम्मेदारी बनती थी। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एम्बुलेंसेस नहीं मिली, डेड बॉडी उठाने वाली शव वाहन नहीं मिले, 10,000 बस दिल्ली में खड़ी थी, सब कर्फ्यू लगे हुए थे, उसमें से 200-400 बसों की सीटें निकाल के उसको एम्बुलेंस बना देते, उसमें लाशें उठा लेते हैं, 4-4 दिन लोगों की लाशें घर पे पड़ी रही है जी, कुछ नहीं किया इन्होंने। वो डर जनता के बीच में बैठा, वो डर सेवा करने वालों के बीच में बैठा। क्यों? हॉस्पिटल में डॉक्टर टेक्नीशियन और नर्सेस ये भगवान के रूप में थे, उनके पास ग्लव्स नहीं थे, उनके पास सैनिटाइजर नहीं था, उनके पास पीपी किट नहीं थी, तो घबराहट तो अपने आप हो रही। उन्होंने सेवा करी, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ हॉस्पिटल्स थे और लैब वाले, इन्होंने जो कहर बचाया, जो गंदगी करी और देशद्रोही करी, द्रोहिता करी इन्होंने, कि जो पीपी किट 300-400 रुपए की होनी चाहिए, इन हॉस्पिटल वालों ने 7-7, 8-8 हजार रुपए की बिल में लगाई लोगों को। और एक हॉस्पिटल अगर 500 बेड का है, 700 बेड का है, और वहां 25-30 पेशेंट अगर आईसीयू में है, एक डॉक्टर चेक करने आता था, 25-30 लोग लेते हैं, सबके बिल में लगा देते थे 8,000 की। डॉक्टर साहब आए थे आपको देखने। कहर में सच्चा बता रहा हूँ आपको, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि हमने लाशें उठाई है वहां से। उसके बाद पहली बात तो जिस बीमारी का इलाज नहीं है, इन प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने पैकेज लेना शुरू कर दिया कि आप किसको कोविड है जी, और ये पैकेज 10 लाख का था और ये 12 दिन का होगा। तो कमरा 4,000 में कोई नहीं देता था, 3,000 में, उसके इन्होंने 15,000 रुपये लगाए, कहर बचा दिया जी। यहां भी सरकार फेल हुई, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने घोषणा करी कि हर हॉस्पिटल में एक नोडल ऑफिसर बैठाएंगे, बैठ गए नोडल ऑफिसर, कुछ नहीं किया उसने, एक हॉस्पिटल के ऊपर FIR नहीं हुई। यार जिस देश के अंदर एक मिठाई के साथ कोई डब्बा तोल दे तो उसको कैद है, पटाखे नहीं बेचने तो कैद है, बेचेगा कोई तो। इतना बड़ा देश के ऊपर विपत्ता आई है, गरीब से गरीब आदमी पड़ोसी की मदद कर रहा था, ये हॉस्पिटल वाले पैसे काट रहे थे, ये लैब वाले 400 रुपए वाला टेस्ट 10,000 रुपए कर रहे थे।
2: मतलब आपसे मुझे ये चीज की प्रेरणा मिल रही है कि हर चीज हमको प्रशासन के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि आपने अपने हाथों में कुछ चीजें उठाई, हर चीज के लिए हमको प्रशासन का राह नहीं देखना चाहिए, कहीं कहीं पर हमें खुद भी आगे बढ़कर के कदम उठाना चाहिए।
0: बाद में अपनाया
1: जी,
0: आप कहाँ से अपना लेते हैं? जो चीजें दिल्ली सरकार अवेलेबल नहीं कर सकी, मैं कहाँ से ले आता हूँ? वो सोची बात को, मैं जो ला सकता था लकड़ी मिली थी शमशान में, हमने लोगों से अपील की फेसबुक पे, हमने पैदा कर ली लकड़ी, 500 टन लकड़ी आ गई, बैनर लगा दिया, फ्री लकड़ी का लंगर लगा दिया। लेकिन जो
2: लकड़ी का लंगर, ये बहुत अच्छा है,
0: लंगर लगाया, मतलब लिटरली वह बात ढेर लग गया कि लोग हैरान होंगे इतनी लकड़ी कहाँ से आ गई
1: जी।
0: क्योंकि मेरी सोच ये कहती थी कि जो हमारे शमशान तक आ रहा है, पहले वो हॉस्पिटल में लुट गया, खूब लुटा हॉस्पिटल
1: जी,
0: फिर वो मोर्चरी में गया, वहां से मोर्चरी से शमशान लाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, 50,000 रुपए में 1,000 वहां भी लुट गया। अब मुझे लगता है कि जो शमशान में आया इसकी जेब में पैसे नहीं होंगे कि लकड़ी खरीद ले, तो क्यों ना हम उनको सेवा प्रोवाइड करें। हमने उनको वहां लंच, ब्रेकफास्ट सब इंतजाम कर दिया, उस शमशान घाट को एक धार्मिक स्थान का रूप दिया गया, और लोग बड़े खुश हुए जी। किसी से कोई एक रुपया फालतू नहीं लूटा किसी ने, काम हुआ बड़ा। 4,200 डेड बॉडी एक महीने में, मजाक नहीं है। लेकिन प्रशासनिक फेलियर के कारण मौतें हुई नागरिकों की, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, यहां तक मेरे भी 2 ड्राइवर चले गए, हम भी मरते मरते बचे। लेकिन हमने तो कसम खाई थी, लोग मुझे डराते थे कि शंटी जी आप मौत से खेल रहे हैं। मैं एक ही जवाब देता था कि देखिए हम एक मिलिट्री की तरह काम कर रहे हैं, विदाउट एनी इंटरेस्ट। 27 साल में शहीद भगत सिंह सेवा दल ने ना दिल्ली सरकार से ना भारत सरकार से ग्रांट नहीं लिया।
2: क्या बात है, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा
0: रुपया भी ग्रांट नहीं लिया। और इसीलिए मैं ठोक के बोलता था, जब हॉस्पिटल वाले बेईमानी करते थे तो मैं उनकी लाश लाता था, लाशें रोक ली इन्होंने। 2017 में एक चार्टर आया था सुप्रीम कोर्ट में कि आप किसी की डेड बॉडी को रोक नहीं सकते हॉस्पिटल वाले, लेकिन उन्होंने रोकी। हमने लड़ भड़ के दिलवाई वो लाशें, और अब मैंने माननीय अपील भी करी हुई है गृहमंत्री जी से, इन सभी हॉस्पिटल वालों की जांच कराई जाए, इनके ऑडिट कराई जाए कि पिछले 30 साल में इनकी सालाना इनकम कितनी थी और पिछले 3 साल में कितनी हुई है, और अगर वो पैसा सारा नाजायज है उस पैसे को प्रधानमंत्री राहत कोष में डाला जाए, क्योंकि ये आज अगर हमारा देश खड़ा है ना और लोग बच रहे हैं चौथी लहर में तीसरी लहर में, तो वैक्सीनेशन की वजह से, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वैक्सीनेशन लेके आए और 150 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा दिया है सबके सामने है। तो मैं एक ही बात कहूंगा इसमें, कहीं भी जो मौतें हुई हैं कोविड के अंदर वो लापरवाही की वजह से हुई है, समाज ने बहुत साथ दिया, प्रशासनिक लापरवाही कई कई स्टेट्स में रही, यही है कारण।
2: वैक्सीनेशन से तो कईयों के अंदर बल आया, मनोबल भी आया कि भाई हम जा सकते हैं, कुछ काम और भी कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। एक होता है शारीरिक वैक्सीनेशन जिससे शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, लेकिन एक है मानसिक इम्यूनिटी भी, मतलब मन को। ऐसा कौन सा वैक्सीन आपने लगाया था अपने मन को कि आप रोज उठ करके जाते थे, रोज सेवा करते थे, तो कौन सा मन का वैक्सीन आपने लगाया था?
0: हमारी जो कम्युनिटी है ना,
2: हाँ जी,
0: हम वंश हैं गुरु गोविंद सिंह जी,
2: जी
0: जिन्होंने अपने पिता को कहा था कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी आप जान भी दे दीजिए, और उन्होंने शहादत दी चांदनी चौक में, और गुरु गोविंद सिंह जी की जो कुर्बानी, पूरा परिवार उन्होंने वंश देश के लिए वारा
2: जी,
0: बच्चे चारों साहबजादे
2: जी, जी,
0: बात नहीं जी, अपने आप को माता पिता सब चले गए, हम उसी वंश से, और देश के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई, अगर हम सो जाते घर में तो ना मैं देश माफ करता, ना मैं वंश माफ करता, ना मैं परिवार, और ना हम अपने आप को माफ कर सकते थे। इसलिए मैंने सबको एक ही बात कही कि देखिए मौत तो निश्चित है, घर पे भी आ रही है लोगों को, लेकिन हमारी कर्म भूमि क्या है, एक मिलिट्री वाला लड़ाई लड़ गया दो देशों की और घर में सो के मर गया तो शहीद नहीं कहलाएगा,
2: बिल्कुल
0: उसको तो सीमा पे लड़ना पड़ेगा। तो हम अगर मौत आनी है ना तो शमशान में आ जाए, लड़ेंगे हम पूरे डट के लड़ेंगे, लड़े डट के दो बार जाते जाते बच भी गए, मेरे बेटे ज्योतजीत सिंह छोटे वाले हैं जो लंदन से मास्टर करके आए हैं, उनको भी बहुत सीरियस हो गए आईसीयू में, बड़े बेटे को भी हो गया, मनीष को, मिसिस को भी हो गया, ड्राइवर भी मर गए, लेकिन शक्ति दी ऊपर वाले ने। जब मैं ठीक होकर निकल के आया तो बहुत एम्बुलेंसेज और प्रशासनिक और पुलिस ने हमारा स्वागत किया, बहुत काम हमारा रेगुलर चल रहा था
2: जी।
0: तो मीडिया ने मेरे से क्वेश्चन किया कि शांति जी अब आपका जज्बा बढ़ गया या कम हुआ है, अब तो कोरोना भी हो गया, अब डेथ बेड से आए हो, तो मुझे, मैंने उनको कहा कि मुझे एक बात याद आ रही है कि जब करगिल की लड़ाई हुई तो एक जवान की आंख में गोली लगी थी, तो मीडिया वाले ने उनसे क्वेश्चन किया था कि आंख चली गई आप, अब आपका जज्बा बढ़ा है या कम हुआ है, तो उसके जवाब ने जो ना मुझे खुश कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं दुश्मन को एक आंख बंद करके गोली मारता था, अब तो परमानेंट बंद होगी, अब टिका टिका के।
2: ये बहुत अच्छा था।
0: तो हमारे साथ भी वही हुआ
2: जी,
0: कि हमारा हौसला और बुलंद हो गया कि मर के बच के आ गए।
2: साथियों, अगर एक व्यक्ति का एक वाक्य किसी और व्यक्ति में इतना बल भर देता है कि वो अपने जीवन को कई लाखों लोगों तक सेवा पहुंचाने का माध्यम बना देता है, तो आज के हमारे एपिसोड में शांति जी ने तो मुझ में और आप में कितना बल और प्रेरणा भरा है, सोचने की बात है। इसलिए मैं आपको एक और मौका देना चाहूंगा शांति जी के साथ मिलने के लिए अगले एपिसोड में हमारे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा, यशस्वी भारत कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। मैं आरजे शांतनु आपका इंतजार करूंगा हमारे अगले एपिसोड में, रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स, एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स, each cell is connected to at least 10,000 more cells in

0: body. 10,000 crore cells in the brain into 10,000. This is the human network. So many switches connected to so many switches. अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा. तो जब ब्रेन में 10,000 करोर सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है. ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे. अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर. उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में। तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सकल

0: ऑर्गन्स, मन बुद्धि संस्कार, लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर आरजे संजय। आप सुन रहे हो रेडियो बुंदेली आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाएं के तीसरे अध्याय में। आज हम जानेंगे वेणु माधुरी, वह अद्भुत कला जिसने श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुरता ने संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित कर लिया। जब वज्र के बाल गोपियां और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उस स्वर को सुनते तो वे सब अपने अपने कार्य भूलकर केवल उस दिव्य धुन में लीन हो जाते। कहा जाता है कि बांसुरी की तान में ऐसा आकर्षण था कि यमुना की लहरें भी थम जाती है, वृक्षों के पत्ते भी स्थिर हो जाते। वेणु माधुरी केवल संगीत नहीं थी, यह प्रेम और भक्ति का ऐसा माध्यम था जिसने जीवन मात्र को श्री कृष्ण के सानिध्य में बांध दिया। यह कला हमें सिखाती है कि सच्चा संगीत केवल कानों को नहीं आत्मा को भी स्पर्श करता है। तो दोस्तों, सुनते हैं कि प्यारा सा श्री कृष्ण का गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कृष्णा की बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं थी, वह उनके हृदय की करुणा और प्रेम की ध्वनि थी। जब भी बांसुरी बजती, वृंदावन की गोपियाँ अपने सारे काम छोड़कर दौड़ पड़ती, गाय चरना भूल जाती, यमुना की लहरें थम जाती और पक्षी भी मौन हो जाते। यह बांसुरी केवल संगीत नहीं थी बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम था। आज के इस कथा अंश में हम अनुभव करेंगे वही वेणु माधुरी जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को श्री कृष्ण के प्रेम को बांध दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं हम अगला दूसरा प्यारा गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सुपर आर जे संजय। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। श्रोताओ, भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो हर गोपी को लगता था कि यह स्वर केवल उसके लिए है। राधा तो इस तान में इतनी डूब जाती कि सांसारिक भानी भूल जाती। कृष्ण की बांसुरी ने वृंदावन को प्रेम और भक्ति का केंद्र बना दिया। ये लीला हमें बताती है कि ईश्वर हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं। उनकी धुन केवल संगीत नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं हम एक प्यारा सा सुंदर गीत।

जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वेणु माधुरी हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने अहंकार को खाली कर देते हैं तो हम स्वयं बांसुरी बन जाते हैं और ईश्वर की ध्वनि हम में घुलती है। बांसुरी का अर्थ है शून्यता। जैसे बांसुरी खोखली होती है, वैसे ही हमें अपने भीतर से अहंकार और मोह को निकाल देना चाहिए, तभी ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में प्रवाहित होता है। यह लीला हमें यह संदेश देती है कि भक्ति केवल बाहरी अंडरवर नहीं बल्कि भीतरता की निर्मलता है। जब मन शून्य होता है तभी उसमें दिव्यता का स्वर गूंजता है। तो दोस्तों, सुनते हैं और एक प्यारा सा सुंदर गीत।

जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वेणु कर गृही वंशी मधुर ध्वनिनम, अर्थात कृष्ण की बांसुरी का स्वर इतना सुंदर और मधुर है कि वह आत्मा को भी मोहित कर लेता है। ये श्लोक हमें बताता है कि कृष्ण की बांसुरी केवल ध्वनि नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का दिव्य संदेश है। उसकी तान में ऐसा आकर्षण है कि जीव मात्र अपने अहंकार और मोह को भूलकर केवल ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाता है। यही है श्री कृष्ण की वेणु माधुरी, जहाँ संगीत साधना बन जाता है और साधना ईश्वर से मिलन का मार्ग है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर गीत।

ये कला हमें सिखाती है कि जब हम अपने भीतर से अहंकार को निकाल दें, तो हम भी ईश्वर की बांसुरी बन सकते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे श्री कृष्ण की चौथी कला प्रीत माधुरी, यानी उनके प्रेम की मधुरता। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण। तो सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बात।

0: अहो ऐकलत का?
1: हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी।

ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। जहां खुशी की बात कर रहे थे तो एक बात जो हमारे सामने आई थी वो ये कि जब तक अपनी सही पहचान नहीं होगी, जहां तक मैं ये शरीर थी तब तक मेरी सारी चीजें इससे जुड़ गई थी, चाहे वो परफेक्शन की बात थी, चाहे मेरी खुशी की बात थी, चाहे मेरी अचीवमेंट्स की बात थी। लेकिन यहां जहां मैंने थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट किया, अगर हम आपको पिछली कड़ी याद दिलाए तो बात यहां तक आई थी कि क्या मैं दिन भर ये मान के चल सकता हूं कि जो ड्रेस मैंने पहनी है वो मैं हूं। अगर ये ड्रेस जो मैं हूं ये मैं बन जाऊंगा तो फिर मेरी पूरी की पूरी जो एनर्जी थी, जो कॉन्सेंट्रेशन थी, वो इस ड्रेस पर थी। तो बात यहां पर आई थी असली पहचान की कि मैं वो चैतन्य शक्ति, वो कॉन्शियस बीइंग हूं, ये पता चल जाए और कंटिन्यूस रिमेम्बरेंस रहे तो आगे बात बढ़ाएंगे। पता चल गया, समझ में भी आ रही है, और जब हम बार बार ये कह रहे थे कि उससे क्या फर्क पड़ता है ये भी दिखा। अब कंटिन्यूस रिमेम्बर कैसे करना है, लगातार याद कैसे रखना है, इस पर भी बात करेंगे। और हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जहां हम बात यहां पर आए थे कि मैं वो चैतन्य शक्ति हूं, हमने ये कहा था कि क्या फर्क पड़ता है अगर हम ये भी मान लें कि मैं यही हूं। तो जिस तरह की बात की थी उसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब इस कड़ी में यहां बैठकर बात करते हैं बिल्कुल क्लियर लगता है, लेकिन बाहर निकलते ही वो सारी बातें जो हैं, जो जिन पर मैं अभी तक जी रहा था, वो फिर लौटती हैं। तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, जस्ट वॉन्ट टू रिवाइव दैट।
1: सी द प्रायोरिटी गेट सेट। मैं कौन, मेरा क्या क्या, जैसे हमने शुरू में भी देखा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज औरों के प्रति, परिवार के प्रति, काम के प्रति, लेकिन मेरे प्रति। तो जब हम कह रहे थे मेरे प्रति, तब हमने देखा कि कई बार आया, हाँ मेरे प्रति भी तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता ना, मैं अपने शरीर का

0: ध्यान रखते, अपने शरीर का ध्यान रखता, बट आई लुक आफ्टर द बॉडी. सो आई थॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंडेड विद लुकिंग आफ्टर द बॉडी बिकॉज आई थॉट हु एम आई एम द बॉडी. बट बिकॉज आई डिंट नो कि मैं ये चैतन्य शक्ति, आई एम दिस कॉन्शियंट बींग, आई नेवर पुट दैट इन द लिस्ट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, द माइंड, द इंटेलेक्ट, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, ये नहीं सोचा. सारा जैसे ही हमने देखो कितनी सारी बातें चेंज होंगी. मैं एनर्जी हूं तो मृत्यु किसकी होगी? हो विल डाई, शरीर की डाई. फियर ऑफ डेथ विल फिनिश. यू नो दिस इज जस्ट अ थॉट राइट नाउ, हमें सिर्फ लग रहा है हाँ फियर ऑफ डेथ फिनिश्ड. लेकिन जिस आत्मा से फियर ऑफ डेथ निकल जाता है उनको जीवन में कोई और बात का डर नहीं लगता है. व्हेन यू टॉकिंग ऑफ निर्भय जीवन, फियरलेस लाइफ, वो वही एक्सपीरियंस कर सकता है जिसको डेथ का डर नहीं हो. और डेथ का डर अपनी डेथ का डर नहीं है, फैमिली की किसी
1: यार एक बात में जोड़ना चाहूंगी कि आज जिस स्थिति में है ना लोग, वो डेथ को आत्मसात करने को तैयार है, यू नो मे बी पेन के कारण. बट देन राइट नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज इवन लाइक फॉरगेट अबाउट द एज, ये नहीं कह रही मैं कि बुजुर्ग ही ये मान रहे हैं, आज बहुत कम एज से भी लोग अपने जीवन की इम्पोर्टेंस को खत्म ही करते जा रहे हैं.
0: लेकिन वो क्योंकि अपने आप को ही नहीं जानते. हाँ. तो अपनी इम्पोर्टेंस क्या जानेंगे? अगर अपने आप को सिर्फ क्वालिफिकेशन और पोजीशन ही समझा तब तो मार्क्स के लिए सुसाइड किया ना. क्यों किया? जस्ट बिकॉज मेरे मार्क्स उतने नहीं आए, आई हैड नो वैल्यू फॉर माई लाइफ बिकॉज आई थॉट लाइफ वॉज ऑल अबाउट ओनली परफॉर्मेंस, अचीवमेंट, फिजिकल लुक्स, पोजेशन. तो वो सारे क्राइटेरिया जहां फुलफिल थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे थे, so what happened? We said I don't want to live. Relationships में मैंने समझा मैं कौन. आज बहुत सारे लोग emails लिखते तो वो कहते you know मेरा ये relationship workout नहीं हुआ, I don't want to live. So death is still not you know accepted कि हाँ भले कभी भी. तो वो लगता है क्योंकि we are fed up of life कि you know nothing is working out, success नहीं आ रही है. लेकिन ये सारी चीजों का perspective change हो जाएगा जब success भी समझ में आ जाएगा. मेरी success, not मेरी success, वो definition change हो जाएगी. My whole purpose of life will change. जब मैंने ये समझा कि I am the body, तब मैंने समझा जीवन कितना है. यहां से इतने span में मुझे सब कुछ अचीव कर लेना है और जल्दी जल्दी करना है. That's where the belief came कि life is a competition. Everyone is in the race क्योंकि हर एक ने सोचा इतने से इतना टाइम है, सभी ने रेस में भागना है. जो करना है अभी करो.
1: क्योंकि जगह भी उतनी है, उतने ही लोग हैं, तो मुझे मतलब जो ज्यादा यू नो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो था.
0: सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी जब हमने बोला तो फिटेस्ट क्या? क्योंकि हमने सोचा दिस इज हु आई एम, पोजिशन इज हु आई एम. तो फिटेस्ट कौन है? जो ज्यादा फिजिकली हेल्दी है, जिसके पास ज्यादा धन है, पोजिशन है, वो फिटेस्ट है. भले वो इमोशनली बिल्कुल कमजोर हो, वो फिटेस्ट. तो उसको फिटेस्ट बनाने के लिए, सक्सेस को उस मात्रा में अचीव करने के लिए हम गलत भी करने के लिए तैयार हो गए, हम अनएथिकल मेजर्स भी यूज करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि हमने सोचा इतने स्पैन में सब कुछ अचीव करना है. फिर हमने अपने आप को ये समझा तो हमने एक दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू किया कि बेटर वो है जिसके पास ज्यादा चीजें हैं, जो ज्यादा शारीरिक सुंदर है, बेटर वो है. ये फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यूज किसके पास ज्यादा है. तो सारा पर्सपेक्टिव ही तो चेंज हो गया क्योंकि मैं कौन हूं कि डेफिनेशन चेंज हो गई, सारा कुछ चेंज हो गया.
1: वैल्यूज की वैल्यू ही नहीं है.
0: आई डिड अ प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन एंड वो इतने स्वीट से छोटे छोटे बच्चे, और हमने टॉपिक लिया, दे गेव द टॉपिक, हा डज ऑनेस्टी वर्क इन टूडेज टाइम, एंड द क्वेश्चन फ्रॉम द चिल्ड्रन वॉज कैन अ ऑनेस्ट पर्सन बी सक्सेसफुल. मतलब वो भी एक क्वेश्चन मार्क था कि कैन अ ऑनेस्ट पर्सन बी सक्सेसफुल.
1: सब्जेक्ट वी आर कवरिंग,
0: और ये सब्जेक्ट उन्होंने ही दिया तो, लेकिन बहुत छोटे छोटे, एंड चिल्ड्रन कैन बी मोल्डेड वेरी इजिली. तो हमने उनसे ऐसे करते गए, आधे पौने घंटे के अंदर दे सेड येस वी प्रोमिस वी विल बी ऑनेस्ट इन ऑल दोज थिंग्स. वो चले गए अपनी क्लास में. टीचर्स आकर बाद में बोलते हैं क्या फायदा है ये सब उनको सिखाने का, बट ऑनेस्टी रियली डजेंट वर्क इन डे टू डे लाइफ. आई सेड देन लेट्स गो बैक टू देम एंड टेल देम दैट, यू नो लेट्स गो एंड टेल देम कि ऑनेस्टी डजेंट वर्क, डिसऑनेस्टी चलती है. फिर देन दे से वो थोड़ी कर सकते हैं, उनको तो यही बोलना. आई मीन वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, वी डोंट नो. एंड यही आप सोचो कि जो हम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे हम पेरेंट्स हैं, चाहे हम टीचर्स हैं, जो हम बच्चों को वैल्यू सिखा रहे हैं, अगर

0: back of my mind, I don't believe in it. What will I choose?
1: It's of no use.
0: I shared with those teachers. I said, agar aap class mein jaakar bol bhi rahe ho, believe it before. Why not believe it? They said, nahi ji, practical mein to नहीं चलता है. और फिर अगर आपकी अंदर की सोच है कि प्रैक्टिकल में ऑनेस्टी वर्क नहीं करती, आप कितना भी जाकर वो बच्चों को समझाओ, एक तो आपकी सोच की वो वाइब्रेशन, सी दैट्स वेयर वाइब्रेशन प्लेज सच अ बिग रोल, आपकी वो कन्विक्शन ही नहीं जाएगी, आपकी वाइब्रेशन नहीं जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी.
1: तभी तो बच्चे डिसऑनेस्ट होके फिर आते हैं, फिर हम कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, आप डिसऑनेस्ट हो.
0: दैट वॉज द थिंग. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एंड वाई इज ऑल दिस हैपनिंग, क्योंकि आई डोंट माइंड कि मैं झूठ बोल लूं, लेकिन मुझे मटेरियलिस्टिकली अचीव करना है. और फिर वो यही कहते, सभी का एक कॉमन बिलीफ था कि जो ऑनेस्ट होता है उसको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जो दूसरे तरह के मेजर्स यूज करते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी सक्सेस. तो सक्सेस क्या? मटेरियलिस्टिक. क्यों? मैं कौन हूं? मैं शरीर. शरीर को जितने कंफर्ट्स मिले उतना मैं कंफर्टेबल. व्हाट वी डिडंट अंडरस्टैंड कि हम जितनी बार झूठ बोलेंगे, जितनी बार हम अनएथिकल मेजर्स यूज करेंगे, हम अपने लिए यहां पीसलेसनेस क्रिएट कर रहे हैं. इसलिए शांति ढूंढनी पड़ रही है.
1: यू नो अनदर वेरी स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम जस्ट कम टू मी, केम टू माई माइंड इज कि झूठ बोल दो, डिसऑनेस्ट हो जाओ, पकड़े नहीं जाना चाहिए. यू नो वो आपकी एक्सपर्टीज है. यू नो समवेयर ये एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है.
0: झूठ बोलना दूसरे ने नहीं पकड़ना है, पकड़े पहले हम यहां जाते हैं. जो हम कितनी बार बोलते ना कि यहां क्यों वो क्लटर हो रहा है, क्यों वो ब्लॉकेज हो रहा है, हम यहां पकड़े जाते हैं. जैसे ही वी हैव डन समथिंग विच इज अगेंस्ट माई ओरिजिनल नेचर ऑफ ऑनेस्टी, यहां आई हैव क्रिएटेड. भले हम उसको दबा देते हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन यहां क्रिएट हो गया. और जब एनर्जी गलत गई, रिजल्ट उसका कभी पॉजिटिव. हाँ, वो वाला रिजल्ट आ जाएगा, आप जो सोच रहे हैं वो वाला रिजल्ट आएगा, लेकिन साथ साथ ये भी आएगा. अब जब मुझे ये पर्सपेक्टिव मिला कि ये सब कुछ मेरा है, ये मैं हूं, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? किसका ध्यान रखना? अपना ध्यान रखना. तो फिर मैं ये प्राप्त करने के लिए इसको यहां तकलीफ नहीं दूंगा. एंड दैट्स व्हेन एवरीथिंग विल चेंज. आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माय वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स टू गेट मटेरियलिस्टिक सक्सेस.
1: सो दैट्स मी.
0: दैट्स मी.
1: दैट्स मी. यू नो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड.
0: क्या आपको अगर आज पता चले कि आपको ये अचीव करना है, उसके लिए आपको अपने हाथ पैर काट के देने पड़ेंगे, आप दे देंगे? यहां कोई बात नहीं, मुझे मर्सिडीज तो मिल जाए, मुझे एक बड़ा सा बंगलो मिल जाए, कोई बात नहीं, मैं अपना एक हाथ काट के दे दूंगा, आप देंगे अपना हाथ? नहीं, ये मैं हूं. यू नो ये मैं हूं. तो ये नहीं कटना चाहिए, यहां कुछ काट के देना. ओ एक मिनट भी नहीं लगेगा आज झूठ बोल, क्योंकि ये मैं हूं. Everything is based on this one illusion. और ये एक belief system जिस दिन really आपको समझ में आया और आपने इसको change किया, आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है. कई बार कई लोग कहते हैं उस time सोचना पड़ता है, सच बोले या झूठ बोले. You know that is also a conflict. But जहां focus right है कि ये मैं हूं, आपके पास दो thought नहीं आते हैं कि ये बोलू या ये बोलू, ये ही बोलना है सच, चाहे उसका कोई भी रेपरकशन होने वाला है. बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू डर्टी माई सेल्फ.
1: आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. आई यू नो माई इननेट वैल्यूज जो है, जो मैं हूं वो तो. और एक्चुअली अगर हमें ये रियलाइजेशन, बेसिकली वही बात है, जिस दिन हमारे अंदर ये रियलाइजेशन हो गया, ये रिमेम्बरेंस रह गई, तब मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा.
0: बिल्कुल. क्योंकि आपको जब समझ में आ गया, देखो हमें पता है, हमें आज तक ये सोच के चल रहे थे कि मैं शरीर हूं, तो इसका ध्यान रखते हैं ना? रखते हैं ना हमेशा, हर चीज क्या हो रही. एक्चुअली सब कुछ हो किस लिए रहा है? सारा कुछ जो अर्न करना है, प्राप्त करना है, वो किसके लिए है? इसके कंफर्ट के लिए है. नेवर माइंड कि मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ.
1: आई थिंक देन हमें अपने आदर्शों पर चलने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी.
0: वही बोल रहे हो ना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्वेश्चन नहीं है उसमें कोई भी. इट्स नेचुरल. इट इज आई मीन व्हाई वुड वी नीड टू स्टॉप एंड थिंक कि ये करो या नहीं करो. मेरा सारा धन चला जाए, मेरी सारी प्रॉपर्टी चली जाए, जो जाना
1: That's
0: है.
1: दैट इम्पोर्टेंट. यू नो दैट इज नॉट रिमेन इम्पोर्टेंट एक्चुअली.
0: प्रायोरिटी राइट हो जाए.
1: तो आज जो बहुत बार लोग अपने आदर्शों पर खड़े हुए हैं, वो पेन में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं सक्सेसफुल हुआ तो हूं नहीं, मैं खड़ा रहा अपने आदर्शों पर.
0: लेकिन ये सोच भी तो क्वेश्चन मार्क है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ. तो वो मैं बोलती हूँ, आई पर्सनली फील कि जो अपने वैल्यूज पर खड़ा हुआ, दैट इटसेल्फ इज सक्सेस. एंड उसकी सक्सेस की रिजल्ट वो ये है कि दैट सोल विल ऑलवेज बी पीसफुल, काम एंड कंफर्टेबल. एंड जहां तक मटीरियल

0: मटेरियलिस्टिक सक्सेस की बात आती, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल कि आप एथिक्स पर चलें और आपको मटेरियलिस्टिक सक्सेस नहीं मिलेगा। ये भी एक बिलीफ सिस्टम है, ये भी हमने कहीं ना कहीं जोड़ दिया है। हाँ, ये हो सकता है बहुत फास्ट और बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिले, लेकिन फाइनली ये नहीं होगा कि यू नो यू आर टोटली गॉन एंड आपके पास कुछ नहीं।
1: हम अवेयरनेस में यही है। आज मैं अपने आदर्शों पर चलने वाली बनू भी कि मैं सत्यता, मैं ऑनेस्टी, मैं इस पे रहूंगी, लेकिन मेरा ये बिलीफ सिस्टम तो है कि मैं हूं तो ये बॉडी ही, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट जरूर आता है कि मुझे सत्यता पर चलना है लेकिन मेरे नीड तो इन्हीं को फुलफिल करने
0: की, सक्सेस की
1: यही थी। तो जहां जिस दिन मेरा ये बिलीफ सिस्टम आ गया मेरे पास कि मैं वही हूं जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं, आई थिंक देन मेरा पेन खत्म हो जाएगा।
0: नेचुरल, क्योंकि फिर आप अभी पेन क्यों हो रहा है कि मैं ऑनेस्टली चला
1: लेकिन मुझे चाहिए तो वही,
0: हाँ मेरी प्रमोशन रुक गई या ये हो गया, यू नो ये सारी चीजें पर जहां ऑब्स्टेकल, या मेरी ट्रांसफर हो गई तो फिर मैं वैल्यूज पर था लेकिन मुझे सफर करना पड़ा। यू नो सफर किसको करना पड़ा? आपकी पोजिशन को सफर करना पड़ा, आपको सफर नहीं करना पड़ा। हाँ, आपको तब सफर करना पड़ता जब आपको फिर ये बात हर्ट होती जाती कि मेरी प्रमोशन रुक गई, वो मेरे से आगे निकल गए, क्योंकि अब हमने अपनी वैल्यू को छोड़कर हमने जेलसी क्रिएट करनी शुरू कर दिया। एंड दैट्स व्हाई वी सेड एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर, एवरीथिंग, तो सारा पर्सपेक्टिव नहीं चेंज हो जाएगा।
1: वेरी ट्रू। ना कुछ यू नो, अच्छा और होगा ये, उससे क्या होगा, जिस टाइम मैंने ये सोच लिया, एक तरफ अभी तक मैं ये सोच रहा था कि मैं सच्चाई पे खड़ा हूं, मैं ऑनेस्ट हूं, हाँ, और दूसरी तरफ ये हुआ तो जेलसी तो हुई डेफिनेटली, क्योंकि मैंने सोचा यही मुझे चाहिए था। जहां आई थिंक दिस वे नाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑल्सो वर्क, द मोमेंट आई से आई जस्ट वॉन्टेड दिस मच, प्रमोशन विल ऑल्सो कम
0: ऑटोमेटिक।
1: जहां मेरा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं,
0: जहां हर्ट नहीं क्रिएट हुआ ना, तो आपकी पॉजिटिविटी मेंटेन रही, और वही चाहिए था, पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स, सक्सेस जो भी चाहिए, मतलब जिसके लिए आप वो क्रिएट कर रहे थे, दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली। तो फिर सारा दिन में याद रखना इम्पोर्टेंट है कि
1: नाउ लेट्स ट्राई टू वेट एंड वॉच, यू नो कि अगर हम इस अवेयरनेस में रहते हैं, लेट्स सी हाउ आवर लाइफ चेंजेस,
0: एवरीथिंग विल चेंज, एवरीथिंग। एंड इसलिए आज दिन तक भी फिलोसफी में, रिलीजन में, हरेक ने यही कहा कि हु एम आई अगर आंसर हो गया तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स आंसर हो जाएंगे। सिर्फ छोटी सी जो बात हुई वो कहा कि हु एम आई आंसर होना बहुत मुश्किल है।
1: मैं इस पे एक्चुअली आना चाहती थी, आई जस्ट हैड अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन विद समबडी और उन्होंने मुझे इतनी लंबी बात ये कही कि मैंने बोला कि मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। ही सेड ये अगर इतना आसान होता ना, तुम ये आज यू नो सोच रही हो कि ये हो, बट ट्रूथ इज एब्सोल्यूट, यू नो इट वॉज सो कन्फ्यूजिंग सिस्टर शिवानी, एंड आई थिंक ही वॉज ऑल्सो नॉट वेरी क्लियर, तो ही सेड इट विल नेवर गेट आंसर, इट इज द ओनली क्वेश्चन विच डजंट गेट आंसर। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्यों
0: हु एम आई इज द ओनली क्वेश्चन हु डजंट गेट आंसर्ड। इवन जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट, मतलब हम पूरी अपनी जीवन जीने वाले हैं विदाउट नोइंग कि मैं कौन हूं, ये जीवन कैसे होगी। ये तो जैसे यू नो मूवीज में दिखाते हैं कि एक्टर को भूल गया कि वो कौन है, तो उसकी जीवन कैसी होती है, कंफ्यूज्ड, लॉस्ट, विदाउट पर्पस। ये दैट्स व्हाई आर लाइफ इज लाइक दैट, और इसलिए फिर हम बीच बीच में रुक कर कहते हैं व्हाई एम आई हियर,
1: मैं क्या कर रही हूँ, हाँ
0: बिकॉज व्हाई एम आई हियर, तो आई कौन है। अभी हम आई का आंसर देते मदर, बच्चे तो बड़े हो गए, सेट हो गए, व्हाई एम आई हियर, यू नो दैट्स व्हाई दिस आइडेंटिटी क्राइसिस कम्स। अब तो मैं रिटायर हो गया, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, क्योंकि मैं कौन था, प्रोफेशन वो तो खत्म हो गया,
1: फिर वो एक मेजर डिप्रेशन सेट इन होता है। यस,
0: सो मेनी थिंग्स आर गोइंग अप एंड डाउन ओनली बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग हु एम आई।
1: यू नो जिस दिन आपके हाथ से जॉब चला जाता है, जिस दिन कोई लव्ड वन चला जाता है, जिसको अपनी अपनी पूरा फोकस बनाया हुआ है, मतलब कितना कुछ अगर ऐसे चला जाता है, देन आपकी लाइफ का यू नो देन वी से कि हमें जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा।
0: क्योंकि जब हमारे ये अक्वायर्ड चीजों में कोई ना कोई चीज पर कुछ ऊपर नीचे होता, पोजीशन पर, तो हम कहते मेरे जीने का कोई,
1: पर अगर ये इतना आसान है तो हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया हुआ है?
0: दैट आई डोंट हैव एन आंसर कि हमने उसको को कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया, लेकिन ये आंसर है कि अब जब ज्ञान मिल जाता कि ये इतना सिंपल है, तो अब तो एटलीस्ट उसको हम स्टडी कर सकते। इतना कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कि इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आई एम अ सोल, वी से माय सोल, मेरी आत्मा, यू नो इतना इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि जैसे ही मैंने सोचा मैं शरीर हो, तो हमने आत्मा को क्या कहा, मेरी आत्मा, तो इट वेंट ऑल अप एंड डाउन, इट्स लाइक सेइंग मैं ड्रेस हूं, ये मेरी बॉडी है। दैट्स हाउ मच वी आर कन्फ्यूज। और फिर जब अगर आत्मा के बारे में सोचा

0: तो वी कनेक्टेड इट ओनली विद यू नो भूत प्रेत स्पिरिट ईरी, या जब कोई फ्यूनरल पर गए तो वी थिंक ऑफ आत्मा, सत्संग में गए आत्मा ओके समझ में आया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आए फिर मैं कौन हूँ? तो इट वॉज एवरीथिंग एल्स. सारा दिन में अगर हम चेक करें सब कुछ याद है एक्सेप्ट फॉर रिमेम्बरिंग
1: मैं कौन हूँ,
0: मैं वो आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, सारी लिस्ट याद आएगी लेकिन मैं आत्मा हूँ वो नहीं याद आएगा, तो फिर जीवन कैसी होगी? तो जो हम हर एक घंटे के बाद एक मिनट करते हैं वो एक्चुअली ये याद दिलाने के लिए करते अपने आप को, क्योंकि भले अभी समझ में आ गया है, नॉलेज भी है, लेकिन वो बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत डीप रूटेड संस्कार है. तो हर थोड़ी देर के बाद रुक के अपने आप को फिर से रिमाइंड करते इस शरीर का मालिक मैं वो आत्मा हूँ. इससे एक और चीज भी होती, मैं मालिक हूँ तो ये जो सेंस ऑर्गन्स है दिस ऑल कम्स बैक अंडर माय कंट्रोल. इट्स लाइक द ड्राइवर इज वेकिंग अप. यू नो एक गाड़ी चल रही है, ड्राइवर अंदर सो गया है तो गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी तो फिर भी चल रही है, गाड़ी चल रही है और वही हमारे जीवन की गाड़ी का हिसाब है, यात्रा पर चल रही है, ड्राइवर अंदर सोया हुआ है. एंड दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम इज अवेकनिंग. अवेकन दिस ड्राइवर विद इन, कि उठे और अपनी गाड़ी को संभाले, नहीं तो सारी गाड़ियां ऐसे चल रही है विद ड्राइवर्स ऑल स्लीपिंग एंड देन वी गो लाइक दिस. तो दिस जो कॉन्शियंट एनर्जी है ये समझने में, क्योंकि थोड़ा सा हमें यू नो लगता कि ये बहुत पता नहीं किस बारे में बात करे, तो ये बहुत सिंपल है कि जब मैं सोचने का काम करती हूँ, आई थिंक डज एनीबडी नीड प्रूफ कि मन है या नहीं है? एवरी वन नोज, एक बच्चे को भी पता है कि मन सोचता है. तो मैं आत्मा जब सोचने का काम करती हूँ इट्स द माइंड. वेन आई क्रिएट थॉट्स आई टेक अ डिसीशन ऑन इट इंटेलेक्ट, एंड जो डिसीशन मैंने लिया कर्म में आया, कोई भी कर्म बार बार रिपीट हुआ हैबिट संस्कार. तो हम क्या कहते हैं ये संस्कार, बहुत अच्छे संस्कारों वाली आत्मा है, कभी नहीं कहेंगे बहुत अच्छे संस्कारों वाला शरीर है. संस्कार किसके हैं? आत्मा के. तो मन बुद्धि संस्कार ये मैं आत्मा हूँ, कुछ और अजीब सी चीज तो है.
1: आई नो सो मेनी टाइम्स जब हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं, बड़े बूढ़े बहुत बार बोल रहे होते हैं कि ये बहुत संस्कारी आत्मा है, तो हमें मैं ये सोचती हूँ जब भी मैं बच्चे को उसको देखती थी पहले तो मैं कहती थी अच्छा कोई और चीज है, मतलब कोई एक ऐसा पोटली है जिसमें वो संस्कार भरे हुए हैं.
0: इट इज एनर्जी कि मैं क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स क्रिएट करती हूँ, कार्य करती हूँ, ये मैं आत्मा हूँ. क्यों वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती. तो जब ये सब कुछ पीछे रह जाएगा तो फाइनली साथ में क्या जाएगा? सिर्फ कर्म और वो कर्म से क्रिएट किए गए संस्कार. तो जीवन में चलते हुए कम से कम ये तो याद रखना पड़ेगा कि क्या पीछे रह जाएगा और क्या साथ में जाने वाले हैं. अब ये सारी बातें हम सुनते तो हैं, कब करते हैं, लेकिन जब हम किसी के फ्यूनरल पर जाते तो हमें तब याद आता कि यू नो, और जिसको हम कहते हैं शमशानी वैराग, कि उस टाइम वैराग्य आता है कि क्या सब कुछ तो रह जाएगा, यही लेकर जाना है. तो वैराग्य इन चीजों से नहीं करो, सब कुछ यूज करो, लेकिन सब कुछ यूज करते हुए ये तो याद रखना है कि क्या साथ में लेकर जाना है. उस टाइम याद नहीं है, फिर जब कोई कर्म का हिसाब किताब सामने आता तो कहेंगे हमें क्या याद, पास्ट में मैंने क्या किया है. इट्स अ कनेक्टेड
1: यू नो, एंड सो मेनी टाइम्स वी से मैं ये नहीं जानना चाहता, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा ना पास्ट, तो मेरे साथ अब ये क्यों हो रहा है.
0: तो अवेयरनेस के साथ चलेंगे, प्रेजेंट पर ध्यान देंगे तो प्रेजेंट अच्छा बनेगा ही बनेगा, और प्रेजेंट जहां अच्छा होगा वहां फ्यूचर अच्छा ही अच्छा है. और जब ये समझ में आता कि मैं ये कॉन्शियंट एनर्जी हूँ, तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये कॉन्शियंट एनर्जी की नेचर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है. हमारे आज बहुत सारे संस्कार बन चुके हैं, अक्वायर्ड हैं, क्योंकि कुछ संस्कार फैमिली से पेरेंट्स से मिलते, कुछ संस्कार एनवायरमेंट से बन जाते, हमारी नेशनैलिटी कास्ट किस स्कूल में हम जाते, कुछ संस्कार हम अपने विल पावर से क्रिएट कर सकते. यू नो हमने आज डिसाइड किया कि नहीं ऐसा नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट, वी कैन डू इट. हम अपने झूठ के संस्कार को कट करके ऑनेस्टी का संस्कार क्रिएट करते, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे अपने ओरिजिनल संस्कार, व्हाट इज द ओरिजिनल नेचर ऑफ दिस एनर्जी. तो आज हरेक को क्या चाहिए, हम इस पूरी सीरीज में भी क्या ढूंढते आए हैं, खुशी, हैप्पीनेस. सो एवरीबडी वॉन्ट्स हैप्पीनेस, लव, पीस, नॉलेज, पावर, प्योरिटी, ये चीजें चाहिए, शांति, खुशी, प्रेम. क्यों चाहिए?

0: कि ये मेरे संस्कार हैं, दिस इज माय ओरिजिनल नेचर, लेकिन आई एम नॉट बीइंग एबल टू एक्सपीरियंस इट टुडे, तो मुझे ये नहीं पता कि कहाँ ढूंढूं, बिकॉज मुझे नहीं ये पता कि मैं ये हूँ, तो मैंने उनको कहाँ ढूंढना शुरू कर दिया
1: चीजों में ना बेसिकली. अच्छा ये भी कह रहे हैं हम, यू नो, हम इतने मटेरियलिस्टिक बेसिकली, अगर ये पूरे सेंटेंस को भी देखें, हम कह रहे हैं हमें चाहिए, तो चाहिए में ऐसा लगता है कि मेरे को कोई पर्टिकुलर चीज पकड़ूंगी मैं जिससे मुझे खुशी मिल जाएगी.
0: एग्जैक्टली, क्योंकि मैं बॉडी हूँ ना, मैं बॉडी हूँ, तो खुशी किसको चाहिए? इसको चाहिए. इसको खुशी कब मिलेगी? जब इसको एक अच्छी गाड़ी मिलेगी, जब इसको एक अच्छा, तब इसको खुशी मिलेगी. लेकिन फिर हमने रियलाइज किया, गाड़ी तो आ गई, कंफर्ट मिला इसको, लेकिन खुशी नहीं मिली, क्योंकि खुशी इसको नहीं चाहिए थी, इसको कंफर्ट चाहिए. बॉडी नीड्स कंफर्ट, लेकिन इसको खुशी नहीं चाहिए क्योंकि डजंट फील. खुशी किसको चाहिए थी? यहाँ. वो हमें पता नहीं था, तो हमने कहाँ ढूंढा? बाहर ढूंढा. अब राजयोग हमें ये सिखाता कि ढूंढना नहीं है, इट इज माय ओरिजिनल नेचर, आई एम अ पीसफुल बीइंग. ओम शांति हमारा जो ग्रीटिंग है, दैट इटसेल्फ मींस आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ. आई एम अ लवफुल बीइंग, आई एम अ हैप्पी बीइंग, अ ब्लिसफुल बीइंग. हैप्पीनेस बाहर नहीं ढूंढनी है, कहीं से, किसी में, लोगों में नहीं. आई एम अ हैप्पी बीइंग, प्योर बीइंग, पावरफुल बीइंग. अब कल इस कॉन्शियसनेस के साथ काम पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने बारे में भी यही कॉन्शियसनेस, एंड
1: कि दूसरे के भी अपना इननेट उसका जो है संस्कार है उसका. इनफैक्ट अभी तक हम ये कहते थे कि जब हमें बड़े बूढ़े कहते थे कि बाहर नहीं मिलेगी, अंदर तलाशो, तो अमेजिंग थिंग था कि मैं ये सोचती थी कि अंदर कैसे तलाशूं, कहां मैं, यू नो, क्योंकि अंदर भी तो कोई चीज ही तो मुझे देगी हैप्पीनेस.
0: एब्सोल्युटली,
1: यू नो, लाइक बिकॉज आई वाज थिंकिंग, वी ऑल वर थिंकिंग दिस वे, कि अंदर ही कोई चीज, मुझे अपने अंदर ही शांति को ढूंढना है, तो वो कहाँ ढूंढू मैं अपने अंदर?
0: और तब नहीं पता चला, तब फिर कहाँ ढूंढना शुरू कर दिया? फिर हमने
1: फिर बाहर गए. ऑफकोर्स,
0: राइट. सो नाउ लेट्स चेंज आवर वोकैबुलरी. देयर इज नो फाइंडिंग पीस. हमने फाइंड नहीं करनी है पीस, पीस ऑलरेडी है. आई एम अ पीसफुल बींग. तो कुछ समय उसके ऊपर करके देख
1: सकते हैं,
0: बिकॉज दिस इज समथिंग जो हम रोज सुबह कर सकते हैं, अपने आप को फिर से याद दिलाएं. यू नो, इट्स लाइक समवन जिसकी याददाश्त चली गई है, तो जब मेमोरी चली जाती तो उनको क्या कराया जाता? धीरे धीरे धीरे धीरे याद करो, याद करो तुम कौन हो. तो राजयोग भी यही है, धीरे धीरे हमें याद दिलाता कि तुम कौन हो. यू आर अ पीसफुल बींग. आई हैव टू रिमाइंड दिस टू माई सेल्फ. सो लेट्स सिट कम्फर्टेबली, रिलैक्स करके अपने आप को देखें. आज शायद पहली बार अपने आप को देखेंगे. आज दिन तक अपने बारे में सोचा तो शरीर तक ही सीमित रह गए. ये शरीर मेरा है. आज अपने को देखते, शरीर को चलाने वाली शक्ति, क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट एंड फीलिंग, I, the conscient being, the energy which runs this body of matter, in the center of the forehead, ek sundar chamakta hua sitara, point of light, this is me, eternal, immortal, peaceful and pure. शांति, प्रेम और खुशी मैं बाहर ढूंढ रही थी. ये तो मेरी अपनी नेचर है. I am a peaceful being. As I go out today with family and work, I just need to remember, I am a peaceful being interacting with other peaceful and pure beings. Om Shanti.
1: Om Shanti. Sister Shivani, thank you so much. अगर हम अपने लिए देखें जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं ये बिलीफ सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसे चेंज करें कि मैं हूं कौन. यहीं से बेस है, यहीं से शुरुआत होती है. रिफ्लेक्ट जरूर करें, इसे अपना हिस्सा बनाए जिंदगी का, सुबह का हिस्सा. और जैसे याददाश्त की बात की है कि वो याद अपने आप को हर पल दिलाएं कि मैं हूं कौन. उम्मीद करते हैं आज जो हमने बात की है उसे हम जरूर आत्मसात करेंगे. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: वतन की हमसे है इज्जत।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदेली आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी. ओम शांति. इंद्रो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, तनाव की, और उसके लिए हमने ये समझा कि अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि स्ट्रेस हमें ही होता है. कई एस्पेक्ट्स हैं खुद को जानने के. मैं कौन हूं, सबसे पहले अपनी पहचान की बात जरूरी थी. उसके बाद मेरी बेसिक नेचर, मेरी जो ब्यूटी है वो क्या है. उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी अपनी जिम्मेवारी किसके प्रति है. आगे हमने देखा कि हमारे बिलीफ सिस्टम्स किस तरह से हमारे थॉट्स को क्रिएट करते हैं और फिर हमारी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हैं. आगे शायद अपने बारे में अभी काफी कुछ और जानना बाकी है. क्या कुछ है वो जानना, उसके बारे में बात करते हैं. हर बार की तरह हमारे साथ इस बातचीत में शामिल है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
2: ओम शांति.
0: कई सारे एस्पेक्ट्स तो हम अब जान गए कि क्या किस तरह से जो चारों चीजें जो सही परिप्रेक्ष्य में जब हम नहीं देख रहे थे, खुद की पहचान को भी या फिर अपनी नेचर के बारे में, या फिर अगर हम कहें कि जिम्मेदारी किसकी है और बिलीफ सिस्टम्स को, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी. सिस्टर शिवानी, इसके आगे बढ़ते हैं.
2: इसके आगे जो हमारे को अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है वो है सेल्फ कंट्रोल. कि बहुत बार मन में ये क्वेश्चन उठता कि क्या मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है. You know, because it's very important. It's like मेरी गाड़ी मेरे control में अगर नहीं होगी, then it's directionless. Then I have lost control, and now I'm at the mercy of the car. You know, तो वो गाड़ी मुझे जहां ले जाए मैं जाऊंगा, और फिर वो जिसमें टक्कर मारे जहां जो, because I have lost control. तो कभी न कभी हमें कहीं न कहीं एक बार मन में ये संकल्प जरूर आता कि चीजें मेरे control में नहीं है, मेरी जीवन मेरे control में नहीं चल रही है.

0: और उसका कंट्रोल फिर हम बाहर दे देते। तो ये चेक करना होगा कि जब हम सेल्फ कंट्रोल कहते तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, बिकॉज मोस्टली जब मैं ये चेक करूं कि क्या लाइफ मेरे कंट्रोल में है, तो मेरा पैरामीटर ये होता कि क्या परिस्थितियां और लोग मेरे कंट्रोल में है। आई नॉर्मली चेक इट लाइक दैट कि अगर मेरे साथ जो लोग हैं अगर वो मेरे कंट्रोल में चल रहे हैं एंड या सिचुएशंस बिल्कुल जैसे मुझे चाहिए वैसे मेरे कंट्रोल में चल रही है तो लाइफ मेरे कंट्रोल में है। विच इज अगेन वी सीन ओवर अ पास्ट सो मेनी वीक्स कि देर आर टू थिंग्स विच यू कांट कंट्रोल, वो है पीपल एंड पास्ट सिचुएशंस, मतलब पास्ट जो अभी क्षण बीता उसके बारे में आप कितना भी सोचें आप कुछ नहीं कर सकते, बीती हुई बात और लोग, पास्ट एंड पीपल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। और हमने अपनी लाइफ का कंट्रोल उस पर डिपेंडेंट कर दिया विच वी कैन नॉट कंट्रोल। सो ऑब्वियसली अगर मेरा इस कप पे कंट्रोल ही नहीं है एंड आई स्टार्ट फीलिंग कि आई एम इन कंट्रोल ओनली वन आई एम गोइंग टू बी एबल टू कंट्रोल दिस कप, एंड आई विल ऑलवेज कीप फीलिंग दैट आई एम नॉट इन कंट्रोल, क्योंकि लोग और परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं चलती, तो मेरे हमेशा ऐसे लगता कि कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ पता नहीं कैसे है वाया जा रहा। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन आई टॉक अबाउट सेल्फ कंट्रोल देन व्हाट इज द कंट्रोल, क्योंकि मोस्टली वी ट्राइंग टू कंट्रोल पीपल विच वी कांट कंट्रोल। इवन जब हम किसी की हुई किसी बात से या किसी के कहे हुए किसी बोल से अपसेट हो जाते हैं, यू नो, अब भले हम समझ कर उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि हम उनको ये नहीं कहते कि आपकी वजह से मैं अपसेट हूं, बट मेरा अपसेट होना ही मीन्स आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल यू, बिकॉज मेरा अपसेट होना मीन्स कि आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, या आपकी कही हुई बात मेरे लिए ठीक नहीं है, मतलब यू शुडंट हैव डन व्हाट यू हैव डन, सो आई एम अपसेट। तो इवन माई गेटिंग अपसेट अंदर, अब किसी को पता नहीं चलेगा शायद बाहर बोलेंगे नहीं, लेकिन माई गेटिंग अपसेट इज माई गिविंग अवे द कंट्रोल। द मिनट आई गेट अपसेट आई हैव लॉस्ट कंट्रोल बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल योर बिहेवियर एंड देन आई फील आई कांट कंट्रोल इट सो आई गेट अपसेट। जब हम किसी से काम करवाने के लिए, पेरेंट्स बच्चों के साथ ये बहुत ज्यादा करते और ऑफिस में आज बहुत ज्यादा ये यूज होता कि जब हम किसी से काम करवाने के लिए एंगर या थ्रेट, आपको ये करना ही होगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दिस विल हैपन अगेंस्ट यू, बच्चों को आपको ये पढ़ना ही होगा, आपको इतना फिनिश करना ही होगा, नहीं तो इट्स अ थ्रेट मोड जो हम यूज करते हैं। और बहुत अच्छा हमें लगता है कि जब हम किसी को इस तरह से थ्रेटन करते हैं तो वो तुरंत से हमारी बात मान के उस तरह से करना शुरू कर देते हैं। इट गिव्स मी अ फीलिंग दे आर इन माई कंट्रोल, एक्चुअली दे आर नॉट। मैंने जो थ्रेट करना था या जो गुस्सा करना था या जो भी इंस्ट्रक्शन इम्पोज करनी थी मैंने वो की, उसको लेकर उन्होंने अपने अंदर फियर और डर क्रिएट किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने डर क्रिएट किया। तो जब मुझे ये एक सुपीरियोरिटी फीलिंग आती है कि मैंने डर क्रिएट किया तो मैं लोगों को इस तरह से काम करवा सकती हूँ, बट एक्चुअली मैंने डर नहीं क्रिएट किया, अपने डर के वश उसने वो काम करना शुरू कर दिया एंड आई फील आई चेंज्ड पीपल एंड दैट्स वाई दैट बिलीफ सिस्टम बिकेम सो स्ट्रांग कि अगर लोगों को चेंज करना है, बच्चों को डिसिप्लिन करना है तो इस तरह से पनिशमेंट से या थ्रेटन करके होता। कभी ना कभी मेरे सामने कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आएगा जो डर से काम नहीं करेगा।
1: वही मैं कहना चाहती हूँ कि कोई तो ऐसा आ जाएगा जो नहीं करता है।
0: कोई ना कोई आएगा जिसका सेल्फ एस्टीम इतना स्ट्रांग होगा अंदर और जिसको आप डरा नहीं सकते हैं, जो आप सोचते हैं कि आप डराते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप उसको डरा नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो खुद नहीं डरता है, लेकिन हम बहुत आउट ऑफ कंट्रोल फील करना शुरू करते हैं कि इतने सब लोग तो डर के काम कर रहे थे, ये वाला व्यक्ति तो मेरे से डरता नहीं।
1: और तब हम ये नहीं कहते कि डरता नहीं थे, इतने सारे लोगों को मेरी बात समझ में आती थी, मेरी बात मानते थे, अब ये बात नहीं मानते।
0: एब्सोल्युटली, सी अगेन द फिंगर गोज आउटसाइड, अगेन आई एम गिविंग अवे माई कंट्रोल टू द अदर पर्सन। तो अगर सामने वाला डरता है वो उसकी अपनी क्रिएशन है, एंड सिमिलरली जब हम डरते हैं एक है हम औरों को सो कॉल्ड हम डराते हैं और दूसरा है हम डरते हैं। जब हम डर के कोई कर्म करते हैं तब भी हमें याद रखना होगा कि उन्होंने हमें नहीं डराया,
1: हम खुद डरे,
0: हम खुद डरे, मैंने ये फियर अपने आप क्रिएट किया है और वो फियर क्रिएट करने के बाद उस डर वश मैं वो काम कर रही हूँ एंड देन आई से आई हैव टू डू दिस बट यू नो एंड आई डू दैट वर्क बट इट्स नॉट विद द फीलिंग ऑफ

0: मिलते हैं, और कल से आपको एक 11वें व्यक्ति से मिलना होगा, और अगर आप हर रोज उस 11वें व्यक्ति को कहें आई एम सॉरी आई डोंट हैव टाइम, आई एम सॉरी आई डोंट हैव टाइम, एंड फिर आप कहें वो व्यक्ति तो अपनी मर्जी से कर रहा है जो करना है, वो कहेगा मैं रोज खड़ा होता था आपके ऑफिस के बाहर. आई मीट 10 पीपल, दिस इज द फर्स्ट पर्सन आई नीड टू मीट, बट आई से डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, तो ये अपने आप कर रहा है ना, वे सही, ये तो अपने आप ही चलता. अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी इमीजिएटली अपने आप से एक अपॉइंटमेंट ले ले रोज सुबह की, एंड सी कि जो चीज कंट्रोल में होनी चाहिए वो कितनी ब्यूटीफुल एक कंट्रोल में चलेगी. लेकिन फोकस चेंज होना चाहिए, दिस हैज टू बी इन कंट्रोल, दीज आई कैन नॉट कंट्रोल, क्योंकि दो चीजें नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एनर्जी तो उतनी है ना आत्मा में, वो आत्मा अपनी सारी शक्ति यूज कर रही है औरों को कंट्रोल करने,
1: हो ही नहीं,
0: जो हो नहीं सकता, तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिप्लीट होती जाती है और उसको फ्रस्ट्रेशन होती जाती है अंदर, क्योंकि वो कर नहीं पा रही है वो चीज. तो वो फ्रस्ट्रेशन के बाद उसके पास अपने लिए एनर्जी है ही नहीं. तो सेल्फ कंट्रोल में ये बहुत इम्पोर्टेंट कि सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या,
1: अंडरस्टैंडिंग
0: थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, एंड देन फाइनली माई डेस्टिनी, दिस इज इन माई कंट्रोल.
1: शिवानी, अभी आपने कहा कि कई बार जब बात कोई मानता है तो वो गुस्से में होते हैं, हम तब मानता है फियर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फियर मानता है, लेकिन देखा गया है कि कई बार आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम उसे सोच लेते हैं कि जब हमारे बड़े कह रहे हैं हम ना चाहते हुए भी उसको स्वीकार लेते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या वो भी उसी एस्पेक्ट में आ जाएगा कि हमने कंट्रोल किसी और को दिया?
0: हमारी अपब्रिंगिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वो है रिस्पेक्ट इज टू फियर. ये बहुत डीप रूटेड है, बचपन से हमें अपने टीचर से डर लगता था, हमें अपने प्रिंसिपल से डर लगता था, कई बार घरों में हमें अपने पेरेंट्स से डर लगता है, और हमें सिखाया गया कि ये अच्छी बात है, क्योंकि डरना मतलब आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो. अब थोड़ा सा इसको अंदर, अगेन नो राइट एंड रॉन्ग, बट अगेन आई हैव टू आस्क फॉर माई सेल्फ, क्योंकि जैसे ही मेरे अंदर डर क्रिएट हुआ, डर डज नॉट मीन कि मैं आपसे बहुत डरता हूं, डर इज नॉट लाइक दैट. डर मतलब अनेक प्रकार का डर होता है, कि फियर कि कहीं आप मुझसे नाराज ना हो जाए, फियर कि कहीं आपको मेरी, अगर मैंने नहीं किया तो मैं आपको अच्छी नहीं लगूंगी, यू नो, तो आपका एक्सेप्टेंस, आपका अप्रूवल मेरे बारे में, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ एस्टीम आपके अप्रूवल पर डिपेंडेंट है. हम मेजोरिटी वी आर मूविंग विद दिस थिंग कि हमारी सेल्फ एस्टीम मीन्स व्हाट आई फील अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ वो उसी पर डिपेंडेंट है कि और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. अपनी इंडिविजुअल तो मैंने कोई नई सोच बनाई, तो अगर और लोग बोलते हैं तो मैं अच्छी हूँ, तो मैं अच्छी हूँ. अब अगर सब लोग बोलने लग गए कि मैं अच्छी नहीं हूं, तो फिर मैं अच्छी नहीं हूं, एंड आई डोंट लाइक दैट, क्योंकि मुझे अच्छा बनना है. तो दैट्स वाई आपका अप्रूवल, मतलब हर एक का अप्रूवल उस तरह से, एंड इसमें इम्पोर्टेंट के यू नो पेरेंट्स का अप्रूवल बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उससे उनकी सेल्फ एस्टीम वो फील करते, डेवलप होती. तो डर ये वजह से होता है कि आई शुड नॉट लूज यू, आई शुड नॉट लूज योर अप्रूवल, तो उस डर के वश मैं कर देती हूँ वो कर्म, विलिंगली नहीं करती. या तो जो बात आपने मुझे कही मैं उसको स्वीकार लूं, मैं उसको समझ लूं, उस बात को अपना बना लूं, कि हाँ मुझे भी लगता है कि ये बात राइट है, एंड देन आई विल डू इट, यू नो, विद अ लॉट ऑफ लव, विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. लेकिन इफ आई एम डूइंग, आई फील समथिंग एल्स, मुझे लगता नहीं ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपसे कह नहीं सकती, देन आई फील कि मैं आपके कहने की वजह से ये कर रही हूं. क्योंकि अगर मैंने कह दी अपनी बात, तो कहीं ऐसा ना हो आपको बुरा न लग जाए. तो हमने देखा कि अगर मेरी सेल्फ एस्टीम हाई है, सेल्फ एस्टीम हाई इज नॉट ईगो, सेल्फ एस्टीम हाई मतलब कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूं इज नॉट वेरी डिपेंडेंट ऑन आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं. आई नो हु आई एम, एंड दिस इज नॉट ईगो, इट्स जस्ट दैट आई नो हु आई एम. अब मुझे अपनी बात कहने की पावर मेरे अंदर आ जाती है, क्योंकि हम मेजोरिटी टाइम अपनी बात सिर्फ अंदर के अंदर ही दबा देते हैं, क्योंकि और लोग क्या सोचेंगे. लेकिन अंदर से स्वीकारा नहीं, बाहर से स्वीकार लिया, और अंदर से करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो वाली चीज उस तरह से होती तो ज्यादा बेटर होती. दिस एनर्जी काम तो हो जाएगा, जैसे आपने कहा वैसे ही हो जाएगा, लेकिन रिलेशनशिप्स इज ऑल अबाउट एनर्जी एक्सचेंज. एनर्जी जो मैंने क्रिएट की आपके कॉन्टेक्ट में आने से वॉज फियर, एंड जब मैंने फियर आपके लिए क्रिएट किया, विच आई फील इज फॉर यू, दैट्स नॉट रिस्पेक्ट. फियर और रिस्पेक्ट कठिन

0: लव एंड फियर इकट्ठे नहीं हो सकता. वी हैव टू अंडरस्टैंड. हम हर टाइम ये फील करते हैं कि नो कि ये सारी चीजें इकट्ठे इकट्ठे चलती हैं, जबकि ये पोल्स अपार्ट है, एकदम पोल्स अपार्ट है. तो रिस्पेक्ट मीन्स कि मैं जो हूं, पहली बात सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं जो हूं मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूं, और आप जो हैं मैं आपको एक्सेप्ट करती हूं, एंड मैं जो हूं वो मैं अपने आपके सामने अपने आप को रखने के लिए तैयार हूं. देन इट्स रिस्पेक्ट,
1: द रियल मी, जो मुझे अच्छा लगता है.
0: तो रिस्पेक्ट में डर नहीं आएगा. ऑलवेज चेक, अगर इफ आई एम एवर यूजिंग दिस वर्ड,
1: आई डोंट थिंक हम कभी भी अपना
0: डर लगता है,
1: अपना रियल सेंस, अपना रियल सेल्फ हम कभी भी प्रोजेक्ट करते होंगे,
0: तो क्योंकि हमने उसको छुपा के रखा हुआ है. तो कभी भी हम अगर कहें कि रिस्पेक्ट, तो उसके साथ डर वर्ड नहीं आ सकता. रिस्पेक्ट मतलब मैं जो हूं जैसी हूं, आई एम रेडी टू कम इन फ्रंट ऑफ यू. मुझे कोई प्रिटेंशन, अच्छा बनने की प्रिटेंशन नहीं रखनी है आपके सामने, बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू. रिस्पेक्ट यू मतलब जो हम परमात्मा के साथ करते हैं, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो परमात्मा और आत्मा के साथ इसलिए बहुत अच्छा होता क्योंकि परमात्मा आत्मा को वो जो है जैसी है वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं. एक्सेप्ट करने के बाद भले हमें परिवर्तन करने की यात्रा बताते हैं, लेकिन ही जस्ट एक्सेप्ट अस विद ऑल आर डर्ट एंड देन इन फ्रंट ऑफ हिम आई एम रेडी टू से एनीथिंग. जो मैं किसी के सामने बात नहीं कहूंगी अपने बारे में, वो मैं उसके सामने कहने के लिए रेडी हूं क्योंकि वो मुझे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता है. आई डू नॉट हैव टू बी प्रिटेंड टू बी गुड इन फ्रंट ऑफ गॉड. आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ. दिस आई कैन नॉट बी इन फ्रंट ऑफ एनीबडी. दैट बिकॉज आई एम कैरिंग अ लो सेल्फ एस्टीम. आई एम ऑलवेज बींग नाइस, वेरी नाइस आउटसाइड. आई एम नॉट फीलिंग दैट नाइस इनसाइड. लेकिन व्हाट आई एम फीलिंग आई कैन टेल गॉड. परमात्मा के साथ बैठू मेडिटेशन में, आई कैन जस्ट टेल हिम एवरीथिंग क्योंकि मुझे पता है ही स्टिल लव्स मी. जिस आत्मा से मुझे वो फीलिंग आ जाएगी, क्योंकि पेरेंट और चाइल्ड भी अगर आप देखो, जैसे ही चाइल्ड ने कुछ ऐसा किया जो पेरेंट को अच्छा नहीं लगता तो वो कुछ ऐसा कह देते हैं, इवन इफ इट इज इन गुड इंटरेस्ट. तो बच्चे को लगता है ये अगर मैं करूंगा तो मेरा जो पेरेंट से मुझे प्यार मिलना चाहिए था वो खत्म हो जाएगा. तो उस डर के कारण कि कहीं वो प्यार खो न जाए, मैं अपनी बात को अंदर ही रख देती हूं.
1: बहुत सुंदर आपने बात की. लेकिन क्या आज हम गॉड के सामने भी अपने सही जो हम हैं,
0: वेन यू रियली कनेक्ट टू हिम, नॉट विद द कॉन्सेप्ट. जब आपको वो अनकंडीशनल लव अनुभव होना शुरू हो जाएगा, आप अपनी हर बात रख सकते हो. और जैसे, क्योंकि हर बात रखना तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है. हम छुपा देते हैं अंदर, मेरे क्लोजेट में बहुत सारी बातें चेंज ही नहीं होती है, चेक ही नहीं होती है, क्योंकि वो दबाते जाते हो, किसी के सामने भी नहीं रख सकती. जैसे ही उसके सामने खोलती हूँ अपना, तो वो खुलते ही आधा तो वैसे ही खत्म हो जाता है. आई कैन ओपन अप इन फ्रंट ऑफ हिम. इफ आई फाइंड एनी सोल, ऐसी आत्मा कोई भी, चाहे वो कोई भी रोल में हो, टीचर है, बॉस है, कोई भी है, जिसके सामने मैं जो हूं वैसा बन रह सकती हूं, आई डोंट हैव टू बी प्रिटेंड टू बी गुड, देन आई रिस्पेक्ट दैट सोल. दैट्स रिस्पेक्ट फॉर मी. आई फील आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ. यू नो, हम कई लोगों को बोलते हैं आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, इफ रियली वी मीन इट देन दैट्स रिस्पेक्ट. So we need to know these simple things about ourselves and our relationships. Kyunki hamare relationships apne sath, parmatma ke sath, auron ke sath, prakriti ke sath, sara din khel jo hai wo sara relationships ka hai. And relationships arthat energy giving and receiving, it's a constant energy exchange. Ab ye energy exchange agar positive hoga, प्योर होगा, तब मुझे कैसा फील होगा? बहुत हार्मोनियस. लेकिन अगर मैंने हमेशा समझा कि मुझे लेना ही है और जो मुझे देना है उस पर ध्यान नहीं दिया, तो उसमें जो बिटरनेस आ गई, तो उस कारण से जो एनर्जी एक्सचेंज हुआ वो बहुत टाइट होता जा रहा है, बहुत नेगेटिविटी आती जा रही है. हमारे पास जो सबसे बड़ा रिसोर्स है, कई बार पेरेंट्स कहते हैं हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बच्चों को ये सब देना चाहते हैं. सबसे बड़ी पावर मेरे पास क्या है? स्पिरिचुअल पावर.
1: वो मैं कभी नहीं देती, मैं खुद अपना ही नहीं पता वो.
0: जो मेरा सबसे बड़ी एसेट है, अपनी एसेट्स की लिस्ट बनाते हैं तो प्रॉपर्टी और ये सब बात, सबसे बड़ी एनर्जी जो मेरे पास है वो है स्पिरिचुअल एनर्जी, विच इज पावर ऑफ लव, पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ ट्रूथ, पावर ऑफ हैप्पीनेस. एंड ये मेरे पर्पज ऑफ लाइफ यही होगा कि जो ये मेरी पावर है, मैं कितना इसको औरों के साथ शेयर कर सकती हूँ.

0: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी। मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फलटन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम,
1: बोल दो बापू।
0: बोल दे बेटा।
1: बाप

0: बापू ए बापू,
1: अरे की है बरखुरदार।
2: कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूँ लाचार।
3: की है बोल भी।

0: प्यार
1: हाय
0: ठीक है ठीक है। प्यार की होए आए प्यार की होए, हम तो एक ही बात जाने।
2: बोल दो बापू।
0: बोल दे बेटा।
2: बाप

0: ठीक है बापू मैं जाता हूँ, आप तो जाने मैं बेकसूर हूँ लेकिन मजबूर हूँ।
1: अरे कठे जाए मेरी बात भी तो सुने।
2: तेरी खातिर देखी है एक राजकुमारी, है एक राजकुमारी, जा घोड़ा ले आ।

0: हार दूंगो, लेकिन बदले में राजा से एक एक के हजार लूंगो।
1: क्या शादी भी है व्यापार?
0: हाँ बेटा, एक एक के बड़े हजार। ही कल मुही को छोड़, तू प्यार से मुंह मोड़, अरे पैसे से नाता जोड़।
1: ठीक है बापू, मानता हूँ मैं आपकी बात, लाइए वो जेवरात।
0: ले ले, बढ़ा दो हाथ, ए घोड़ा लाओ घोड़ो।

0: ठीक है, अरे ठीक है, मारे सारी उम्र के कमाए गए डॉलर है। भैया
1: बोल दो बापू।
2: हाँ बोल दे बेटा।
3: बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपया, बाप भला ना भैया भैया सबसे भला।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

भीम रंग झांच जप बाज सापर नाच कृष्ण कन्हैया दो तीन के संग राज बचावत नाच जावत ताता ते याद है ते याद है ते गेंद गेंद गिरी यमुना कुछ नित्य कियो तहनागन थैया रोप के इंद चढ़ो बिज ऊपर रोप सब सब हा हा दैया गाय उठाय लियो गिर नक पर बंत बजावत देन चलैया जगे मोहन मन में माए नित्य सरत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुणे रेडियो आवाज में 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। पीत पट पहने पुलकित गात, शोभा सलिल ललित मृदु मूरत, रूप सुधा सरसात, विश्व प्रेम की विमल विभा से बच कल को बचात, भारत दुख तम तुम कामिटा, अब हुई प्रात अवदात। सरल सलिल समसमन विमल दल, नित नित नवल सुहात, विमल विसंत वेलिवन विकसित, वासित कर विख्यात, सुखद स्वराज सखा स्वागत कर, देत बधाई तात। स्वराज झंडे का ये महिमामय गान 4 जनवरी सन 1918 को अल्मोड़ा अखबार में प्रकाशित हुआ था। रचनाकार थे सुमित्रा नंदन पंत। 1871 से प्रारंभ हुए इस अखबार ने उत्तराखंड के संपूर्ण क्षेत्र में स्वाधीनता के प्रति अलख जगा दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1815 में उत्तराखंड पहुंची और उन्होंने गोरखों की सामंती सैनिक शाही को समाप्त कर दिया। दूर दूर फैले गांव, दुर्गम इलाके, बिखरी जनसंख्या वाले गांव के सरल भोले भाले लोग परिवर्तन की इस लहर को गोरखों के दमनकारी शासन के अंत के रूप में देख रहे थे। 1815 से 1857 तक उत्तराखंड में कंपनी का शासन सामान्यतः शांत ही रहा, पर फिरंगी शासन का शोषण चक्र घूम रहा था। नए तरह के बंदोबस्त, नए कर समाज के आर्थिक स्वरूप को छिन्न भिन्न करने लगे थे। शोषण का एक नया स्वरूप बेगार की प्रथा के रूप में फैल रहा था। अंग्रेज अधिकारी सेना की गतिविधियों, बैरक निर्माण, सामान और रसद को लाने ले जाने पहाड़ी कुलियों का उपयोग बेगार के रूप में करते थे। 1822 से इसके खिलाफ असहयोग की खबरें आने लगीं। लोहाघाट, पिथौरागढ़ आदि के ग्रामीणों ने अपने उत्पादों को छावनी में बेचना बंद कर दिया, क्योंकि वहां उनसे जबरन टैक्स वसूला जाने लगा था। सैनिक सामग्री के परिवहन से भी उन्होंने इनकार कर दिया। सभी कामगार बेगार प्रथा के विरुद्ध खड़े हो गए। तत्कालीन कवि कृष्णा पांडे, मौलाराम और गुमानी जैसे रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में शोषण के विरुद्ध इस सामाजिक बदलाव को मुखर किया। उन्होंने व्यंग्य के तीखे स्वर में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था पर चोट की। कवि गुमानी ने लिखा, जो है जाली बड़ा सवाली, पापों से न डरता है, लिखे बनाए तमस्सुक, झूठे गवाहों को धरता है, सो रिश्वत से डिग्री पावे, सच्चा रो रो मरता है, कहे गुमानी जुल्म फिरंगी, अमला तेरा करता है। 1857 के जन विद्रोह की आंच उत्तराखंड तक पहुंची तो सही, पर विद्रोही अधिक सफल न हो सके। विद्रोहियों ने पहाड़ से नीचे उतरकर कंपनी के प्रशासनिक केंद्रों तक जाने का प्रयास किया। काली कुमाऊं के कुछ प्रभावशाली लोग विद्रोहियों के संपर्क में थे। विषम पट्टी के मुखिया कालू मेहरा विद्रोही फजल हक के संपर्क में थे। बरमदेव थाने पर विद्रोहियों ने हमला किया। अंग्रेजों ने आनंद सिंह फरत्याल और विशन सिंह को पकड़कर फांसी दे दी। कालू मेहरा पर राजद्रोह का मुकदमा चला। हल्द्वानी, बाजपुर, रुद्रपुर और कालाटुंगी में विद्रोहियों और कंपनी सेना के बीच जोरदार संघर्ष चला। अल्मोड़ा स्थित आर्टिलरी में बगावत की तैयारियां पाई गईं। नाना साहेब के उत्तराखंड में आने की संभावना के बाद अनेक व्यक्तियों को नैनीताल, अल्मोड़ा और श्रीनगर में फांसी दे दी गई।

1871 में कॉलेजों की स्थापना के साथ जागृति और शिक्षा के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इसी समय अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन भी शुरू हुआ। अंग्रेजी शिक्षा, पत्रकारिता, वकालत तथा संस्थाओं संगठनों के उदय ने समाज में जागृति संभव की। स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, पंडित मदन मोहन मालवीय और भगिनी निवेदिता के इस क्षेत्र में भ्रमण ने बौद्धिक और राष्ट्रीय चेतना के नए युग का सूत्रपात किया। 19वीं सदी के आरंभ में उत्तराखंड के निवासी बेगार और जंगलात की समस्याओं से त्रस्त थे। वन कानूनों ने किसानों के प्राकृतिक पारंपरिक अधिकारों पर हस्तक्षेप किया था और बेगार ने समाज को बेजार कर दिया। एक आर्थिक सम्मान का प्रश्न था, एक आत्मसम्मान का प्रश्न था। 1903 में अल्मोड़ा के नजदीक खत्याड़ी गांव के काश्तकारों ने सामूहिक बेगार पर जाने से मना कर दिया। फिरंगी सरकार इसका दमन नहीं कर सकी और इसके बाद क्रमबद्ध प्रतिरोधों का सिलसिला चला और ग्रामीणों ने तत्कालीन सरकार की नीतियों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की और वे न्याय पाने में सफल रहे। 1905 में बंग विभाजन के खिलाफ अल्मोड़ा नंदा देवी में विशाल जनसभा हुई, जहां युवा छात्रों ने अपना विरोध प्रकट किया। 1906 में हरिराम त्रिपाठी ने वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किया, जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम, जो शीघ्र ही लोकप्रिय होकर जन जन के कंठ का हार बन गया। राजनैतिक चेतना का निरंतर प्रसार हो रहा था। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस लगातार देहरादून और अल्मोड़ा में युवाओं के बीच सक्रिय थे। वहीं बद्रीदत्त पांडे जैसे प्रखर पत्रकार ने एक नए वैचारिक युग का सूत्रपात भी किया। कुली बेगार, जंगलात, भू तथा वन बंदोबस्त, समाज सुधार, शिक्षा आदि सब की ओर नवगठित कुमाऊं परिषद ने सबका ध्यान आकर्षित कर सुधारवादी कार्य आरंभ किए। स्थानीय अखबार अंग्रेजी शासन के खिलाफ लगातार आग उगल रहे थे। विशेषकर बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार में नौकरशाही और डिप्टी कमिश्नर पर तीखे व्यंग्य लिख रहे थे। फलस्वरूप उनसे जमानत मांगी गई और 48 साल पुराना ये अखबार 1918 में बंद कर दिया गया। बाद में बद्रीदत्त पांडे ने 1918 में ही साप्ताहिक शक्ति का प्रकाशन शुरू किया, जो शुद्ध राष्ट्रवादी पत्रकारिता थी। पहले अंक में उन्होंने लिखा, इसका उद्देश्य देश की सेवा करना, देश हित की बातों का प्रचार प्रसार करना, अराजकता के भाव को न आने देना तथा प्रजा पक्ष को निर्भीक रूप से प्रतिष्ठापूर्वक प्रतिपादित करना है।

1921 के समय बागेश्वर में हुए बेगार विरोधी आंदोलन की सफलता ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया। स्थानीय सामंत और मालगुजार भी आंदोलनकारियों के साथ हो गए। अन्याय के विरुद्ध जिनका नारा था, न अपील, न दलील, न वकील। कांग्रेस की विचारधारा का प्रभाव भी लोगों पर पड़ने लगा था। कुछ लोगों ने कलकत्ता जाकर गांधी जी को भी इन पर्वत पुत्रों की समस्याओं से अवगत कराया। नागपुर के अधिवेशन में भी गांधी जी से बात हुई। वे भी उत्तराखंड की सामाजिक समस्याओं को समझ पा रहे थे। 1927-28 में असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि बनने लगी थी। मई 1930 में एक नया आंदोलन शुरू हुआ जो रियासत की दमनकारी नीतियों, बेगार, प्रभु सेवा और बढ़े हुए करों के विरुद्ध था। रवाई आंदोलन का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि रवाई आंदोलन में समानांतर सरकार की योजना बन रही थी। सन 1930 के दशक में प्रजामंडल की स्थापनाओं का दौर आरंभ हुआ। 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। रियासत के बाहर भी उसकी शाखाएं खुलीं। उनका उद्देश्य था कि उत्तरदायी शासन के माध्यम से सामाजिक आर्थिक उन्नति हो और टिहरी की जनता को नागरिक अधिकार उपलब्ध हों। टिहरी दरबार ने जब आयकर का नया कानून पारित किया तो विरोध का स्वर तीव्र हो गया। श्री देव सुमन और शंकर दत्त डोभाल ने लोगों को इसके बारे में जागरूक किया। अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड में भी हलचल मची और प्रजामंडल के अन्य कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। श्री देव सुमन को भी 30 दिसंबर 1943 को गिरफ्तार कर टिहरी जेल भेज दिया गया।

संरचना बनी। सैकड़ों सत्याग्रहियों का जत्था टिहरी के लिए निकल पड़ा। 10 जनवरी सन 1948 को कीर्तिनगर स्थित राज्य न्यायालय पर आजाद पंचायत ने राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया। 11 जनवरी को आंदोलनकारियों को पकड़ने डिप्टी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पहुंचे। वे न्यायालय पर अधिकार करने आए थे। इस बीच आंदोलन की तीव्रता देखकर डिप्टी कलेक्टर ने नागेंद्र और भोलू पर गोली चलाई और वो दोनों ही शहीद हो गए। 15 जनवरी को शहीदों का अंतिम संस्कार हुआ। 15 फरवरी सन 1949 को प्रजामंडल की बुनियादी मांगों को अंतरिम सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया। 1 अगस्त सन 1949 को टिहरी राज्य को विलीनीकरण के अंतर्गत संयुक्त प्रांत में मिला दिया गया और इस तरह जनता ने अपने मौलिक अधिकार और स्वाधीनता को हासिल कर लिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने और इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बात।

0: जी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger, तभी वो रियल मायने में assertiveness होगा, क्योंकि assertiveness inner stability। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: फुड़ेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो
1: विद ब्रह्मा कुमारी। नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है, वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
2: थैंक यू।
1: हम बात कर रहे थे वो पाथ, रास्ते की, जीवन की। जीवन में परिस्थितियां आती हैं लेकिन हम स्टेबल रहे, ये पॉसिबल नहीं हो रहा है मुझसे। आई डोंट थिंक, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशनशिप है इसका, प्रोपोर्शनल है इम्पैक्ट। डायरेक्ट होता है मुझ पर, कोई कुछ बोल दे या बात नहीं सुने या काम नहीं हो तो फिर परिस्थिति कैसे भी रहने दो, मैं तो चुप रहूंगा, वाह वाह वाह वाह स्माइल करूंगा, ऐसा हो नहीं रहा है।
2: डायरेक्ट इम्पैक्ट परिस्थिति का हम पर, या परिस्थिति के सामने हमने कौन सा रिस्पांस चूज किया, हमारा इम्पैक्ट परिस्थिति पर। हु इन्फ्लुएंसेस हु,
1: इट डिपेंड्स ऑन हु द पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ मी। अगर कोई मंत्री है तो उसका, उसने कुछ बोल दिया तो मैं अंदर घुट पी के मैं बोलूंगा ठीक है।

0: वीकनेस को दिखाऊंगा। ठीक है, बीवी है तो तभी मैं डांट दूंगा, बच्चा है तो और जोर से कर दूंगा, नौकर है तो उसको और।
1: उधर ही प्रूफ, इधर ही प्रूफ हो गया ना सब कुछ।
0: क्या?
1: कि इट डजंट डिपेंड ऑन द आउटसाइड फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन अलग अलग लोगों के सामने आपने अलग अलग चूज किया रिस्पॉन्स।
0: हर जगह एक एक मजबूरी है,
1: हर जगह एक एक चॉइस है। अगर स्टिम्यूलस डिपेंडेंट होता, आपने कहा परिस्थिति हम पर इम्पैक्ट करती है, व्यक्ति हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है और हम रिएक्ट करते हैं। अगर व्यक्ति हमारे ऊपर इम्पैक्ट करे और हम रिएक्ट करें, तो आपके पास ये सब चॉइसेस ही ना होती। अभी आपने ही चार चॉइसेस सुनाई है।
0: मैंने चारों मजबूरियां सुनाई
1: है। चार चॉइसेस है,
0: चार एक्सपेक्टेशंस भी हैं,
1: चार डिफरेंट चॉइसेस है, चार डिफरेंट स्टिम्यूलस के सामने।
0: हाउ डू यू कॉल इट अ चॉइस?
1: हाउ यू आर चूजिंग। आपने कहा, मंत्री ने कहा, तो मैंने ऐसा वाला रिएक्शन किया कि मैंने अंदर क्रिएट किया, बाहर चुप रहा। किसने चूज किया?
0: मैंने।
1: फिर आपने कहा, वाइफ ने कहा, मैंने कहा अंदर क्या रखना है, उसी टाइम बोल के शोर मचा के खत्म किया, अलग चॉइस है। स्टाफ ने किया तो मैंने अलग तरह से सुना दिया। तो अलग अलग अलग रिएक्शंस क्रिएटेड बाय आई दैट बीइंग
0: का रिलेशनशिप भी तो है ना।
1: रिलेशनशिप
0: बीवी है, एक जगह बच्चा है, एक जगह स्टाफ है,
1: राइट?
0: अलग है इनका,
1: तो इसका मतलब
0: तो बाहर वाला है।
1: इसका मतलब हमारा रिएक्शन किस बेसिस पर होगा?
0: रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशन।
1: हमारा जो रिएक्शन, एक रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन होना चाहिए, वो डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन है या वो डिपेंडेंट ऑन अस? आप एक सीन इनैक्ट कर रहे हैं, आप भी हैं, आप एक को स्टार भी है साथ में, तो को स्टार कैसे परफॉर्म करेगा? को स्टार से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसके ऊपर आपकी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होगी या आपकी परफॉर्मेंस आप एज एन एक्टर पे डिपेंडेंट होगी?
0: मैं एज एन एक्टर, मुझ पे मैं डिपेंड करूंगा और साथ में कोस्टार की भी हेल्प कर दूंगा कोई मिस्टेक करे
1: तो कोस्टार की हेल्प कर दूंगा या कोस्टार से एक्सपेक्टेशंस रखूंगा?
0: उस वक्त तो नहीं, शूटिंग से पहले एक्सपेक्टेशन रखो, ड्यूरिंग द शॉट कुछ इधर उधर हो तो उसको संभाल लूंगा।
1: तो ड्यूरिंग द शॉट फोकस किस पर है?
0: कि काम अच्छा हो जाए।
1: किसका काम अच्छा हो जाए?
0: सीन पिक्चर का।
1: सीन पिक्चर का अच्छा हो जाए, लेकिन कोस्टार तो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा,
0: तो उसको संभाल सकते हैं। एक
1: तो फोकस
0: अपना
1: किस पर होगा?
0: एक रिएक्शन बीच में डाल
1: तो
0: के।
1: फोकस किस पर होगा?
0: फोकस ऑन वर्क।
1: हूज वर्क?
0: माई वर्क।
1: माई वर्क, माई वर्क, नॉट सीन, नॉट द कोस्टार, नॉट द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कोस्टार, नॉट डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑन द कोस्टार, बट डिपेंडेंट ऑन माई वर्क। अब सेम चीज, अलग अलग सीन, अलग अलग को स्टार्स, अलग अलग परफॉर्मेंस। हर एक इज नॉट परफॉर्मिंग टू वॉट वी वॉन्ट देम टू परफॉर्म। माई वर्क इज माई इनर वर्क हियर। माई वर्क, मेरा काम। मेरा काम क्या है कि मुझे कैसे परफॉर्म करना है उस सीन के अंदर, चाहे वो सीन है मूवी का, चाहे वो सीन है जीवन का, चाहे वो जीवन में आई हुई परिस्थिति है। सिर्फ फर्क क्या है कि जब वो मूवी का सीन था, आपका फोकस किस पर था? अपने ऊपर, कि चाहे बाकी कोई कैसा भी परफॉर्म करे, आई विल परफॉर्म टू माय बेस्ट।
0: दुनिया में हर इंसान ऑफिस का बिहेवियर, घर का बिहेवियर अलग ही रखता है। अगर एक समझो लड़की काम करती है ऑफिस में, शायद वो अपने बॉस से इतनी जोर से जवाब ना दे जो पति को दे दे या बेटे को बोल दे, तो सब लोग का एक ही जगह, हर जगह एक ही हिसाब थोड़ी रहता है।
1: क्यों वो बॉस के साथ अलग व्यवहार करेगी और घर पे बच्चे के साथ अलग और हस्बैंड के साथ अलग? इनके सामने नहीं जोर से बोल सकते, इसके सामने जोर से बोल सकते हैं, इसको तो थप्पड़ भी मार सकते हैं। बेटा है ना मेरा, और वो तो अभी छोटा है, उसी बेटे को थोड़ा बड़ा होने के बाद नहीं मार सकते हैं? नहीं मार सकते, लेकिन अभी वो छोटा है तो मार सकते हैं। हस्बैंड है तो जोर से डांट सकते हैं, बॉस है तो चुप रहना पड़ेगा,
0: सप्रेस करते हैं।
1: वी आर परफॉर्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑन आर रोल्स, ऑन आर रिलेशनशिप। दिस इज नॉट कॉल्ड हियर। आप अगर एक्टर हैं और आप अलग अलग एक्टर्स के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आप सामने वाले एक्टर कौन है उसके बेसिस पे परफॉर्म करेंगे? इन रियल लाइफ हमारा रोल क्या है, किस पर फोकस करना है? उस मूवी के सीन में फोकस किस पर था? कि जो सीन के अनुसार मेरा

0: bacteria kya hoga? Am I feeling nice inside?
1: You mean to say wrong karam karke insaan ko nice feel nahi hota agar if he thinks he's done the right thing?
0: Andar energy kaise create hogi?
1: This is main bahut
0: andar energy jo create hogi, emotions jo create honge, चीट किया किसी को दुख दिया, अंदर एनर्जी कौन सी क्रिएट होगी अगर उस क्षण नहीं भी पता चले? एंड सामने वाले को फील कैसा कराया? बिकॉज हमारा क्राइटेरिया वो भी तो है ना परफॉर्मेंस का.
1: यूजुअली लोग बोलते नहीं, पता नहीं मैंने क्या पाप किया, किसको दुख दिया, क्या तकलीफ दिया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो, तो लगता है लोगों को पता चलता है.
0: तो क्राइटेरिया हमारे परफॉर्मेंस का क्या है? आई फील नाइस एंड आई मेक अदर पीपल फील नाइस. अब अगर सिर्फ ये लाइन पकड़ ली और चले सुबह से रात तक,
1: बहुत अच्छी सुंदर लाइन है,
0: सीन आफ्टर
1: मंत्र बन गया.
0: नहीं नहीं,
1: आई फील नाइस
0: एंड मेक अदर पीपल फील नाइस, सिंपल. एंड नाउ मेक अदर पीपल फील नाइस इज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन व्हाट आई स्पीक एंड आई बिहेव. आई मेक अदर पीपल फील नाइस, नॉट आई स्पीक नाइस, आई मेक अदर पीपल फील नाइस.
1: In your presence, people should be comfortable.
0: Yeah. मतलब मैंने vibration कौन सी radiate की, मैंने बोल कौन से बोले, व्यवहार कौन सा किया, वो नहीं. The line you chose is, I make other people feel nice. एक हो सकता है, I speak well, I behave nice.
1: जब stage पे भी sister, जब एक आदमी बहुत ही अच्छी बड़ी बड़ी बात करता है तो अच्छा नहीं लगता है. कोई आदमी simple word में simple बात करके हंस खेल के दो लाइन शब्द भी देता है ज्ञान के, तो इतना अच्छा लगता है. और कोई आदमी को बड़े बड़े श्लोक बोल के, बड़े बड़े संस्कृत के शब्द, बड़ी बड़ी इंग्लिश की बातें, बड़े बड़ी वर्ड्स यूज,
0: किस बेसिस पर होगा ये?
1: यहाँ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन,
0: मतलब
1: ह्यूमन टच है.
0: मतलब क्या, जो अंदर है वो बाहर है. दूसरे केस में जो है, अंदर कुछ और है, बाहर बहुत अच्छे बोल है, है ना? ये हम अपने सारा दिन के व्यवहार में भी देख सकते हैं. एक से मिले, दूसरे से मिले, तीसरे से मिले, बहुत अच्छा बोला, बहुत मीठा बोला, बहुत प्यार से बोला. डिड आई मेक देम फील नाइस?
1: बट आई हैव ऑल्सो नोटिस दैट द डे आई कम होम, बड़ा खुश आता हूँ, तो फिर मैं सबसे खुशी बात करता हूँ, बच्चों से, नौकर से, सबसे मैं उनसे ऑटोमेटिकली
0: मतलब,
1: करता हूँ.
0: अगर एक्टर अच्छा है तो उसको परफॉर्मेंस देने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी?
1: नहीं.
0: एंड अगर एक्टर अच्छा है, वो परफॉर्म एकदम नेचुरल करता जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि बाकी एक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं.
1: इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटसाइड डिस्टर्बेंस, लाइट गिर जाती है, कोई कुछ हो जाता है, कोई लाइट दूसरा आदमी डायलॉग बोल जाता
0: तो
1: है.
0: तो मतलब इम्पोर्टेंट क्या कि वो एक्टर कैसा है. अब अगर एक्टर थोड़ा सा नया है, अभी उतना स्किल्ड नहीं है, उसने अपने वर्क पर उतना वर्क नहीं किया है, तो वो छोटी छोटी सीन में भी क्या करेगा?
1: वो बोलेगा यार तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, यार तुम सामने से हटो, यार तुम उधर से.
0: मैं कर सकता था लेकिन वो सामने आ गए. सर मैं कर सकता था ये सीन लेकिन उसने अपनी ठीक से नहीं. तो उसका वे ऑफ लिविंग कैसा है कि मेरी परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन. सब जिस दिन अच्छा परफॉर्म करेंगे उस दिन सर मैं भी बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, वो उस एक्टर की वोकैबुलरी है. लेकिन जो एक अच्छा एक्टर किसको कहेंगे? जिसकी परफॉर्मेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सिचुएशंस एंड पीपल.
1: सही बात है. कई बार कुछ ऐसे ऐसे एक्टर्स भी होते हैं हु डोंट लाइक यू, तो जब आप इमोशनल सीन करते हैं ना, और कैमरा उनके पीठ के पीछे होता है या फेस नहीं दिखता है, तो दे डोंट गिव यू अ रिस्पॉन्स प्रॉपरली. ब्लैंक रखते हैं फेस को ताकि यार टूट रहे कल. वहां पर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है
0: क्योंकि अटेंशन सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर है. दिस इज कॉल्ड अ गुड एक्टर, दिस इज कॉल्ड अ नेचुरल एक्टर, जिसका अंदर अटेंशन इतना अच्छा है कि उसकी परफॉर्मेंस नेचुरली फ्लो करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन एंड पीपल अराउंड. सेम ही तो जीवन में करना है.
1: जीवन को हम परफॉर्मेंस फिल्म का नहीं समझते ना.
0: जीवन तो उससे बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है ना. एक फिल्म का सीन आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है? फिल्म का सीन छोड़ो, एक फोटोग्राफ पे क्लिक करते हैं ना, तो लोग कितना अटेंशन से फोटो खींचते हैं. भाई नहीं ठीक से मेरे बाल ठीक है, मेरी ड्रेस ठीक है, मेरी स्माइल ठीक है, मेरा बैठने का तरीका
1: ठीक है। लोग बोलते हैं 100 साल तक लोग कोई ना कोई फोटो देखता रहेगा, यहाँ नहीं सोचते कि मरने के बाद भी तुम्हारे बारे में।
0: मरने के बाद इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ फोटो एक बार खिंच गई तो हमेशा वही दिखेगी। सीन मूवी में एक बार शूट हो गया, उस मूवी का हिस्सा बन गया, आप उसको चेंज
1: तो
0: नहीं कर सकते।
1: जिस आदमी से आप मिलते वो आपकी फोटो तो खींच ही रहा है ना,
0: वो आपकी फोटो खींच रहा है वो तो अलग बात है, आपके यहाँ क्या खींच रहा है?
1: अच्छा दिया दो बेरा,
0: वो तो आपकी खींच ही रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या सीन रिकॉर्ड हो रहा है इस मूवी पर? और ये मूवी तो लंबी चलने वाली है।
1: यहाँ बहुत बार गिल्ट रिकॉर्ड होता है।
0: यहाँ पे गिल्ट रिकॉर्ड हो गया तो रिकॉर्ड हो गया लंबा। ये अब जो जो रिकॉर्ड हो रहा है एक एक सीन, इसीलिए हर सीन रिकॉर्ड करते समय हमें कितना अटेंशन रखना चाहिए कि एक बार जो सीन रिकॉर्ड हो गया वो मेरा प्रेजेंट भी डिसाइड करेगा, वो मेरा फ्यूचर भी डिसाइड करेगा, वो मेरे सिर्फ इस जीवन काल में नहीं चलने वाला, वो मुझ पर परमानेंट रिकॉर्डिंग है, इटर्नल। एवरी सीन दैट वी आर परफॉर्मिंग इन लाइफ इज अ परमानेंट इटर्नल रिकॉर्डिंग। कितने ध्यान से रिकॉर्ड करना चाहिए सीन। नाउ कैन वी अफोर्ड टू मेक अ मिस्टेक? जब एक फोटो में मिस्टेक नहीं, एक मूवी की सीन में मिस्टेक नहीं।
1: भले कैमरामैन कभी कभी फोटो खींचने वाला देर लगाता है, आप स्माइल पकड़ के रखते हैं।
0: yes,
1: ये ऐसे yes. स्माइल पकड़ के रखते हैं भाई अभी, अरे जल्दी कर, कब तक रोको होल्ड करूं?
0: yes. क्योंकि कभी भी खींच गई एक बार, वी से द मोमेंट हैज बीन कैप्चर्ड।
1: तो वहाँ इतना सीरियस क्यों नहीं लेते लाइफ को?
0: सीरियस इज नॉट द वर्ड, अटेंशन इज द वर्ड। सीरियस थोड़ा बोझ वाला वर्ड हो जाता है। आप जब एक्टिंग कर रहे हैं आप सीरियस नहीं अटेंशन से एक्टिंग करते हैं, सीरियस होके नहीं करते।
1: यू हैव टू लव दैट परफॉर्मेंस, यू
0: हैव टू लव दैट परफॉर्मेंस एंड यू नो द इम्प्लीकेशन ऑफ योर वर्क। यू नो कि आप क्यों अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। चलो लेट्स टेक इट दैट वे। एक मूवी का सीन करते समय एक एक्टर अपना बेस्ट क्यों देना चाहता है?
1: बिकॉज़ आई वांट टू बी द बेस्ट।
0: आई वांट टू बी द बेस्ट। व्हाई डू आई वांट टू बी द बेस्ट? क्योंकि उससे मुझे क्या मिलेगा? उससे मुझे नाम मिलेगा, मान मिलेगा, शान मिलेगा, धन मिलेगा।
1: धन भी मिलेगा और आगे काम और,
0: भी आगे
1: मिलेगा,
0: काम मिलेगा
1: और पॉपुलैरिटी होगी
0: तो,
1: और लोग
0: आगे काम भी किस लिए चाहिए?
1: और लोग भी देखना चाहेंगे आपको। yes.
0: तो इसका मतलब हम इतना जो अटेंशन रख रहे हैं वो किस लिए? फॉर आर लाइवलीहुड। ये हमारा जीवन जीने का साधन है ना, जो भी हम काम कर रहे हैं। आपके केस में वो मूवी है, एक्टिंग है, किसी और के केस में वो एक प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी के केस में वो एक कोर्ट में एक केस हो सकता है, किसी के केस में एक पेशेंट की सर्जरी हो सकती है। ईच थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक पे डिपेंडेंट है कि हमारा नेक्स्ट आगे कैसे चलेगा करियर। तो हम अपने करियर के लिए, मतलब जो हमें लोगों से रिकग्निशन मिलेगी और धन मिलेगा, वो धन से क्या होगा? हमारा घर हमारा परिवार चलेगा। उसके लिए हम अपनी हर परफॉर्मेंस पे, इन माय करियर एंड माय वर्क प्लेस, हम कितना अटेंशन रखते हैं। अब जीवन के हर सीन में जो हमारी परफॉर्मेंस होगी उस पर हमारी खुशी डिपेंडेंट होगी, उस पर हमारे शरीर की सेहत डिपेंडेंट होगी, क्योंकि मन खुश तो तन स्वस्थ, उस पर हमारे रिश्ते डिपेंडेंट होंगे। तो इतना अटेंशन सिर्फ धन कमाने और करियर पे, तो खुशी और सेहत और रिश्तों के लिए थोड़ा सा अटेंशन नहीं रखेंगे?
1: मालूम नहीं था ना?
0: वो कोई बात नहीं, मालूम नहीं था, आज मालूम पड़ेगा तो अब हम रखेंगे। लेकिन क्राइटेरिया बहुत क्लियर होना चाहिए। आई फील नाइस, मतलब मुझे अंदर अच्छा महसूस हो,
1: एंड मेक अदर फील,
0: मेक अदर्स फील नाइस, मतलब लोगों को भी मुझसे मिलकर, मेरे साथ काम करके, मेरे साथ रिश्ते में अच्छा महसूस हो। इम्पोर्टेंट इज महसूस हो, वो अंडरलाइन करना है। और जैसे आपने बहुत ब्यूटिफुली बताया कि कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, व्यवहार भी अच्छा करते हैं, लेकिन उनके साथ हमें अच्छा महसूस नहीं होता है। कुछ लोग बहुत सिंपल बोलते हैं, इट्स नॉट फ्लावरी लैंग्वेज, इट्स नॉट वेरी बिग टॉक,
1: छोटी लैंग्वेज में भी बोलते हैं, आधी हिंदी आधी इंग्लिश सब मिल मिला के,
0: हाँ।
1: तब भी कॉन्सेंट्रेट करके उनको सुनने का मन करता है कि और बाद में उनके साथ बैठने का भी मन करता है.
0: बिकॉज दे आर मेकिंग यू फील नाइस.
1: एंड देर आर सर्टन पीपल जो खामोश बैठते तब भी खाली उनके साथ बैठे रहने का मन करता
0: है. दे आर मेकिंग यू फील नाइस. एंड वाई आर दे मेकिंग यू फील नाइस? बिकॉज दे आर फीलिंग नाइस इनसाइड. मतलब

0: क्राइटेरिया ये बन गया, जैसे सामने वाला होगा वैसे हम होंगे, तो फिर ये पूरा जीवन का ड्रामा क्या हो गया, सारे सीन ही बिगड़ते गए। इट वॉज सपोज टू बी अ ब्यूटिफुल सीन, लेकिन ये सारे सीन बिगड़ गए और हमारी मूवी क्या हो गई पूरी।
1: आपकी बात इतनी अच्छी लगी, ये जैसे सामने वाला होगा वैसे अगर मैं होगा, इसका मतलब है कि ही इज होल्डिंग द रिमोट कंट्रोल इन हिज हैंड, मेरा रिमोट कंट्रोल दे दिया मैंने। इसके बारे में मैं आपसे अगले एपिसोड में बात करूंगा। इट्स अ लवली थॉट कि अगर हर आदमी, दुनिया में करोड़ों किस्म के लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, हर आदमी के साथ मैं अलग अलग व्यवहार करता रहा हूं, तो फिर मैं ओरिजिनल क्या रहा।
0: वेरी ट्रू।
1: थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। ओम शांति।
2: लाइक व्हेन वी परफॉर्म इन अ ड्रामा, our focus is on our performance and our script, not dependent on the performance of our co-actors. Even if the other actor does not perform right or forgets their lines, we will keep performing well and even help them to come back on track. We should keep attention on our performance in every scene of life. The criteria that we have crossed the scene well are that we are at ease, the mind is feeling nice, body is relaxed, and co-actors in the scene are feeling nice. People respect us and feel nice with us, not because of what we have acquired in our life, but because of what we radiate to them. If we are humble and radiate love, kindness and compassion, it will make us and people around us feel nice. Like we take care when we get a photograph clicked, we need to take care of every thought, word and action getting recorded on the soul. There is no retake in this recording, and it is an eternal recording which will always remain on the soul and go with us in the next birth.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना है, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहाँ वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर आरजे संजय। आप सुन रहे हो रेडियो बुंदेली आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाएं के तीसरे अध्याय में। आज हम जानेंगे वेणु माधुरी, वह अद्भुत कला जिसमें श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुरता ने संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित कर लिया। जब वज्र के बाल गोपियाँ और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उस स्वर को सुनते तो वे सब अपने अपने कार्य भूलकर

उस दिव्य धुन में लीन हो जाते। कहा जाता है कि बांसुरी की तान में ऐसा आकर्षण था कि यमुना की लहरें भी थम जाती है, वृक्षों के पत्ते भी स्थिर हो जाते। वेणु माधुरी केवल संगीत नहीं थी, ये प्रेम और भक्ति का ऐसा माध्यम था जिसने जीवन मात्र को श्री कृष्ण के सानिध्य में बांध दिया। यह कला हमें सिखाती है कि सच्चा संगीत केवल कानों को नहीं आत्मा को भी स्पर्श करता है। तो दोस्तों, सुनते हैं कि प्यारा सा श्री कृष्ण का गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कृष्ण की बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं थी, वह उनके हृदय की करुणा और प्रेम की ध्वनि थी। जब भी बांसुरी बजती, वृंदावन की गोपियाँ अपने सारे काम छोड़कर दौड़ पड़ती, गाय चरना भूल जाती, यमुना की लहरें थम जाती और पक्षी भी मौन हो जाते। यह बांसुरी केवल संगीत नहीं थी बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम था। आज के इस कथा अंश में हम अनुभव करेंगे वही वेणु माधुरी जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को श्री कृष्ण के प्रेम को बांध दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं हम अगला दूसरा प्यारा गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सुपर आर जय संजय। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। श्रोताओ, भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो हर गोपी को लगता था कि यह स्वर केवल उसके लिए है। राधा तो इस तान में इतनी डूब जाती कि सांसारिक भानी भूल जाती। कृष्ण की बांसुरी ने वृंदावन को प्रेम और भक्ति का केंद्र बना दिया। ये लीला हमें बताती है कि ईश्वर हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं। उनकी धुन केवल संगीत नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं हम एक प्यारा सा सुंदर गीत।

जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वेणु माधुरी हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने अहंकार को खाली कर देते हैं तो हम स्वयं बांसुरी बन जाते हैं और ईश्वर की ध्वनि हम में गूंजती है। बांसुरी का अर्थ है शून्यता। जैसे बांसुरी खोखली होती है, वैसे ही हमें अपने भीतर से अहंकार और मोह को निकाल लेना चाहिए, तभी ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में प्रवाहित होता है। यह लीला हमें यह संदेश देती है कि भक्ति केवल बाहरी अंडरवर नहीं बल्कि भीतर तक की निर्मलता है। जब मन शून्य होता है तभी उसमें दिव्यता का स्वर गूंजता है। तो दोस्तों, सुनते हैं और एक प्यारा सा सुंदर गीत।

जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वेणु कर गृही वंशी मधुर ध्वनिनम, अर्थात कृष्ण की बांसुरी का स्वर इतना सुंदर और मधुर है कि वह आत्मा को भी मोहित

0: कर लेता है।
1: ये श्लोक हमें बताता है कि कृष्ण की बांसुरी केवल ध्वनि नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का दिव्य संदेश है। उसकी तान में ऐसा आकर्षण है कि युव मात्र अपने अहंकार और मोह को भूलकर केवल ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाता है। यही है श्री कृष्ण की वेणु माधुरी या संगीत साधना बन जाता है और साधना ईश्वर से मिलन का मार्ग है। तो दोस्तों सुनते हैं एक सुंदर गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो श्रोताओं, ये थी तीसरी कला वेणु माधुरी। ये कला हमें सिखाती है कि जब हम अपने भीतर से अहंकार को निकाल दे तो हम भी ईश्वर की बांसुरी बन सकते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे श्री कृष्ण की चौथी कला प्रीत माधुरी, यानी उनके प्रेम की मधुरता। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

रहे ये दुनिया वाले, हम हैं अभी जवान, हम हैं अभी जवान। अरे कुछ भी कहे ये दुनिया वाले, हम हैं अभी जवान, अरे हम हैं अभी जवान।

내일의 여자 부르기야 와다 내일 가서 가야 살았어 너처럼 내가 못하는

हो गए कहीं

so sweet.